0: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी तो लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
1: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे उससे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करता। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।

0: The Cockroach Janata Party, formed barely months ago, has suffered its first rebel breakaway. CJP volunteer Manish Brahmbhatt has now floated the Cockroach Janata Party Democratic. Brahmbhatt has accused the CJP leadership of having links with the Aam Aadmi Party, of selling out and politicizing the movement, of sidelining grassroots protesters, and alleges the CJP's aim is now to engage in political deals. But he has gone a step further, calling the Dipke-led camp Team Kejriwal.
1: Aaj hum Cockroach Janata Party Democratic ki shuruaat karne ja rahe hain. Ye shuruaat kyu karni padi? Andolan, desh ka andolan tha. Logon ne apna khoon pasina bahaya. To andolan safal hua. Par andolan safal hone ke baad, iska sauda ho gaya hai. Iska rajneetikaran ho gaya hai. अब ये टीम केजरीवाल बन चुकी है।
0: दीपके हाउएवर हैज हिट बैक।
2: अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस की बी टीम हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी की बी टीम हूँ, तो मुझे लगता है ये सारे लोग बैठे आपस में और डिसाइड कर ले हम किसकी बी टीम है और किसकी क्या है। हमारे हिसाब से तो हम स्टूडेंट्स की ए टीम है।
0: ब्रह्मभट्ट सेज सीजेपी डी विल टेक ऑन करप्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच पार्टी इज इन पावर। द सीजेपी बिगन एज दीपकेस satirical online movement before evolving into a youth-led platform that spearheaded a campaign culminating in the resignation of Dharmendra Pradhan. And now, barely months into its existence, the movement is facing its first internal rupture. Factions and breakaways are the stuff of politics. But for a group that still describes itself as a pressure movement, this could be a first. Is CJPD the beginning of a new political experiment or the beginning of a new battle for the movement itself? Bureau Report, India Today.

0: Heavy rain has disrupted life across several states, pushing the Ganga towards its highest flood mark. A red alert has been sounded in force across North India, with Uttar Pradesh and Bihar facing rising river levels, submerged areas and the threat of more flooding. In Uttar Pradesh's Lalitpur, the threat is coming from overflowing reservoirs. 48 hours of continuous rain has pushed all 14 dams to full capacity. 12 have opened the gates to release the rising waters.
1: पानी लगातार बरस रहा है जिसमें नौ बांधों के गेट खोले गए लगातार निगरानी की जा रही है और गेटों से पानी सुचारू रूप से चलाया जा रहा है.
0: In Prayagraj, roads and streets are submerged as the Ganga River continues to rise.
2: अभी कोई संभावना नहीं है और आगे की सूचनाएं मिल रही है जल आ रही है और जल हटे दी गई है इसीलिए लोग परेशान है प्रशासन भी परेशान है.
3: सभी लोग अलर्ट रहे और हमें भी सूचना देते रहे जैसे भी कोई अगर हम लोग बचाव की अगर जरूरत पड़े तुरंत फोन करें तो हम लोग पूरी टीम अलर्ट है रिजर्व में हमारी फोर्स है.
0: The administration say rescue teams are on standby around the clock.
4: Although the water level in Prayagraj, whether it is the river Ganga or Yamuna, has not crossed the danger level, it is flowing below, approximately 2 meters below. But now the water has entered in the colonies situated near the bank of river Ganga or at the river bank of Yamuna. And right now you can see through the visuals, this is a historical Baghara road which is going towards the Nag Vasuki temple and you can see the now the water has entered in the local colony although it has not drowned anyone not but the persons living in this colony are on alert.
0: In Varanasi the river is nearing the danger level with around half a meter left before the critical mark.
5: Jeevandani Ganga ka vikral roop ab darane laga hai. वाराणसी में गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है और खतरे के निशान से लगभग आधा मीटर ही नीचे है. लेकिन राहत भरी खबर यह है कि बजाय बढ़ाव के अब जल स्तर घटना शुरू हो रहा है. लगभग आधे सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटाव दर्ज किया जा रहा है जो केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट है. लेकिन इस समय जो नज़ारा है वे नमो घाट का है जो बनारस का सबसे नवीन और आधुनिक घाट कहा जाता है और बाढ़ से बचाव के लिए यहाँ तमाम इंतजाम भी किए गए थे जब इसका निर्माण हो रहा था. लेकिन देख सकते हैं बावजूद इसके जो बाढ़ का पानी है धीरे धीरे लगभग कुछ ही सीढ़ियाँ शेष रह गई हैं और इसको डुबोने के बाद ये सीधे सड़क पर आ जाएगा.
0: इन कानपुर द ओवरफ्लोइंग पांडव रिवर हैज फोर्स्ड अथॉरिटीज टू शट अ ब्रिज. द फ्लड सिचुएशन इज इक्वली ग्रिम इन बिहार. In capital Patna, the Ganga River has engulfed large parts of the Danapur Daira area. Several panchayats are submerged, roads are underwater, and residents say they are still waiting for essential rations. SDRF teams are conducting rescue operations in flood-affected areas.
6: अभी हम दानापुर प्रखंड के दियारा इलाके के मानस गांव में हैं और देखिए यहां पे जो है SDRF की टीम के द्वारा राहत और बचाव कार्य चल रहा है और देखिए ये पूरा जो गांव है पूरी तरह से डूब चुका है. लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर इन्हें राहत पहुंचाएगा. SDRF की टीम यहां पहुंचकर अगर कोई घटना घटती है तो उसे यहां पे जो है SDRF के द्वारा यहां राहत और बचाव कार्य किया जाता है.
0: ड्रोन विजुअल्स फ्रॉम बेगूसराय शो होम्स एंड रोड्स सराउंडेड बाय फ्लड वाटर्स. In Kosi, floodwaters have surrounded the Madrauni village for nearly 20 days, affecting more than 700 families.
7: कोई शासन कोई प्रशासन का कोई कोई सुविधा नहीं मिली. इतना बुरा स्थिति है पानी का. और दूसरा है कि अभी तक कोई सुविधा ही नहीं मिला है सरकार की तरफ से. चूड़ा हो सक्कर हो पानी हो रिलीफ हो ऐसा कोई चीज अभी नहीं मिला.
0: The scale of the flood threat is widening. In Uttar Pradesh, nearly 3.5 lakh people across 26 districts have been affected with more rain forecast. In Bihar, 8 districts are on alert as the Ganga River continues to rise. And with more rain expected, the flood threat is far from over. Bureau Report, India Today.
8: Well, we have been tracking all of the top stories for you in this very bulletin. And here we wrap it up. But do stay tuned to India Today as we bring you all of the top stories with their latest developments every hour right here. Thank you for watching.
9: Are watching India Today.

0: Hello and welcome. You're watching In the Club. I am Susan. What happens when two cops see justice through completely different eyes? Starring Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran's Daira explores this clash through a gripping investigative thriller inspired by true events. As a shocking crime sparks nationwide outrage, two contrasting approaches to law and justice collide, raising difficult questions about duty, punishment, and the system itself. Take a look.
1: इधर क्यों लाए सर?
2: बताता हूँ क्यों लाए इधर।
3: ये तीसरी बार है ना आप और डीसीपी रमन कुमार ने इससे पहले भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फेस की है।
2: एक्यूज ने मौका ढूंढा और एस्केप करने की कोशिश की।
3: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
2: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
3: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया।
4: एक प्लांट पुलिस एनकाउंटर था।
5: What happens when two officers wear the same uniform but see justice through completely different eyes?
6: Accused दो साल से इसी रूट पर था।
3: दो साल, 600 किलोमीटर और रोकने वाला कोई नहीं।
7: ऐसे केसेस में 100 में से 99 बार लड़की घर वापस आ जाती है सर।
2: और वो एक बार फिर से एक फैमिली ने अपनी बेटी खोई है। फिर से
5: Meghna Gulzar's Daira explores this question through a gripping investigative crime thriller that brings Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran together as two senior police officers caught on opposite sides of a complex
8: case.
3: It
9: may get slippery,
2: Raman.
5: Inspired by true events, the film unfolds in the aftermath of a shocking crime scene that sparks nationwide outrage.
2: Unki story over hai.
10: Kahan over? Court kachehri ke chakkar, hamara vakil, unka vakil. Abhi to shuruaat hai.
5: What follows is a chain of events and two investigations that force the officers to confront difficult questions about law, duty, justice and punishment.
2: Aur escape karne ki koshish ki.
3: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
2: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
3: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया।
4: सर क्या ये एक प्लांट पुलिस एनकाउंटर था?
5: करीना प्लेज डीसीपी अजूनी कोहली व्हाइल पृथ्वीराज पोर्ट्रेज डीसीपी रमन कुमार।
7: घर वापस आ जाती है सर
2: और वो एक बार
5: ऑल्दो बोथ सर्व द सेम सिस्टम देयर कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस टू जस्टिस सून पुट देम एट ऑड्स।
3: 17 साल का होने वाला था 4 महीने बाद।
9: It may get slippery, Raman.
2: बताना अपनी माँ को क्या किया तुम्हें।
5: Interestingly, Daira also brings the complicated issue of juvenile justice into focus.
2: एक accused तो पतली गली से निकल गया।
3: वो पतली गली नहीं, juvenile protection law है।
2: Juvenile जो rape और murder कर सकता है, उसकी protection।
5: Releasing on September 18, the film features an ensemble cast including Jitendra Joshi, Shiti Jog, Kawaljeet Singh, Sandeep Kulkarni and Trupti Khamkar. Kareena Kapoor Khan was last seen in the action thriller Singham Again, which released on November 1st, 2024.
11: कलयुग है अपनी कलयुग इस बार रावण जीतेगा
3: सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती।

0: that has to.
1: Their separation announcement also comes amid reports that Isha could be among the contestants on Big Boss 20, which is set to be hosted by Salman Khan.
2: So, safe khelne ka no chance.
3: Big Boss mein is baar milega pardaan aur extra jeevan daan. That has to mein jaan.
1: Meanwhile, Badshah was previously married to Jasmine Masih. The couple separated and finalized their divorce in 2020. They share a daughter, Jessamy Grace. Entertainment Bureau, India Today.
4: What's up, it's your girl, Jessamy.
5: And you're watching me.
4: And you're watching me.
5: On?
4: On?
5: YouTube.
4: YouTube!
6: 2 crore rupee film. A slow start, and then an unexpected box office turnaround. Hanuman Ansh has gone from being barely noticed to becoming one of the season's surprise success stories. Fueled by word of mouth and growing audience interest, the film is now making headlines and challenging the odds. Here's the special report by my colleague, Pranjali Sethi.
7: क्या साहब भूत
8: सुबह सुबह भांग भांग खा के आए हो क्या
7: अरे साहब वो आदमी नहीं भूत है
8: कौन आदमी
1: मुझे फॉरगेट द स्टार्स फॉरगेट द स्केल वॉच द नंबर्स हनुमान अंश बिगेन इट्स थिएट्रिकल जर्नी ऑलमोस्ट अननोटिस्ड
9: गाड़ी हिली तक नहीं एक बाबा को उतार दिया
1: अ रिपोर्टेड 2 crore बजट अ टाइनी 10 lakh ओपनिंग एंड जस्ट 1.48 crore in its first 2 weeks. By all conventional box office logic, the film should have been finished.
10: तुम करना क्या चाहते हो?
4: राम जी के पास पहुंचना है, क्योंकि मुझे मेरी अम्मा के पास पहुंचना है.
1: Instead, it exploded. Word of mouth changed everything.
11: जहां क्लेश नहीं,
12: गुफा गए तो हमने आपको बिल्कुल जंगो में लैपटॉप आओ. बिल्कुल भूले
13: आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है और मन वही दिखाता है जो अंदर होता है.
1: द बिगेस्ट शॉक केम इन द थर्ड वीक.
14: चाहे आप कहीं पर हो, कितनी भी
1: फ्रॉम कलेक्टिंग जस्ट अराउंड 1.5 crore इन इट्स फर्स्ट 2 weeks, हनुमान अंश एक्सप्लोडेड टू ओवर 10 crore इन इट्स थर्ड वीक अलोन.
13: अरे हनुमान चालीसा पढ़ते हो फिर भी डरते हो?
14: हनुमान जी को सोने का चढ़ावा नहीं चाहिए, चाहिए तो बस उनके भर भूखों को भोजन.
1: एंड नाउ कम्स द बिगेस्ट ट्विस्ट. The 2 crore underdog is not just holding its ground. It's slowly eating into the box office space occupied by a much bigger release. Yash, starrer Toxic. Meanwhile, directed by Vishal Chaturvedi and starring Shobhana Satya, the film tells the story of Neem Karoli Baba, popularly known as Maharaj Ji.
15: और वो खाली स्पिरिचुअल गुरु नहीं, एक इमोशन है लाखों लोगों के. कितने चैलेंजेस करने, कितने फेस करने पड़े चैलेंजेस.
16: जी फ्रेंड्स, ये सब चल रहा था कि सर ने मुझे कास्ट तो कर दिया है, लेकिन अगर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने बोला कि पता नहीं किसको बाबा बना दिया है, क्या कर दिया है, ये सब चीजें मेरे माइंड में सते थी.
10: तुम करना क्या चाहते हो?
1: द फिल्म अटेम्प्ट्स टू पोर्ट्रे द स्पिरिचुअल जर्नी सराउंडिंग नीम करोली बाबा rather than presenting a conventional larger than life biopic.
15: कहाँ मिलता है आपको ये पूरा दिन? क्यों का टाइटल? वैसे फिल्म बेस्ड है नीम करोली बाबा जी पे, फिल्म का टाइटल मो क्यों ना हो गया हनुमान अंश की?
17: मेरे लिए बहुत जिम्मेदारी का था कि कहीं मैं ऐसा ना कहे लगूं कि उनकी फिल्म उनके नाम का इस्तेमाल किया जाए. कहानी को कहानी के तौर पे सबसे पहले अपनी जगह बनानी, अपने पैरों पे खड़ा होना, तब हम ये बात बनाई. लेकिन ये महाराज जी का जहां क्लेश
1: नहीं क्लेश. सो यस, यू डोंट ऑलवेज नीड अ 200 करोड़ फिल्म टू क्रिएट अ 200 करोड़ बस.
13: जो मन में होता है और मन
1: समटाइम्स ऑल यू नीड इज अ स्टोरी दैट मेक्स पीपल वॉक आउट ऑफ द थिएटर एंड टेल समवन एल्स गो वॉच दिस. प्रांजलि सेठी, एंटरटेनमेंट ब्यूरो, इंडिया टुडे.
18: Imagine the rest of that.
0: में सब भीम करोली बाबा के भक्त हैं। और उनकी ये जर्नी इस तरीके की हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हमें देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच
18: हमारे सामने।
6: Neet Padda is stepping into a gritty new world after the success of Sayara, with Hunkar, The Raw marking her next big screen outing. From its intense courtroom drama to what lies ahead for the young actor, here's everything you need to know about the much-awaited project.
19: Naam?
20: Meenu Rawat.
19: Umar?
20: 17 saal.
19: शुरू से बताओ क्या हुआ था।
21: From a sweeping love story to a gritty fight for justice, Neet Padda is stepping into a whole new world.
20: मैं शिक्षा विद्यालय की छात्रा हूँ। मेरे साथ बदसलूकी हुई है।
19: बदसलूकी?
20: जबरदस्ती।
19: किसने की?
20: पाप जी ने।
22: यहाँ पे टैलेंट से ज़्यादा ईगोज़ और टैंट्रम्स झेलने पड़ते हैं। Would you be able to do that?
21: After winning hearts with Sayara, the actress is now taking on a far more intense role, one that places her at the height of a high-stakes courtroom battle. Neet Padda will next be seen in Hunkar, The Raw, which is set to premiere soon on Jio Hotstar. Formerly titled Nyai, the project also stars Fatima Sana Sheikh, Mohammed Zeeshan Ayub and Arjun Mathur, with Ram Kapoor and Raghubir Yadav among the supporting cast. Directed by Nitya Mehra and Karan Kapadia, Hunkar follows Neet as a woman who takes a courageous stand against a powerful godman accused of misconduct.
19: शुरू से बताओ क्या हुआ था।
21: The intense courtroom drama centers on her fight for justice and explores power, courage and accountability.
20: मेरे साथ बदसलूकी हुई है।
19: बदसलूकी?
20: जबरदस्ती।
19: किसने की?
20: पाप जी ने।
21: The series has been given an A certificate. Meanwhile, the show is also backed by Priyanka Chopra's production house, Purple Pebble Pictures. For Neet, the series also marks her reunion with Nitya Mehra, following their collaboration on Big Girls Don't Cry.
23: Our country, the world.
24: Who are you?
23: All princesses do the ball when they turn 16. Think of it as networking for royalty.
24: Beta, more like swimming for royalty.
21: Interestingly, she had completed the project before Sayara turned her into a household name.
23: Jaya se! Jaya se nikal!
21: Her performance as Vani Batra opposite Ahan Pandey made her one of the breakout stars of 2025, with the film crossing 569 crore rupees worldwide.
25: Sayara matlab taron mein ek tanha tara. खुद चल के जो रोशन करते जगे सारा तुम मेरे से यार।
21: Her upcoming slate remains just as interesting, with Shakti Shalini and an untitled Mohit Suri film lined up. The latter will reunite her with Sayara co-star Ahan Pandey. She is also speculated to feature in Ayan Mukherjee's Brahmastra Part 2, Dev. As for Fatima Sana Sheikh, she was last seen in Gustak Ishq and will next feature in Teen Kauwe.
26: G3 ke blast ke baad Mumbai ki hifazat ke liye ek secret agency banayi hai.
27: कोई हमारे सीक्रेट साय साय में देने लगा।
21: With Hunkar, both actors are set to explore a darker, more dramatic space, making the project an intriguing addition to their upcoming work.
19: ठीक है। पहले बाप जी से पूछताछ कर लेते हैं, उसके बाद इनकी कंप्लेंट लिख लेंगे।
21: Entertainment Bureau, India Today.
20: नहीं वेट करूंगी। जब तक आप रिपोर्ट नहीं लिखते।
6: The race for casting mystery continues to gather speed. Aamir Khan's name may have sparked fresh excitement, but producer Ramesh Taurani has firmly put the brakes on the speculation. With several stars previously linked to the franchise, the big question remains: who will finally grab the keys and take the race for wheel.
2: Aamir Khan in Race 4? The rumor hit the internet at full speed. But just as quickly as speculation around Aamir taking over the race franchise began to gain momentum, producer Ramesh Taurani has slammed the brakes. Taurani clarified that the casting for the fourth installment of the popular franchise has not been finalized yet. Earlier, reports claimed that the actor had recently heard the script for Race 4 and given his go-ahead to the makers. However, the producer in a statement refuted the speculation and urged people not to believe or circulate unverified reports about the film's casting. This is not the first time that Race 4 has sparked casting speculation. Earlier in January, reports suggested that Akshay Khanna, whose character was killed off in Race, could return for the fourth installment.

0: their flood-related death toll for the first time ever since the incident came to light. 31 bodies have been recovered from Gurong building. Gurong was, remember, one of the majorly hit towns there in the by the Nepal-Tibet border itself. As many as 531 are still missing on the Chinese side as we speak. Massive level of destruction on the Nepal-Tibet border. Both sides have indeed seen a travesty, a nightmare in terms of this natural disaster that's hit them. One that perhaps in the last 10 years has not been seen in this very region. The last that one remembers of is the quake that had jolted this region in 2015. But post that, this is the nightmare that's completely left this region in devastation. Now, China on the other side, because this didn't just affect Nepal. We've been bringing to you those numbers from Nepal since day one. But China, for the first time, comes out to confirm 31 deaths in the flood disaster itself. We have Pankaj Das. We have been at India Today tracking the developments from the very ground since day one. We have Pankaj Das joining us on the broadcast with the details at this very hour. Pankaj, very good morning to you. Sabse pehle, ye jo aankda samne aa raha hai, 31 logo ki maut ho chuki hai. Yahi China abhi keh rahi hai. Aur 500 se upar log abhi bhi lapata hai us taraf. आपको वहां से और क्या जानकारी मिल रही है कि और कितने लोग ऐसे हो सकते हैं एस्टिमेट्स जो आ रही है सामने जो मिसिंग हो अभी भी?
1: अभी बिल्कुल ये पहली बार है जब चीन ने अपनी तरफ से ऑफिशियल डाटा दिया है. जो उनका इमिग्रेशन में बिल्डिंग था जिसके सीसीटीवी का फुटेज बहुत ही वायरल हुआ, जहाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग वहाँ तबाह हो चुकी है. और उस समय वहाँ करीब जो लोग थे वहाँ पे सुबह से बात हुई थी उनके अपने से बता रहे थे कि करीब 2,500 से 3,000 लोग वहाँ मौजूद थे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जा रहे थे, जो बिजनेस पर्पस से जा रहे थे, जो कुछ कुछ 100 जो कंटेनर के ड्राइवर थे जो सामान लाने के लिए या उधर से नेपाल आने के लिए तैयार थे. ऐसे सभी करीब 2,500 से 3,000 लोग वहाँ पे मौजूद थे. लेकिन पहली बार कल 10 दिन बाद चाइना ने डाटा वो किया है, सार्वजनिक किया, जिसमें उसने बताया कि 31 डेड बॉडी अभी इस इमिग्रेशन बिल्डिंग के आसपास जो है 31 डेड बॉडी मिले हैं और उनमें अभी ऑफिशियली 531 लोगों के मिसिंग होने की बात अभी कही है. तो चीन की तरफ से यही उन्होंने ये कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है और जैसे जैसे ये डेड बॉडी सब मिलेगा हम और जानकारी नेपाल को देते रहेंगे. तो इस तरह से अभी तक उन्होंने ये पहली बार जो है 10 दिन बाद पहली बार डाटा पब्लिक किया है.
0: जी पंकज, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वेल व्यूअर्स, ऑन द अदर साइड लेट्स टेक यू थ्रू द डेवलपमेंट्स ऑन द रेस्क्यू ऑपरेशन फ्रंट व्हिच स्टिल कंटिन्यूज आफ्टर मोर देन अ वीक ऑफ द फ्लड हैविंग हिट दिस वेरी रीजन. नेपाल कंटिन्यूज टू बैटल द आफ्टरमैथ ऑफ डेविस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द फ्लैश फ्लड्स. आफ्टर डेज ऑफ द ग्लूम, two people were pulled out alive from a tunnel in a miraculous rescue, raising hopes that more survivors could still be found even now. More than 5,000 people on the Nepalese side are still missing and rescue teams are racing against time. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balen Shah has said that more than 13,000 people have been rescued so far and operations will continue. He has also thanked the rescue teams as well as friendly nations for their support. India continues to step up its assistance, with the Ministry of External Affairs having said that Prime Minister Narendra Modi extended support to Nepal and that India responded promptly. In fact, among the first countries to come in and send aid after the incident came about. The Ministry of External Affairs has also said that India will continue to assist Nepal's recovery and it's ready to provide whatever assistance is needed.
2: मैं सेंट्रल रूम में ऑपरेटर काम गर्थे अनि आजकल अरू टाइममा त 4-5-6 जना मात्रै हुन्थ्यो, यति बेला 40-45 जनै थियो. अनि कन्ट्रोल रुममा म भएपछि मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सबैको ज्यान बचाउनु थियो. अनि त्यस्तो एक्सिडेन्ट भएपछि म एक्लै भागेर भएन, सबैलाई बचाउनु पर्यो. अनि सबैलाई बचाउने क्रममा म सबैलाई भने एक्सिडेन्ट भयो ठुलो ड्याममा, अनि सबैलाई भाग्न लगाउँ बाहिर. 3-4 जना मात्रै त्यो नजिक छेउछाउ कुरा गर्दाखेरि लाग्यो.
3: भित्रपट्टि चाहिँ त्यहाँ पावर हाउस थियो, पावर हाउस भित्र पनि छन् मान्छेहरू?
2: हुनसक्छ होला, हुनसक्छ. सबै भाग्न नसकेको होला, टनेल लामो छ, टनेलमा भए पनि त्यहाँ पानी फोर्सले भित्र लगिसकेको होला.
4: We have seen that the Prime Minister of Nepal has thanked us for our support. As you

0: He's a pediatrician who left his very flourishing practice to fight for the children of the country. क्या प्रॉब्लम है फॉर्मूला मिल्क में?
1: कितनी खबरें आ रही हैं यूएसए से, जब फॉर्मूला को रिकॉल करना पड़ा, सीवियर फाइन हुआ है अमेरिका में, तो क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि बच्चों को बीमारी हो सकती है. उस मदर ने जो केस किया जिसके बच्चे की डेथ हुई थी, उसने कहा हमें बताया ही नहीं है, हमें बताते तो हम ना देते.
0: कैसे आया ये फॉर्मूला फीडिंग का रिवाज?
1: बैड मार्केटिंग से ही आया. ऑफर्ड आर्किटेक्चरल असिस्टेंस टू हॉस्पिटल्स एंड सेपरेटेड मदर्स एंड बेबीज. सेवेंटीज की बात है. स्ट्रेटजी बनाने वाले लोगों को देखिए.
0: हाँ.
1: कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे अगर मदर है तो बच्चे सिक्स फ्लोर पे हैं. वो इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है, वो कई काम नहीं होने देती.
0: हाँ.
1: ये वर्ल्ड वाइड नोन है.
0: He fought the biggest food company, not in India but in the world, to protect the health of kids and children of India.
1: जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, छोटे बच्चे बहुत आते थे, टू थ्री मंथ्स के, तो मुझे लगा ये इतने बीमारी आ रहे हैं. ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैड ए पाउडर मिल्क इन देयर हैंड्स. हॉस्पिटलों में वो डिब्बा उनको दिया गया. फिर मैंने जाके इन्वेस्टिगेशन करी. आप पांच डिब्बे खरीदते थे तो पांच फ्री मिलते थे. ये भी ऐसे ही अब डॉक्टर्स को सपोर्ट कर रही है कंपनी और उनसे रीलें बनवाती हैं. जैसे ये कॉन्फ्रेंस है अभी,
0: Confluence 2.0 International Speaker Program. So under the law, all of this is illegal.
1: Under the law, it is illegal.
0: A lot of mothers gravitate towards formula milk because they think ki I'm not able to make enough milk.
1: If there is a surgical removal of the breast because of the reasons, so those are the only mothers who physiology cannot breastfeed. Normal or cesarean, that doesn't matter. Breastfeeding has to succeed. Cesarean doesn't mean that you have to give formula because it was a cesarean. If a health system doesn't support a mother, she is likely to fail. Because this failure occurs in the hospitals. In Hindustan, 90% women deliver in the hospitals now. But only 41% start breastfeeding within an hour of birth.
0: It is because of doctors like him that my trust in doctors has risen.
1: जब फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया 60s-70s में, तब तो कोई किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है इसको इंट्रोड्यूस करने का. कि जब कुछ इंट्रोड्यूस होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, चाहे वो फूड है चाहे फार्मा है, तो कोई पूछता नहीं है. जब उसके अगेंस्ट बात खड़ी होती है,
0: उसका आपको
1: एविडेंस देना पड़ता है.
0: आपको डर नहीं लगता इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट जाने दो? Hello and welcome. This is Dr. Versus Internet. I am particularly very, very humbled with the guest we have for you on the podcast today. He is a pediatrician. He's a pediatrician who left his very flourishing practice. He had a 30-bed hospital. He left that practice to fight for the children of the country. He fought... मैं नाम नहीं लूंगी उस कंपनी का बिकॉज दैट केस इज स्टिल गोइंग ऑन, बट ही फॉट द बिगेस्ट फूड कंपनी नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ किड्स एंड चिल्ड्रन ऑफ इंडिया. इट्स बिकॉज ऑफ हिम दैट कंपनीज कैन नॉट एडवर्टाइज फॉर्मूला मिल्क इन इंडिया. दैट लॉ इज नाउ इन प्लेस. इट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स लाइक हिम दैट माई ट्रस्ट इन डॉक्टर्स has risen. So I'm very, very delighted to have Dr. Arun Gupta here with us on the podcast.
1: Thank you so much.
0: Thank you so much for being here.
1: This is a pleasure meeting you as well as being on this podcast. I love this work.
0: I am sure you do because aapke jaisa kaam koi aur nahi kar sakta hai. Main agar bahar jaake kisi doctor se baat karun aur unse bolun ki kya aap apni flourishing practice chhod kar एक छह लोगों का एनजीओ चलाएंगे और 20-30 सालों तक उसको लड़ते रहेंगे कंपनी से उसके लिए, तो मुझे नहीं लगता कोई और मिलेगा.
1: मुश्किल है ऐसा, बट देयर आर पीपल, यू नो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल व्हिच हैव टू डू समथिंग और द अदर. सो आई एम वन ऑफ देम. सो वी डिसाइडेड टू डू दिस वे बिकॉज मेडिसिन डजंट मीन दैट यू हैव टू बी क्लिनिकल.
0: Yeah.
1: Medicine and especially pediatrics. If you look into the history of pediatrics, 90% and above pediatrics is actually preventable pediatrics.
0: Yeah.
1: So that teaches you a lot when you were a student.
0: Hmm.
1: So probably that thing stayed with me. And I had to jump into this work.
0: Yeah. हम आज पूरी बात करेंगे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में. आपने कैसे डिसाइड करा इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क के अगेंस्ट एक मुहिम निकालने का. आपने कैसे इन बड़ी बड़ी कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट तक आप लेकर गए. आपने कैसे नए लॉज इन्फोर्स कराए. पर सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए जो बहुत अवेयर है, हेल्थ अवेयर है, अच्छा करना चाहती है बस जानती नहीं है कैसे, ठीक है, उनको आप मुझे सबसे पहले बताइए कि क्या प्रॉब्लम है फॉर्मूला मिल्क में.
1: आई थिंक द फॉर्मूला मिल्क में पर से अगर पाउडर मिल्क हो उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो पाउडर मिल्क जो है वो स्टेराइल नहीं होता. WHO ने 2005-06 में ये एनालिसिस करके नटशेल में निकाला कि इट्स नॉट ए स्टेराइल प्रोडक्ट बाय द प्रोसेसिंग इटसेल्फ. उसकी प्रोसेसिंग ऐसी है कि वो उसको जो भी एनिमल की इंटेस्टाइन से कुछ बैक्टीरिया ट्रेवल करते हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं. जब हम उसको पानी में घोलते हैं वो कुछ उस में फ्लरिश करने लगते हैं. फिर उसके बाद WHO ने गाइडेंस जारी करी कि जी उसको एक घंटे में, फिर अब दो घंटे में, एक बार आपने डिसॉल्व कर लिया पाउडर को उसके बाद आप उसको इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है. पर अगर आप कर रहे हैं, जैसे रख दिया, कई बार ऐसा होता है फैमिली में मदर्स के साथ काम में है, इधर से इधर गए तो बोतल रख दिए इधर, तो घंटे बाद फिर वही पिला दिया, तो देर इज ए अमाउंट ऑफ रिस्क विच इंक्रीजेस फॉर गेटिंग एन इन्फेक्शन एंड दैट टू वेरी डेडली इन्फेक्शन पर्टिकुलरली इन द न्यू बॉर्न बेबीज. सो दैट वॉज द अलर्ट WHO इशूड इन 2006-07 टू अलर्ट दैट दिस इज नॉट ए स्टेराइल प्रोडक्ट. एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड एडवाइजरीज वेंट आउट टू द पीडियाट्रिशियन, न्यूनोटोलॉजिस्ट के भी ऐसे नर्सरीज में भी, जैसे यूज करो तो इसको एक बार डिजोल्व करो तो आप थोड़ी देर के लिए ज्यादा इसको मत रखो, कोशिश करो कि फटाफट जो भी यूज हो गया उसको बाकी को.
0: कई लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है वेस्ट हो गया.
1: अपनी पता भी नहीं है ना बीमारी का. बीमारी तो बहुत महंगी है, वो पाउडर से बहुत ज्यादा महंगी बीमारी. सो पर से द प्रॉब्लम इज नॉट मोस्टली विद द फॉर्मूला इटसेल्फ बट इट्स बैड मार्केटिंग. सो व्हाट वी फॉट वाज द बैड मार्केटिंग पार्ट. ये अवेयरनेस इशू है कि फार्मूला बैड है या नहीं है, बिकॉज बोतल आती है बीच में, फिर हाइजीन इश्यूज आते हैं. वो चीज़ें तो ज़रूरी हैं, मतलब आजकल हम मानते हैं कि पीपल आर अवेयर ऑफ दैट कि वो सेफ्टी, मुझे लगता है कि सेफ्टी इश्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पर ये इनहेरेंट कंटेमिनेशन किसी को पता ही नहीं है. हम बोतल को साफ कर लेंगे बट ये तो इंश्योर नहीं ना कि हमें याद है कि हमें किसी ने बताया है. मुझे नहीं लगता है कहीं एडवाइजरी इशू हुई है यहाँ पे भी.
0: सर डॉक्टर्स भी नहीं बताते हैं.
1: मैंने उनको भी नहीं बता. उनको कोई एडवाइजरी इशू करे तो पता चले. तो इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है वो कई काम नहीं होने देती है. ये वर्ल्ड वाइड नोन है ये फैक्ट. तो वो नहीं चाहते कि ऐसा पता चले कि ये. अभी अभी आप देखिए कितनी खबरें आ रही हैं USA से, इधर से, जब फार्मूला को रिकॉल करना पड़ा, बच्चे बीमार हुए. हाँ, एबट का भी है और दो ही कंपनियों का हुआ है. अभी फाइन हुआ है, बहुत सीवियर फाइन हुआ है अमेरिका में तो एबट को, कि उन्होंने बताया नहीं कि बच्चों को बीमारी हो सकती है. वो बड़ी सीरियस बीमारियां होती हैं जैसे फार्मूला से, वो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोक्लाइटिस एक बड़ी टेक्निकल टर्म है, बट इट्स ए वेरी डेडली डिजीज. तो उस वजह से उस मदर ने जो केस किया जिसके बच्चे की डेथ हुई थी, उसने कहा हमें बताया ही नहीं है, हमें बताते तो हम ना देते. कि रिस्क है चाहे 1% है चाहे नहीं है, चाहे 0.1% है, तो बताना तो चाहिए ना. मार्केट तो दैट कम्स अंडर बैड मार्केटिंग. सो मार्केटिंग में आप बताते हो कि बच्चे का ब्रेन बढ़ेगा, इसकी आंखें शार्प हो जाएंगी, इसका यू नो बॉडी अच्छी बनेगी, स्मार्ट बनेगा, कई कुछ, मतलब कई कुछ क्लेम आप जोड़ देते हैं क्योंकि वो बेचना उनको ज्यादा, जरूरत से ज्यादा है. सो वहां पे मुझे
0: ये नहीं बताते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है उसके साथ,
1: क्या क्या नहीं करना. ट्रांसपेरेंसी नहीं है. बट फिर आप जो जितनी नीड है उतना तो ठीक है, पर आप उसको एक्स्ट्रा नीड नहीं ना क्रिएट करना चाहिए. वो तो लॉजिकल भी नहीं है और एथिकल भी नहीं है.
0: पर डॉक्टर अरुण, आज की अगर हम बात करें तो आजकल की जो माएँ हैं, और ये सिर्फ दिल्ली बॉम्बे का प्रॉब्लम नहीं है, कानपुर लखनऊ जैसी जगहों पर भी ऐसा होता है कि बिफोर यू हैव इवन हेल्ड योर बेबी, बिफोर यू हैव इवन understood what is happening, somebody else is taking a call that your child, the first thing that they have when they enter this world will be formula. आपसे बिना पूछे, अगर एक सिजेरियन मदर है समझ लीजिए, ठीक है, उनका सी सेक हुआ है, वो थकी बैठी हुई है, कई केसेस में शी स्टिल नॉट बैक टू हर सेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट एटसेट्रा, उसमें मदर से बिना पूछे, बिना उनको इन्फॉर्म करे, बिना उनको बताए कि इसके क्या ड्रॉबैक्स या नहीं है, हॉस्पिटल्स बच्चों को सीधे फॉर्मूला दे रहे हैं,
1: हाँ, बिना पूछे देते हैं,
0: क्या ये लीगल है?
1: इसमें इलीगैलिटी नहीं है, बिकॉज मेडिकल एडवाइस के ऊपर अगर दिया जाता है वो इलीगल नहीं है, बट इसमें एथिकल कंसर्न बहुत बड़ा है कि विदाउट दैट नॉलेज ऑफ अ पेरेंट, विदाउट गिवन द फुल नॉलेज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, तो आप उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं कह सकते. सो हमने एक बार मुहिम चलाई थी, फ्रेंड इन मुंबई, शी इज ए इंजीनियर, जिंसी वर्गीज, शी स्टार्टेड एक, अभी भी वो change.org पे पिटिशन चली हुई है, 1,00,000 से लोग ऊपर साइन कर चुके हैं कि भाई कम से कम फैमिली को और मदर को और फादर को किसी को भी कंसेंट साइन तो कराओ कि फार्मूला देना है. तो वो मैंने और उसने ज्वाइंटली चलाई हुई है, बट पॉइंट इज के सुनने वाले कम है लोग, सुनने वाली सरकार नहीं है हमारे पास, वो जब तक नहीं होंगे वो रियलाइज नहीं कर पाते. तो प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर या प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं फार्मूला, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इस चीज का के बताना चाहिए. प्रोबेबली
0: तो क्यों नहीं बताते,
1: दे बिलीव दैट के ये ठीक है, एक ही बात है.
0: मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों है, डॉक्टर्स भी इसके बारे में नहीं बताते हैं, नर्सेस भी नहीं बताती हैं, इकोसिस्टम में हमारी माएं नहीं बताती हैं इसके बारे में.
1: देखो, एक तो बेसिक फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि जो मेडिकल डॉक्टर है उसकी मेकिंग में ये वाली चीजें नहीं आती हैं. उसमें वो डॉक्टरों को बनाने के बाद जैसे फार्मा इंडस्ट्री के हाथ में छोड़ दिया जाता है, तो वो जो दवाइयां बताते हैं, तो होल थिंग इज ट्रीटमेंट ओरिएंटेड. तो ट्रीटमेंट ओरिएंटेशन में ये प्रिवेंटिव पार्ट जो है, ये कोई कोई डॉक्टर जो अपने आप सीखना चाहता है वो सीख जाता है. प्रैक्टिस में जैसे कोई स्किल ट्रांसफर नहीं, पढ़ाई में लिखा होगा कहीं अच्छा है बुरा है, बट वो बात है कि इतनी अच्छी स्किल्स पढ़ाई में ट्रांसफर नहीं हो रही हैं, जो कि नर्सेज में बेटर है थोड़ा. हमने सिलेबस एक बार चेक किए थे स्किल्स के. उसके बाद जो डॉक्टर्स की किताबें हैं, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, ये लैक करती हैं स्किल वाले काम में. नॉलेज दे रहे हैं कि ब्रेस्ट मिल्क इज गुड, वो तो बच्चे को भी पता है कि ब्रेस्ट मिल्क इज गुड. अगर आपको किसी को पूछ लीजिए, डिब्बा वर्सेस
0: सबको नहीं पता है सर, सबको ये लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क से तो पेट नहीं भरता है, बच्चा ठीक से नहीं सोता है, टॉप फीड तो देनी पड़ेगी.
1: वो एक और बात है. मेरा कहने का मतलब ये था कि व्हेन आई से गुड मींस इन टर्म्स ऑफ हेल्दी, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल, इन टर्म्स ऑफ एज कंपेयर टू द आर्टिफिशियल फीडिंग, कंपेयरिंग आर्टिफिशियल फीडिंग, जितनी रिसर्च
0: आर्टिफिशियल फीडिंग,
1: यस इट इज, वी बीन सेइंग इट फॉर एजेस. आर्टिफिशियल फीडिंग इज आर्टिफिशियल फीडिंग, इसमें कोई वो नॉन टेक्निकल नहीं है, टेक्निकली आर्टिफिशियल है. तो वो जितनी रिसर्च हुई है दुनिया में 80s में, साइंटिस्ट वर चैलेंज्ड कि भी आप प्रूव करके दिखाइए कि ब्रेस्ट मिल्क बेटर है, राइट, बिकॉज जैसे आपके पास एविडेंस नहीं है. जब फार्मूला इंट्रोड्यूस किया 60s-70s में, तब तो कोई किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है इसको इंट्रोड्यूस करने का. वो स्टोरी बार बार रिपीट हो रही है हर चीज पे, कि जब कुछ इंट्रोड्यूस होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, चाहे वो फूड है चाहे फार्मा है, तो कोई पूछता नहीं है. जब उसके अगेंस्ट बात खड़ी होती है, तो फिर बात जो अल्टरनेटिव आना चाहिए,
0: जो नेचुरल अल्टरनेटिव है, उसका आपको
1: एविडेंस देना पड़ता है. तो ये एक बहुत बड़ी आयरनी है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें मेन स्ट्रीम नहीं होती. एजुकेशन में भी ले लीजिए, मेडिकल एजुकेशन या उसके बाद हायर एजुकेशन जो पीडियाट्रिक्स की है, ये न्यूट्रोलॉजी, डे बाय डे दे आर गेटिंग मोर इन टेक्निकल, जैसे गैजेटरी बेस्ड, यू नो आपके अस्पताल में कितने इनक्यूबेटर हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, कितने ये हैं, आप उस तरफ ज्यादा वो हाई एंड है. नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट नेसेसरी, बट आई थिंक द मेडिकल डॉक्टर हैज टू पुट हिज माइंड into this area also in terms of preventive, which is a very, very important thing to do.
0: A lot of mothers gravitate towards formula milk because they think ki, I'm not able to make enough milk.
1: Ji.
0: मेरा बच्चा भूखा है मेरे मिल्क से पेट नहीं भर रहा है ये क्या मिथ है कि मदर्स कांट मेक इनफ मिल्क
1: ये सोनल दिस इज अ परसेप्शन दिस इज अ परसीव्ड रिस्क एक्चुअली इट्स नॉट अ डिजीज सो होता क्या है व्हेन अ मदर सेज दिस टू अ डॉक्टर और अ हेल्थ वर्कर वेयर तो उसका सफट से जवाब आता है कि लीजिए डिब्बा ले लीजिए वो एक बीमारी को ट्रीट करता है अंदर से राइट कि उसको लगता है अभी दूध पूरा नहीं आ रहा बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए तो वो अपनी तरफ से एक तरह का इलाज करता है उसको बीमारी जो है नहीं
0: नहीं है बीमारी
1: एक्चुअली बीमारी नहीं है ये बीमारी होती तो शायद इसका इलाज भी मिल जाता आज तक इट इज अ परसीव्ड रिस्क विच इज अ बेस्ड ऑन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क देयर आर टू हार्मोन्स इन द बॉडी वन इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन As the name suggests, it produces milk. In the breast में cells होती हैं उस cells में secrete होता है जैसे हमारे आंसू आते हैं तो उसी तरह उन cells में दूध जो है वो बनता है बन के वो बाहर आता है छोटी छोटी पाइपों में से नीचे आता है फिर ऑक्सीट जो वो cells हैं जहाँ पे वो दूध बन रहा है उसके इर्द गिर्द माइक्रो मसल्स होते हैं तो वो उनको अब पुश करना है दूध को नीचे अब पुश करने के लिए ऑक्सीटोसिन चाहिए ऑक्सीटोसिन जो है वो जब बच्चा शुरू करता है फीड प्रोलैक्टिन तो पहले से काम कर चुका होता है प्रेगनेंसी से ही
0: करेक्ट
1: जब ऑक्सीटोसिन
0: के ब्रेस्ट इनलार्ज होते हैं व्हेन यू आर प्रेपिंग अप
1: हां तो वो तैयारी हो रही होती है
0: थर्ड ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाता है
1: अब ऑक्सीटोसिन काम उस दिन शुरू करता है जब बच्चा सकलिंग शुरू करता है तो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स ऊपर से चालू होती है ब्रेन से रिलीज होता है वो जाता है जाके फिर दूध को आगे बढ़ाता है द टू मेजर डिफरेंसेस इन दीज टू हार्मोन्स प्रोलैक्टिन डिपेंड्स ऑन द हाउ मच बेबी सकल्स
0: ओके
1: राइट मोर सकलिंग मोर मिल्क
0: ओके
1: सो ऑक्सीटोसिन डिपेंड्स ऑन मदर्स स्टेट ऑफ माइंड इफ इट्स डाउट पेन एंग्जाइटी तो ऑक्सीटोसिन थोड़ा डिप्रेस होना शुरू हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन कम है तो फ्लो कम होगा दूध पड़ा है बना हुआ है इट जस्ट डजंट फ्लो वेल सो उसका इलाज क्या है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस दैट इज वेयर द रोल ऑफ ए लैक्टेशन पर्सन कम्स और ए डॉक्टर और ए नर्स हूसोएवर वॉन्ट्स टू हेल्प ए मदर Building confidence during pregnancy that milk will never be below the need of a baby, even if they are two.
0: That's crazy.
1: It's hard work, no doubt. Even for feeding one baby exclusively, but it is possible. It is possible, and when I always say, if you don't support a mother, if you means the whole health system. If a health system doesn't support a mother, she is likely to fail. Then comes the role of the family. Because this failure occurs in the hospitals. First failure. Uska data bhi bada important hai. Hindustan mein 90% women deliver in the hospitals now. But only 41% start breastfeeding within an hour of birth.
0: Only
1: 41%. This is the NFHS 5 data. 6 ka bhi aaya nahi hai. Pata nahi kya improvement. Par NFHS 4 aur 5 mein koi farak nahi pada 10 saal mein. Abhi tak aap dekhiye, tab tak, agar 1 in 2 women you are not able to support, whether they are normal or cesarean, that doesn't matter. Breastfeeding has to succeed. Cesarean doesn't mean that you have to give formula because it was a cesarean.
0: No, but this is the myth. People think क्योंकि cesarean हुआ है formula तो देना ही पड़ेगा.
1: तो health system उसको believe करवाता है. उधर से family तो feel करती है कि mother को शायद थकावट है, उसको rest चाहिए. हम नहीं ये कह रहे कि नहीं है. But जो ये hormone release होते हैं, इनसे भी वो mother को relaxation मिलता है. वो भी एक important element है इसी को deal करने के लिए. कि लेटे-लेटे दिया जा सकता है. और ऐसा तो है नहीं कि लगे ही रहना है. So there are possibilities the condition is that she should be well supported. Automatic nahi kuch hota hai. कि ऐसे बोल के चले जाए, नर्स आई डॉक्टर आई बोल के चले गए दूध पिलाओ अपना, बहुत बोल रहे हैं ऐसे, तो वो भी ठीक है, सिर्फ मैसेज देना भी ठीक है, बट दैट इज नॉट इनफ।
0: क्या करना चाहिए
1: सक्सेसफुल करने के लिए?
0: सिनेरियो बताइए, अगर कोई इसमें मदर्स देख रही हैं जो एक्सपेक्टिंग है, जो डिलीवर करना चाह रही है, उनको लग रहा है अब सी सेक्शन हुआ तो मतलब फॉर्मूला ही मिलेगा, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है,
1: नहीं है,
0: तो क्या तरीका है इसका?
1: इसका तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान, आई थिंक एक तो मदर को या फैमिली को, मदर फादर कोई भी फैमिली मेंबर हो, उनको ये चीजें सीखनी चाहिए कि ये क्या है। अब हमारी जो साइट है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया की, उस पर हमने दो दो तीन तीन मिनट के 6 वीडियो मॉड्यूल बना के डाले हैं इसके लिए, एक इस तरह की चीज है, एक जैसे
0: कि ब्रेस्ट फीड कैसे करना है।
1: हाँ, उसमें 6 वीडियोस हैं, उसमें सारे एलिमेंट्स हैं जो आने चाहिए फॉर सक्सेस, विच इंक्लूड्स सर्जेरियन सेक्शन, विच इंक्लूड्स हाउ टू एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, विच इंक्लूड व्हाई शुड ब्रेस्ट फीड, विच इंक्लूड्स अगर बच्चा मान लीजिए सर्जेरियन होता है तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, तो वो जो 5-6 चीजें जरूरी हैं उन्हीं की हमने बना के वहां पे डाली है, तो उसको हमने उसका नाम भी दिया था, यू डिसाइड, यू नो, सो आई डिसाइड फॉर फीडिंग माय बेबी, नोबडी एल्स, सो यू गेट द पावर, यू गेट द नॉलेज एंड यू गेट द पावर, सो दिस इज अ मैसेज फॉर द मदर्स,
0: विल नॉट डिसाइड, द नर्स विल नॉट डिसाइड, द हॉस्पिटल विल नॉट डिसाइड, आई विल डिसाइड इफ आई वांट टू फीड माय चाइल्ड।
1: यस, and for that if a mother, I bet if a mother sees those 6 videos and in addition if she wants to read half an hour, we have a small booklet on our website, you know, guide for parents, for
0: example. I'll put those links,
1: it's available in 9 languages.
0: Yeah,
1: right, so any mother can read that.
0: But samajh nahi pa rahi hu, like aap agar aap सी सेक्शन से निकल कर आए हैं, पोस्ट ऑप में आपको होश नहीं आया है, तो आप कैसे ब्रेस्ट फीड करेंगे?
1: मैं आ रहा हूँ उस पर, अब तो ये तो एक प्रेपरेशन हो गई प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेपरेशन हो गई कि आपको क्या है, तो आप अपने सवाल तैयार कर लीजिए सपोर्ट के, तो आप अपने हेल्थ सिस्टम को बोलिए कि आई वॉन्ट टू ब्रेस्ट फीड, राइट, सो दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप एज ए मदर, सो यू नीड टू टेल द डॉक्टर अटेंडिंग ऑन यू, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, या फिर मान लीजिए सर्जेरियन होता है तो जो बाकी वहां पे एनेस्थेटिस्ट हैं, या यू हैव टू डिक्लेयर योर इंटेंट,
0: ओके,
1: कि आई वांट टू ब्रेस्ट फीड, काइंडली अरेंज व्हाटएवर सपोर्ट सिस्टम यू हैव, समबडी बाय द साइड
0: हु कैन हेल्प मी।
1: वो ये करेंगे कि बेबी को पैदा होते ही, पैदा होने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, नॉट जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग, वो कहते हैं कि 1 घंटे में इनिशिएट करनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसे फटाफट पीने लग गया बच्चा, उसको बच्चे को लाना है यहाँ पे, जब बच्चा पैदा हुआ उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना होता है, और स्वीडन ने बड़े साल पहले डेमोंस्ट्रेट कर दिया था, इफ यू पुट द बेबी नेकेड ऑन द नेकेड मदर्स चेस्ट, बेबी क्रॉल्स टू गो टू द ब्रेस्ट, डेमोंस्ट्रेट, ये यू नो अंदर से ये स्किल्स हैं, नेचर टेल्स देम वेयर टू गो, मे बी दे वर सिंकिंग, there is a smell there, the baby gets that,
0: yeah they can smell it,
1: so the baby reaches, catches the nipple, ye us video mein dikhaya gaya tha, I think maine jab shuru apne career mein ye dekhi thi film mein, what I mean is ke somebody should assist bringing this baby, helping the mother to start, so initiating even that process,
0: yeah
1: she can lie down after the cesarean table,
0: even if she's unconscious,
1: नो अनकॉन्शियस तो कमी बहुत रेयर है कि आपको जीए में करते हैं, सर्जरी सेक्शन में अनकॉन्शियस नहीं होती मदर, अगर होते भी है मान लीजिए वो जब आप जीए का असर खत्म हुआ, जनरल एनेस्थीसिया का जब असर खत्म हुआ तो हम कहते हैं उसी टाइम शुरू कर लो, तो 1-2 घंटे में वो भी खत्म हो जाता है, हम ये कह रहे हैं कि मदर को लाइंग डाउन में ही रखिए, लाइंग डाउन में ऐसे सीधा रखें, ऊपर से भी बच्चा पी सकता है, इशी वॉन्ट्स टू टर्न होके भी पी सकता है, बैठना कोई जरूरी नहीं होता उस समय कि बैठ के ही पिलाना है या पर्टिकुलर पोस्चर लेना है, ऐसा नहीं होता, वो बच्चा ऊपर से भी पी सकता है, तो हमने देखा है कई बार अपने अस्पताल में जिसमें मैं काम करता था हम करते थे, पॉसिबिलिटी थी।

0: We are beginning the bulletin with our focus on Uttar Pradesh, specifically on Saharanpur as we speak. It's a mega mosque demolition showdown that's now erupted. The mosque at Saharanpur DM complex has been completely demolished. Now, illegal mosque is being razed, and over that very matter, we see a showdown now looming. Major police action after the court order came in with SP Ikra Hasan under house arrest. Kairana MP further stopped from going to Saharanpur. Heavy force, that is police force, has been deployed outside Ikra's house as we are speaking at this given point of time. These are visuals of the very mosque being demolished at Saharanpur in Uttar Pradesh. And meanwhile, the leader who's been put, the Kairana MP, who's been stopped from going to Saharanpur at this given point of time, and Samajwadi Party's Ikra Hasan having been put under house arrest at this point. These are the details that have come to the forefront. Now, as we speak, let's first take a look at the ground reports coming in to get an idea of how the situation looks like on the grounds as the demolition took place.
1: Saharanpur ke DM parisar mein bani masjid ko ab bulldozer se dha diya gaya hai. Aap mere piche dekhenge, ye visuals hain. Yahan der raat se hi jo hai yahan par bulldozer jo hai wo लगातार इस मस्जिद को ढाने का काम जो है यहाँ पर कर रही है। तो पुलिस फोर्स पूरा मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये डीएम परिसर में जो मस्जिद बनी हुई है उसको यहाँ से ढाया जा रहा है। आप देखेंगे कि दो दो जो बुलडोजर हैं यहाँ पर मस्जिद को ढाने में लगे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो देर रात से ही पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था, पूरी सड़कों पर सहारनपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। और आप देखेंगे कि सुबह होने से पहले ही, यानी कहें कि रात से ही यहाँ पर बुलडोजर पहुंच चुके थे, नगर निगम की गाड़ियां पहुंच चुकी थी और इस जो ये मस्जिद परिसर है, डीएम परिसर में जो मस्जिद बनी हुई है इसको पूरी तरीके से जो है वो ढाया जा रहा है। आप साफ विजुअल्स में देखेंगे कि लगभग काफी समय से इसको, इस मस्जिद को लेकर के जो एक विवाद चल रहा था और मस्जिद परिसर का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं बार बार जाकर के कोर्ट में जाकर के इस तरीके की जो अपील कर रहे थे इसको लेकर के रोकने की, लेकिन जिस तरीके से देर रात से ही जो सहारनपुर में है वो कार्यवाही लगातार जारी थी, सहारनपुर के जगह जगह पूरी सड़कों पर जो है पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। और अब सुबह होते ही जैसे ही सब किसी पर नजर पड़ी तो इस जो मस्जिद है डीएम परिसर में बनी हुई इसको पूरी तरीके से ढा दिया गया है। डीएम परिसर में जो मस्जिद बनी हुई थी इसको अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है।
2: देखिए, यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है।
1: लगातार बातचीत की जा रही थी कि अभी इस मस्जिद को लेकर जब नोटिस जारी किए गए थे कि लगभग अभी उनका भी कहना यह था कि 20 से 22 दिन अभी उनके पास थे ताकि वो अपनी इस मस्जिद को लेकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।
2: हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
3: देखिए, रात पूरी रात हमारे लोग जागते रहे, हम लोग लगातार जो अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे वो करते रहे, सारी इंफॉर्मेशन देने के बावजूद मस्जिद नहीं तोड़ी शहीद की गई है, वहां संविधान की धज्जी उड़ाई गई है। रातों रात पूरी चारों तरफ से घेरा हुआ है, वहां मेरे MLC हैं, वो भी सब लोग हमारी पार्टी के साथी हैं, सब लोग घूम रहे थे पूरी रात चारों तरफ से घेर करके, घरों में बंद करके लोगों को और मस्जिद को डिमोलिश कर दिया।
0: आशीष श्रीवास्तव जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट विथ मोर डिटेल्स। आशीष, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले अगर डिमोलिशन की बात करें तो कल जो 4 सितंबर को ये ऑर्डर आई थी कोर्ट से और कल रात से ही हम देख रहे हैं कि डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो ऑलरेडी जारी है यहाँ पे, और डिमोलिशन आज सुबह से भी उनका जो काम है वो शुरू हो चुका है। मीनवाइल अगर हम इसकी भी बात करें तो देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी की जो MP है वो इकरा हसन, उनको हाउस अरेस्ट पे डाला गया है, काफी भारी तैनात पे पुलिस वहां पे उनके घर के सामने डिप्लॉय की गई है, इनके बारे में पूरी जानकारी दीजिए।
4: बिल्कुल, देखिए, सहारनपुर की इस जो मस्जिद है जिसको इलीगल बताया गया, जो कलेक्ट्रेट परिसर में थी, जिसको लेकर कोर्ट ने पहले नोटिस भी जारी किया और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही ये डिमोलिशन एक्शन वहां पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब मस्जिद यानी कमेटी जो मुस्लिम साइड थे वो गए थे कोर्ट और वहां पर जाने के बाद उनको राहत नहीं दी गई और जो एक ऑर्डर पहले का था डिमोलिश का उसी को लेकर ये किया जा रहा था। लेकिन जो एमपी है समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से वहां की लीडर है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की लीडर है, तो उनके मुताबिक ये एक्शन गलत हुआ है और कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड है या जो मुस्लिम साइड से उसको पूरी तरीके से सुना नहीं गया है, इसका भी एक एलिगेशन लग रहा है, जिसके तहत वो आज वहां पर जहां ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है वहां पर जाना चाह रही थी और वहां पर जाकर उन लोगों से मिलती और शायद इस जो प्रदर्शन चल रहा है एक तरीके से कह सकते हैं, जो वहां पर डेमोलिशन चल रहा है उसको वो रोकने का भी प्रयास करती, जिसके चलते पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया और अभी वो हाउस अरेस्ट है, पुलिस ने उनको जाने से मना कर दिया है क्योंकि वो उस स्थल पर जाना चाहती है जहां पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तब ऐसे में चूंकि वो वहां गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है और ऐसे में प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट करा रहा है, तब ऐसी स्थिति में वहां पर जाना कहीं ना कहीं सियासत को खड़ी कर देगा।
0: सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, वी हैव सम मोर न्यूज कमिंग इन राइट नाउ, लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट इट। दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी interacting with teachers on Teacher's Day. These are the visuals that have come in off that very exchange that's taken place. He's met a team of teachers.
5: Initially, wo is अगर चीज से हैं तो कम से कम वो पहचान सके कि उन्हें एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, तो इन विषयों पे हम काम करते हैं, हाइजीन्स पे और बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर वाले इश्यूज पे।
6: आप इसी विषय में काम कर रही हो तो मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का और बहुत मैंने मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप कराती हैं, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया। एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों की रचना को आदत बनानी चाहिए। अब जैसे ड्रग्स का मामला, अभी कुछ बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, क्योंकि पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, क्या माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में कोई किसी बच्चे में बदलाव तो नहीं आ रहा है? मैं बात तो आप लोगों से कर रहा हूं, लेकिन एक प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूं कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए। और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकता है। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे। साथियों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं।
0: व्यूअर्स, दिस इज द पोस्ट दैट्स बीन मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन टीचर्स डे, सितंबर 5th, दैट वी सेलिब्रेट एज टीचर्स डे in this country. He's come out to appreciate the strong contribution of teachers to the society. Of course, he's paid homage to Dr. S. Radhakrishnan. It's his birthday that's celebrated as Teachers Day. He was the second president of India. And this is the National Teachers Day Award winners who were all invited to his residence yesterday itself, a day ahead of Teachers Day, where he spoke to them quite in a conversation, very open conversation, deep conversation, insightful one, where they've exchanged views and opinions about how to guide the next generations of the country, the youth of this country, shaping their future, shaping their minds in ways where they will come out to be the leaders of tomorrow. And a host of several such subject matters were a part of this candid conversation that the Prime Minister, the exchange that he shared with these teachers, several insightful ideas that came in from them. Several of these teachers, in fact, apprising him about the projects that they have taken up to ensure that they can, in fact, guide the youth of the country to a better tomorrow. Now, with that, we have Maria Shakil joining us on the broadcast with more insights and details on this. Maria, very good morning to you. It is Teachers' Day today as we speak. Just a day before, we see the Prime Minister having interacted with these group of teachers who are all the teachers' winners, the national teachers' winners that was, in fact, hosted by the Prime Minister at his residence.
7: Yes, that's right. And just some time from now, Prime Minister Modi will be attending the centenary celebrations of SRCC, which is Sriram College of Commerce in Delhi, and he will be addressing the gathering there as well. So this interaction happened at 7 LKM, that is Prime Minister's residence, and you can see a lot of fun and chatter there. The teachers are sharing their experiences with the Prime Minister, a lot of interesting anecdotes being shared as well. And the Prime Minister in his tweet says that Teachers Day, and why India celebrates Teachers Day, it is about appreciating the strong contribution of teachers to our society and paying homage to Dr. S. Radhakrishnan. These are, of course, women and men who, as teachers, won the National Teachers Award, particularly because of exemplary service that they have done. As teachers, they are teaching in different parts of India. And in the teaching job, of course, is considered one of the most noble jobs in the country. And, given the kind of push that they do for education and the contribution that they make, this is something which is certainly very, very interesting and very fascinating.
0: Very true, Maria. And you know, as you also mentioned about the visit of the Prime Minister later in the day to the SRCC, in the national capital itself. You know, the BJP has, of course, been looking at a youth-centric outreach program at this given point. And when we speak of teachers, they play a primary role in students' lives, in shaping their minds and guiding them towards the right directions. Of course, the Prime Minister has in the past as well. We've seen him in such interactions with the youth, with children, and he's very fond of them as well, that we have in fact seen. But this interaction with the teachers also brings to light a very important aspect of those who are behind shaping these children, the youth's future in the country.
7: Absolutely. I mean, let's be clear. These are our first set of interactions to the world in many ways. You know, be it from the junior school, that is the primary school, to higher secondary, and then, of course, the interactions that we have had with our teachers as well has shaped us. And hence their role as teachers and also the shapers of our minds certainly remains. There's no doubt about it. But I see this interaction particularly in the context that there is a continuous outreach which is happening by the government. But this is not for the first time that Prime Minister Modi has interacted with teachers. This is almost like an annual ritual which happens. But I think what is going to happen in some time from now will become very, very important, which is his interaction with students at the

0: बच्चों को एक नवाचारी तरीके से विशेष करके साक्षात्कार लेना सिखा रही हूँ बच्चों को।
1: घर में जाकर के मम्मी पापा का भी इंटरव्यू करते होंगे?
0: लेते हैं सर। और अभी तो खेल खेल
1: ये
0: में
1: खाना क्यों पकाया, ऐसा क्यों पकाया
0: जी सर,
1: ये निर्णय किसने किया था
0: जी सर,
1: बजट कितना खर्च किया था।
0: मेरे स्कूल के सारे बच्चे अब रिपोर्टर ही बनना चाहते।
2: केमिस्ट्री पढ़ाते लेकिन साथ साथ ही बच्चों को एनवायरनमेंट एजुकेशन, उनका कॉन्फिडेंट लेवल पब्लिक स्पीकिंग में, उनको मेंटरशिप करके स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल के मंच पर खड़ा किया है।
1: आपने कहा कि आप बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, ठीक है? अगर मैं आपके यहाँ विद्यार्थी हूँ और मुझे पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपने आप को अच्छा ऑरेटर बनाना है, तो मुझे टिप्स दीजिए, मुझे क्या क्या करना चाहिए?
2: आपको एक तो कॉन्फिडेंस होना है।
1: कैसे आएगा? कैसे आएगा?
2: कॉन्फिडेंस पहले तो बहुत सारे प्रैक्टिस होंगी। सॉरी सर, मैं इतना लाइक आपके वो ऑरा देखकर और थोड़ा सा मेरा डाउट हुआ सर।
1: अच्छा, यानी मतलब आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो ऑरा नहीं होना चाहिए?
2: नहीं होना चाहिए,
1: होना चाहिए।
2: तो पहली है सर,
1: फिर तो लोग सुनेंगे ही नहीं, ऑरा ही देखते रहेंगे।
2: आपको तो देखते ही रहेंगे सर।
1: हो सकता है एक आध बच्चा शिक्षा में ठीक नहीं होगा, लेकिन परमात्मा ने हरेक को कोई कोई ताकत दी होती है, उसकी टैलेंट पहचानने के लिए कोई कोशिश करते हैं आप टीचर लोग?
3: बहुत सारी कोशिश करते हैं, इनफैक्ट वही हमारी कोशिश होती है कि, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे विद्यालय में या हमारी कक्षा में जितने बच्चे हैं उन सभी में अलग अलग खूबी है, अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग चैलेंज है, और एक शिक्षक के नाते मैं उन सारे टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करती हूँ और मैंने किया है।
4: आपने एकलव्य खोल करके एक स्कूल नहीं बनाया, बल्कि लगभग मेरे हिसाब से उतने गुने परिवार को जोड़ा। जो परिवार फर्स्ट जनरेशन लर्नर है आज के दिन में, उनके वो कभी स्कूल नहीं देखे, उनके बच्चे आज हमारे यहाँ से NIT IIT का सपना देख रहे हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं।
5: मेरा शोध का विषय ब्रेस्ट कैंसर रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर आज भी एक ऐसा विषय है जिसपे महिलाएं बात करने से बहुत हिचकती हैं। तो कुछ जो चीज़ें हमारी कैपेसिटी में जो हम कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्क्रीनिंग या कुछ ऐसी बातें उनको बताना कि जिससे कि इनिशियली वो इस अगर चीज़ से हैं तो कम वो पहचान सके कि उन्हें एक डॉक्टर की सलाह की

0: जरूरत है। तो इन विषयों पे हम काम करते हैं, हाइजीन्स पे और बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर वाले इश्यूज पे।
1: आप इसी विषय में काम कर रही हो तो मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मैंने मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप कराती हैं, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया। एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों की रचना को आदत बनानी चाहिए। अब जैसे ड्रग्स का मामला, अभी कुछ बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा ऐसा नहीं, क्योंकि पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय हैं, क्या माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में कोई किसी बच्चे में बदलाव तो नहीं आ रहा है? मैं बात तो आप लोगों से कर रहा हूं, लेकिन एक प्रकार से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूं कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए। और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकता है। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे। साथियों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं।
2: On that note, viewers, this is a new political focus for the BJP, connecting directly with India's Gen Z. Prime Minister Modi will be addressing students at Delhi Sri Ram College of Commerce during its centenary celebrations, with his interaction with young India expected to put the spotlight on education aspirations and the priorities of the next generation. Prime Minister Modi returns to Delhi Sri Ram College of Commerce decades after his 2013 visit as Gujarat Chief Minister, this time as the Prime Minister. Now, the SRCC outreach comes as the BJP steps up a broader Gen Z connect. From the One Day, One University program announced on August 19th to a dedicated team for nationwide youth reach itself, the party is now planning more direct engagement with the students. The outreach is also expected to be linked to the Prime Minister's birthday, with senior leaders being trained for youth-focused activities across the states. And there is a clear digital shift too, with the BJP pushing reels, interactive sessions, youth-oriented content to engage a generation that increasingly lives online.

0: are watching India Today.
1: कानून के दायरे में रहकर कि कोई उत्सव मनाता है तो उसको सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको समर्थन करे, उसको प्रोत्साहित करे। और ऐसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी आयोजन भी था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को मैंने कहा भी हर थाने में करो, हर जेल में हम आयोजन करो, हर महत्वपूर्ण स्थल पर होना चाहिए। आप रोकेंगे क्यों और कैसे रोक सकते हैं? हमारे कान्हा तो यहां पे कंस की ही जेल में पैदा हुए थे, तो क्या उसको हम भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे। कभी वो जेल थी, आज हमारे लिए श्री कृष्ण जन्मस्थली है। और श्री कृष्ण जन्मस्थली देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु आया हुआ है। पिछली सरकारें उसको समझ नहीं पाई थी, उन भावनाओं को सम्मान नहीं दे पाई थी, और जनता जनार्दन की भावनाओं को जो भी सरकार कुचलने का कार्य करती है, लोकतंत्र उसको कुचल कर रख देता है, उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा कर देता है। और यही इनकी दुर्गति का कारण है। इन्होंने यूपी की इस विरासत को अपमानित किया, इन्होंने अयोध्या को भी अपमानित किया, इन्होंने हमारी इस पावन ब्रजभूमि को अपमानित किया, इन्होंने काशी को भी अपमानित करने का काम किया था। और यही कारण है कि यूपी इन्हें अब स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करने वाला है। यूपी का व्यक्ति अब कर्फ्यू मुक्त और दंगा मुक्त वातावरण का अभ्यस्त हो चुका है। अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। और इस चंगापन को लेकर के अब वह पूरे उत्साह के वातावरण में डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दिए जा रहा है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन उसी बदलाव का परिणाम है जो चुनौती से भागता नहीं, उन चुनौतियों में संभावनाएं देखता है और उन संभावनाओं को समाधान तक पहुंचा करके सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है। जो लोग चुनौती को समस्या मानते थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू ग्रस्त बनाया था, दंगा ग्रस्त बनाया था, अराजक बनाया था, उपद्रव प्रदेश में बदल दिया था। जिन लोगों ने चुनौती को एक संभावना के रूप में लिया, उन्होंने उन संभावनाओं में सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित भी किए। और वही प्रगति आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको दिखाई दे रही है। 2017 के पहले जन्माष्टमी के आयोजन को थाने, यानी एक ही आयोजन होता था जो थानों में होता था और जेलों में होता था, उसको समाजवादी पार्टी ने बैन कर दिया था, कावड़ यात्रा को रोक दी थी, जन्माष्टमी के आयोजन को इन्होंने रोक दिया था। मैं 17 में जब आया तो मैंने पहले देखा कि कावड़ यात्रा, मैंने पूछा भाई कावड़ यात्रा क्या तैयारी है, जब हमारे अधिकारी अन्य राज्यों के साथ, क्योंकि 5 राज्य उसके साथ जुड़ते हैं, यूपी के साथ उत्तराखंड भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, सभी जगह के श्रद्धालु आते हैं, तो इनके साथ एक अंतर्राज्यीय बैठक भी होती है, इंटर स्टेट जो बैठक होती थी उसमें हमारे अधिकारी गए थे। मैंने कहा क्या तैयारी है, उन्होंने कहा साहब जो गत वर्ष का जियो है हमने उसको ही जारी करने के लिए कहा। मैंने कहा क्या है गत वर्ष का जियो, उन्होंने कहा साहब डीजे नहीं बजेगा, घंटा संघ घड़ियाले सब नहीं बजेंगे, भाई हमने कहा तो फिर क्या है, ये शिव की यात्रा है या कोई सौ यात्रा निकल रही है? मैंने कहा बैठक मेरे सामने कराओ। मैंने अगले सप्ताह बैठक करवाई, सभी राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। मैंने कहा भी देखो यूपी के अंदर डीजे भी बजेगा, संघ घड़ियाल सब बजेंगे, हाँ कावड़ की एक ऊंचाई हम सुनिश्चित कराएंगे, हम सुविधा देंगे, सुरक्षा भी हम देंगे और भक्तिमय माहौल में कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए, जो सुविधा चाहिए हमसे लो। अधिकारी मुझे डरा रहे थे, कह रहे थे साहब उपद्रव हो जाएगा। हमने कहा भी कोई उपद्रव नहीं होता है, मैं जानता हूं कौन उपद्रवी है और उपद्रवियों को हम ठीक कर देंगे। आपने देखा होगा कोई उपद्रव नहीं। इस वर्ष 5 करोड़ श्रद्धालु थे कांवड़ यात्रा में, गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच एक ही उसमें 5 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ यात्री थे। रोहिलखंड का दूसरा है, अयोध्या से बस्ती गोरखपुर वाली तीसरी यात्रा चलती है, प्रयागराज से काशी की चौथी चलती है, बुंदेलखंड की अलग है, मैं इनकी काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन क्षेत्रों में केवल एक ही कांवड़ यात्रा में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे, एक भी जगह कोई उपद्रव नहीं था, कहीं अव्यवस्था नहीं थी, हर व्यक्ति खुशी के साथ आगे बढ़ रहा था। आप लोगों के उत्सव के इस आनंद को भी छीनना चाहते थे, हमने इसको फिर से पुनर्बहाल कराया, कहा नहीं इसको रोका नहीं जा सकता है। अब यूपी बीमारू नहीं है, अब वो यूपी नहीं है जिसकी पहचान गड्ढा युक्त सड़कों से होती थी, वह यूपी नहीं है जिस यूपी की पहचान होती थी कि जहां से सायंकाल होते ही अंधकार प्रारंभ हो जाए वह यूपी का सीमा है। अब यूपी की पहचान देश के अंदर एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा नेटवर्क किसी राज्य के पास है तो वह यूपी है। 60% एक्सप्रेस वे हमारे पास हैं यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मेट्रो की सुविधा सबसे ज्यादा सिटी के अंदर चलने वाली है वो यूपी के अंदर, 7 सिटी में वर्तमान में हम मेट्रो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा संचालित कर रहे हैं। भारत की पहली रैपिड रेल यूपी में, भारत की पहली इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यूपी से प्रारंभ हुआ। एयर कनेक्टिविटी में देश के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नेटवर्क किसी के पास है वो यूपी के पास, 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ आज यूपी इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र आवागमन के लिए माध्यम नहीं है, ये केवल हमारी गति को तेज करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी गति के साथ साथ आर्थिक प्रगति को भी एक नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य इस अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने यूपी के अंदर किया है। जिले 25 हैं, लेकिन आज के दिन पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर आप हम लोग 79 यहां के प्रोडक्ट हैं जिसको हम GI टैगिंग कर चुके हैं, यानी वह ग्लोबल मार्केट के लिए अब वह अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। और यह उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इन सभी चीजों में सफलता प्राप्त की है। आज मैं मान सकता हूं कि यूपी के लिए बेहतरीन अवसर है हमारे यहां नौजवानों के लिए। हर जनपद में हम एक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन सभी पे हमारे हर जनपद में इसकी ट्रेनिंग की बेहतरीन सुविधा, हमारी वोकेशनल एजुकेशन में भी और टेक्निकल एजुकेशन में भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। अटल टिकरिंग लैब के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी हमने अपने छात्रों के लिए ये सुविधा माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में उसको एक आज की इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का उसे कार्य किया है। ये नया भारत का नया यूपी है, ये अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है तो आधुनिक विकास को भी अपने साथ पूरी मजबूती के साथ लेकर के चलता है। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी इतिहास प्रसिद्ध वे घटनाएं होती हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम भी किया था, ये वही धरती है। लेकिन उस धरती के सामने आजादी के बाद जो संभावनाएं आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए थी, उन संभावनाओं को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तिलांजलि देकर के कुंद किया गया, उन्हें अपमानित किया गया। यहां के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस के रूप में बदलने की बजाय उसे प्लानवादी बनाने का प्रयास किया गया। दुष्परिणाम क्या था? दशकों तक यूपी के सामने बीमारू राज्य के रूप में अपनी पहचान को छुपाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। यहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का व्यापारी अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का हर नागरिक जब यूपी के बाहर जाता था तो अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। गलती उस युवा की नहीं थी, गलती उस बेटी की नहीं थी, गलती उस व्यापारी या उस उद्यमी की नहीं थी। बीमार यूपी नहीं था, यूपी में तो सब कुछ था। यहां संभावनाएं थी, यहां विरासत थी, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि थी, सबसे अच्छा जल संसाधन था, लेकिन योग्य नेतृत्व का अभाव था। बीमारू उत्तर प्रदेश नहीं था, बीमारू मानसिकता थी जो 2017 के पहले यूपी में शासन कर रही थी। वह बीमारू थी, वह बीमार थी, इसलिए उसने यूपी को बीमारू बना दिया। उनकी नीति बीमार थी, उनके क्रियाकलाप बीमार थे, इसलिए यूपी बीमारू बना। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यूपी अब बीमारू नहीं है। यूपी भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमने यूपी को बॉटम थ्री से टॉप थ्री इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। मुझे याद है प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं एक बार दिल्ली के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठा था। उस समय समाजवादी पार्टी के शिक्षा मंत्री अचानक आ गए तो हम लोग एक ही जो उनका रिटायरिंग रूम था उसी में बैठे थे। तो उसी दिन वे गोरखपुर के एक कार्यक्रम में थे। गोरखपुर आप जानते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की बलिदानी भूमि भी है। गोरखपुर में ही गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नाम पे एक पार्क का उद्घाटन था, तो पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री। और जब उनको भाषण देने के लिए वे गए तो उन्होंने मंच से पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं लिया, उन्होंने इस बात को कहा कि साहब मुझे बिस्मिल्ला साहब के जन्मदिन पर आकर के खुशी हुई। मंच से एक सज्जन ने कहा कि भाई ये बिस्मिल्ला साहब नहीं है, ये सहनाई वादक के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब नहीं है भाई, ये तो क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। कहा कि तुम भाजपाई हो इसलिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहे हो। ये उस समय के शिक्षा मंत्री बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के। तो जिस व्यक्ति को क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सहनाई वादन के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के नाम में ही जिनमें अंतर महसूस न होता हो, वे उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा को कहाँ ले गए होंगे आप सहज कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हर नौकरी में सेंध लगाना भी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको उन्होंने अपने कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया था और इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। सुशासन जहां से प्रारंभ होता है, और मुझे लगता है कि कानून का राज कैसे होता है, उस बेटी से पूछिए किराना की। यानी जिसने अपने बचपन में अपने पिता को खोया है, कौन पूछ सकता उन लोगों से। और इसीलिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है कि नहीं, इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ इसने खिलवाड़ किया है तो इसको जेल या जहन्नुम में से एक जगह पहुंचाना जरूर है, क्योंकि ये इसका हकदार है, क्योंकि इसने जुर्म किया है। वह जुर्म किया है जो किसी अपराध से बड़ा अपराध है, और इसीलिए उस अपराध को सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया है। आज मुझे प्रसन्नता है किराना में प्लान नहीं है, और कुछ लोग दुस्साहस किए थे, अभी आपने देखा होगा लोगों ने प्रयास किया था कि अन्य जगह जैसा अपराध कर लेते हैं वैसे यूपी में कर सकते हैं। गलत फहमी के शिकार थे, ये यूपी है, नए दौर का यूपी है, ये बोलता नहीं है, प्रणाम देता है। कोई ताकत अजमा के देखेगा तो उसकी ताकत को चकना चूर करके रख देगा यूपी। यूपी पीछे हटने वाला नहीं है, हर उसको जवाब देने की सामर्थ्य रखता है। और कुछ लोगों ने जो जरूरत की थी अभी हाल ही में उसी केराना की भूमि पर, तो उसका जवाब मिल चुका है, इससे ही बड़ा जवाब मिलेगा। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, यूपी आज सुरक्षित है, सुशासन के आनंद का अनुभव कर रहा है, अपने विरासत भी और विकास की यात्रा के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस आनंद का अनुभव मुझे लगता है कि कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा युवा भी कर सकता है। आधी आबादी बहनें और माताएं भी कर सकती हैं, अन्नदाता किसान भी कर रहा है, हमारा हस्तशिल्पी कारीगर और वह गरीब भी कर रहा है, जिसको राशन भी मिल रहा है, जिसको आयुष्मान की सुविधा भी मिल रही है, जिसको बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही हैं, स्कूली शिक्षा भी मिल रही है और स्किलिंग के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। 9.5 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं, देश के अंदर किसी राज्य में इतनी नौकरी कभी नहीं। और यहां पे अभी सुश्री अंजना ओम कश्यप जी जो बात कह रही थी कि पर्चा लीक और पर्ची लीक, जो लोग पर्ची लीक कराते थे वही पर्चा लीक भी कराते थे। अब यूपी में पर्चा लीक नहीं होता है, क्योंकि पर्चा लीक करने वाले को मालूम है कि तो जेल तो जाएगा ही जाएगा, बाप दादों की पूरी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवा करके सड़कों पे कटोरा लेकर के घूमने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमने 2020 में ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून बनाया है कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। यही कारण है जब सरकार की नीयत ठीक होती है, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल होता है, हमने 9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो एक वातावरण दिया, 65 लाख नौजवानों को इसके माध्यम से उन्हीं के जनपद या उसी के प्रदेश में हमने उसे नौकरी दी है। और एमएसएमई के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हमने यूपी के अंदर 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर एमएसएमई उद्योग के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं किसी भी क्षेत्र में हम आज जाएंगे, यूपी के अंदर किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, पिछली सरकारों ने जनसंख्या को एक चुनौती माना, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य वैसे ही नहीं बना है, क्योंकि यहां जनसंख्या सबसे बड़ी थी, कृषि का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था, आबादी बड़ी है तो युवा बड़े होंगे, सबसे ज्यादा युवा आबादी यूपी के पास, इतिहास और संस्कृति की सबसे समृद्ध परंपरा यूपी के पास, धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए समृद्ध जो पर्यटन के केंद्र हैं उसकी असाधारण क्षमता भी उत्तर प्रदेश के पास, और देश का सबसे बड़ा बाजार होने के साथ साथ एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद था। हमारे पास वह सब कुछ था जो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर केवल जनसंख्या की दृष्टि से ही नंबर एक बनाने की सामर्थ्य नहीं रखता था, हर दृष्टि से वह यूपी को नंबर एक पर करने की सामर्थ्य रखता था। लेकिन जिन लोगों ने इस चुनौती को समस्या माना, उन्होंने उत्तर प्रदेश की दुर्गति कर दी, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की इस चुनौती में संभावनाएं देखी, उन्होंने सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित किए। हम लोगों ने उन संभावनाओं को आज एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। आज हम मानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी, यह हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में उपयोगी है।
0: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।

0: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी तो लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
1: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे उससे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करता। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।

0: करने दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी इनडायरेक्टली इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, आपने देखा होगा बसपा चीफ मायावती भी इस पर पूरी तरीके से सामने खड़ी हो गई है और वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर मुद्दा बनाने की बात कह रही है कि सहारनपुर में जिस तरीके से हुआ है वो कहीं ना कहीं कम्युनल हारमोनी को लेकर भी एक मैसेज दिया है। तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो विपक्ष है वो कह सकते हैं और साथ ही साथ बसपा सभी इस मुद्दे पर आकर अब सत्ताधारी पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही मस्जिद पर कोई बुलडोजर शुरू होता है चलता है और ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और जो अन्य दल है वो जरूर सामने खड़े होते हैं। उनका मानना है कि सरकार इसमें गलत कर रही है और उन लोगों के साथ गलत कर रही है जो 200 वर्ष या 100 वर्ष से पुरानी मस्जिदें हैं जहां पर जो लीगल वे में चल रही थी और अचानक से उनको बुलडोजर चला दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। और इसी को लेकर ये पूरी सियासत उत्तर प्रदेश में अब आगे बढ़ रही है। और इससे पहले भी हमने देखा था, फिर चाहे वो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो, अलग अलग जगह पर जैसे ही बुलडोजर की बात आती है, जैसे ही कार्रवाई की बात आती है, पार्टी अपोजिशन में जो है वो आगे आकर इस बात को पुख्ता तौर पर रखती है और कार्रवाई की बात करती है कि वहां पर ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे एक पूरी कम्युनल हार्मनी पर डिस्टर्ब हो और साथ ही साथ एक ऐसा बड़ा तबका जो रिप्रेजेंटेटिव है यूपी में वो इफेक्टेड हो इससे। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान भी जो पार्टियों को हो रहा है वो जरूर इश्यू बनता है। और हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर कुछ खुलकर नहीं बोल रही है, क्योंकि उसका मानना है कि ये प्रशासनिक मामला है और इसमें जो कि एक्शन लिया जा रहा है वो कोर्ट के ऑर्डर पे लिया जा रहा है और इसमें जो प्रशासन है वो इम्प्लीमेंट करा रहा है, वो यानी कार्रवाई करा रहा है, तो इस पर बीजेपी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। तो ये तो जरूर है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कवायद कर रही है और इसी वजह से ये सियासत उत्तर प्रदेश में सहारनपुर मस्जिद को लेकर पूरी तरीके से शुरू हो गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं नेता और साथ ही साथ अपोजिशन में जो भी पार्टी है, फिर चाहे वो बसपा हो, यहां तक समाजवादी पार्टी, सभी खुलकर आकर इस एक जो बड़ा वोट बैंक भी कह सकते उत्तर प्रदेश में है उसको लेकर भी साधने की कोशिश और जाहिर की जाती है। 2027 में चुनाव है जिस तरीके से आप जानते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे को, फिर चाहे वो किसी मस्जिद से जुड़ा हो या किसी कम्युनिटी से जुड़ा हो, उसको पार्टियां छोड़ना नहीं चाहती। इसी वजह से समाजवादी पार्टी खुलकर सामने आ रही है और ऐसे में वो मांग कर रही कि ये एक्शन गलत है और इसको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए जिस तरीके से, और इकरा हसन को हाउस अरेस्ट करना भी गलत है।
1: जी आशीष,
0: सांसद है, अपने प्रतिनिधियों से
1: बिल्कुल हम समझ सकते हैं। व्यूअर्स, वी डू गेट एन आइडिया of what the entire episode has turned out to be, and there's a larger debate that's perhaps looming at this given point on this very episode. In fact, let's take you through some more details about the bulldozer action that we are speaking of that's taken place in Uttar Pradesh's Saharanpur. The issue has snowballed into a massive political storm. The authorities demolished a mosque located inside the district magistrate's office complex after a court upheld an earlier order declaring the structure illegal. Administrative officials reached the site as bulldozers began the demolition operation. The collectorate complex has been secured with a heavy police deployment, including provincial armed constabulary personnel, while all gates to the premises have been closed as a precautionary measure. Now, Congress MP Imran Masood has said and called the bulldozer action a violation of the constitution and branded it a black day for the people of Saharanpur. Masood has also alleged that people were locked inside their houses when the bulldozer action was carried out. It's Samajwadi Party MP Ikra Hasan who's claimed that she was placed under house arrest at her Kairana residence itself. Ikra Hasan said large police forces have arrived at her residence as she was preparing to leave for Saharanpur to meet the officials over the demolition. Take a look at the responses we have so far.
2: आदेश इसमें कभी नहीं होता, हर बार यही बात है।
3: बात क्या है, बात बताइए।
2: थोड़ा सा वो है, उसके लिए आप रुक जाइए।
3: किसके पे पाएगी, बताइए।
2: नहीं, आप रुक जाइए।
3: मैं तो किसी भी टाइम जोन भी जा सकती हूँ, मेरी इच्छा भी मेरे घर है। आप बताइए, आप किसके रोक रहे हैं? मैंने कोई अपराध करा है? कोई बात है वो बात बता रहा हूँ।
2: नहीं, अपराध कोई नहीं है, लेकिन अब इस समय जाना ठीक नहीं है, ज्यादा टाइम हो गया। अब मैं क्या
3: हुआ, बात नहीं, आप मेरी खैर खबर इस तरीके से खैरियत करते हैं कि
2: नहीं, जब भी आप बुलाएंगे।
3: मैम 2 बजे आती है मेरे घर, आप लोग आया करे थे, अब बताओ आप क्या बात है, किस वजह से रोका जा?
2: नहीं, खतरा कुछ नहीं है, जन्माष्टमी का त्योहार है, इसलिए रुक रहे मैम को।
3: हम तो कहीं बिघन फैला
2: रहे। नहीं, आप बिल्कुल बिघन नहीं फैलाएंगे, लेकिन हमारा से निवेदन है।
3: हाँ, क्या पता हम किसी त्योहार नहीं शरीक होने जा रहे।
2: नहीं, अब नहीं का
3: नहीं जाइए, निवेदन आप करिए, हिम्मत करिए कि अब नहीं जाइए आप। रोक के दिखा दो आप।
2: नहीं नहीं आपसे निवेदन है,
3: रोक के दिखा दो आप।
2: नहीं वो चीज नहीं,
3: रोकने का तरीका तो नहीं है ना साहब का।
2: नहीं रिक्वेस्ट बिल्कुल है, हम तो करें निवेदन है आप।

0: तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रुक जाना।
1: मुझे कोई मेरी जान को खतरा है?
0: नहीं, क्या बस फिर अब हम इस ऐसे कर
1: रहे? आप जाने लीजिए, मुझे जाऊंगी तो मैं हूँ, रुकती तो मैं आप लोगों से हूँ। देखा तो आपने पहले भी होगा।
2: नहीं, हमारा निवेदन
0: है
1: मैं नहीं रुकूंगी। आपने कर ली, मैंने रिजेक्ट कर दी आपकी रिक्वेस्ट।
0: पुलिस को आपने कोऑपरेट करोगी तो बताओ, पब्लिक कैसे?
1: पुलिस करती है पब्लिक को कोऑपरेट
2: बहुत ज्यादा,
0: हर टाइम खड़ी रहती है।
1: मुझे कभी नहीं करा, मैं आपको नहीं कर सकती। आपको जो करना है करो, थाने ले जाना चाहती है थाने ले चलो,
2: आने की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जब हम कोई ऐसी चीज कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये निवेदन कर रहे हैं आपसे
1: मैडम।
0: तो आप निवेदन तो सुन सकती हो हमारा।
1: सुन लिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया।
0: नहीं, रिजेक्ट करने का मतलब उसकी,
3: देखिए रात पूरी रात हमारे लोग जागते रहे, हम लोग लगातार जो अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे वो करते रहे, सारी इंफॉर्मेशन देने के बावजूद मस्जिद नहीं तो तोड़ी शहीद की गई है, वहां संविधान की धज्जी उड़ाई गई है। रातों रात पूरी चारों तरफ से घेरा हुआ है, वहां मेरे MLC हैं, वो भी सब लोग हमारी पार्टी के साथी हैं, सब लोग घूम रहे थे पूरी रात चारों तरफ से घेर करके, घरों में बंद करके लोगों को, और मस्जिद को डिमोलिश कर दिया।
4: DM परिसर में जो मस्जिद बनी हुई थी इसको अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। देखिए, यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है।
5: लगातार बातचीत की जा रही थी कि अभी इस मस्जिद को लेकर जब नोटिस जारी किए गए थे कि लगभग अभी उनका भी कहना ये था कि 20 से 22 दिन अभी उनके पास है ताकि वो अपनी इस मस्जिद को लेकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।
4: हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
5: सहारनपुर के DM परिसर में बनी मस्जिद को अब बुलडोजर से ढा दिया गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे ये विजुअल्स हैं, यहाँ देर रात से ही जो है यहाँ पर बुलडोजर जो है वो लगातार इस मस्जिद को ढाने का काम जो है यहाँ पर कर रही है। पुलिस फोर्स पूरा मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये DM परिसर में जो मस्जिद बनी हुई है उसको यहाँ से ढाया जा रहा है। आप देखेंगे कि दो दो जो बुलडोजर हैं यहाँ पर मस्जिद को ढाने में लगे हुए हैं, और किस तरीके से यहाँ पर जो देर रात से ही पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था, पूरी सड़कों पर सहारनपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। और आप देखेंगे कि सुबह होने से पहले ही, यानी कहें कि रात से ही यहाँ पर बुलडोजर पहुंच चुके थे, नगर निगम की गाड़ियां पहुंच चुकी थी, और इस जो ये मस्जिद परिसर है DM परिसर में जो मस्जिद बनी हुई है इसको पूरी तरीके से जो है वो ढाया जा रहा है। आप साफ विजुअल्स में देखेंगे कि लगभग काफी समय से इसको इस मस्जिद को लेकर के जो एक विवाद चल रहा था, और मस्जिद परिसर का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं बार बार जाकर के कोर्ट में जाकर के इस तरीके की जो अपील कर रहे थे इसको लेकर के रोकने की, लेकिन जिस तरीके से देर रात से ही जो सहारनपुर में है वो कार्यवाही लगातार जारी थी। सहारनपुर के जगह जगह पूरी सड़कों पर जो है पुलिस फोर्स तैनात किया गया था, और अब सुबह होते ही जैसे ही सब किसी पर नजर पड़ी तो इस जो मस्जिद है DM परिसर में बनी हुई इसको पूरी तरीके से ढा दिया गया है।
6: On that note, viewers, we are shifting our focus to a story that has been gaining momentum over the last 24 hours. It's the right-wing goon Swatantra Bhardwaj, who went viral after allegedly claiming responsibility for the assault on a CJP protester's father and has now been detained from Bulandshahr. In a viral video, Swatantra allegedly boasted about his easy access to senior authorities, claiming that despite the allegations against him, he was still a free man. After CJP members filed a complaint against him, Swatantra now faces multiple charges, which includes provisions under both the POXO Act as well as the Scheduled Caste, Scheduled Tribe Act. He's also faced allegations of the criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint. In the viral video itself, Swatantra also claims to have access to senior BJP leaders and police officials. One of the names mentioned among many tall leaders in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan. Now, Chirag Paswan has distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and that the LGP has also filed a complaint, and not just a complaint, but also sought an FIR against Swatantra. Chirag made it clear that he has no connection with Swatantra and accused him of making a mockery of the law. Meanwhile, CJP members are celebrating Swatantra's detention. They say everyone must stand united against injustice and ensure that those accused of crimes do not walk free.
7: बताइए, जब आप थाने पहुंची तो आप लोगों की मेन डिमांड क्या थी? क्या रिटन में लिख के ले गए थे?
8: देखिए, हमारी डिमांड ये थी कि जो अब तक पुलिस जिसको डिले करते आ रही थी, जिस चीज़ पे कार्रवाई नहीं कर रही थी क्रिमिनल के अगेंस्ट जिसने पापा के ऊपर हमला किया, उनका सर फोड़ा, तो हमारी मांगे ये थी कि आप उनके ऊपर कार्यवाही कीजिए, उसको गिरफ्तार कीजिए। वो खुलेआम घूम रहा है, लोगों को धमकियां दे रहा है और कितना प्राउडली अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारी मांगे यही थी कि आप इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए, ऐसे लोग खुलेआम नहीं घूमने चाहिए। ये कब हम पर हमला कर दें और लोगों पर हमला कर दें कुछ पता नहीं।
9: इस बात को खुलेआम पॉडकास्ट पे कबूल करना और उसके बाद भी अगर उस पे कार्रवाई नहीं होगी तो मैं मानता हूं कि ये बहुत गलत उदाहरण देश और जनता के सामने जाएगा। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
10: वो 2 बजे मेरे ही साथ में था, दिल्ली से क्राइम ब्रांच आई, साथ में लेके चली गई। क्राइम ब्रांच वालों ने कुछ ज्यादा खास बात नहीं करी, बोले डायरेक्ट आके हम क्राइम ब्रांच से स्वतंत्र जी चलो हमारे साथ, तो साथ में ले गए।
11: यू नो अ सेक्शन ऑफ द राइट विंग इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस वाज सम काइंड ऑफ ब्रैगिंग बाय स्वतंत्र भारद्वाज एंड दैट देयर इज नो ट्रूथ इन इट। स्वतंत्र भारद्वाज हिमसेल्फ लेटर हैज सेड that this that he does you know that there is no political patronage whatsoever. How do you look at this entire controversy playing out there?
12: Again, Maria, this is the first time in my life where the goon is accepting ki maine ye kiya hai and then their patrons are saying nahi nahi nahi isne itna nahi kiya. What kind of mockery of democracy is this? Like, we have this guy has on record admitted multiple times he's a known convict, he's a known criminal, he's a history cheater. There are so many of his videos and images of him beating people up in the past as well. And then if you're trying to defend that he was just bragging, who are you kidding? This is like what we are seeing right now in Delhi. It's extremely worrisome. And if Kapil Mishra was not involved, he should come out in the open and say that no, he was not involved in this at all. He should give a clarification. And then Swatantra should be made to submit all the evidence which suggested that Kapil Mishra was the one who called him up, who called the police up. Delhi police, we went to Delhi police because Swatantra bragged ki mereko to us din hi bhi chhod diya tha, main raat ko bahar ghoom raha tha. And the account Delhi police had given us that day itself when me and Saurabh went immediately after the incident, they said they had detained him. We asked for the details of detainment. Ki aapne agar detain kiya tha to detail share kijiye. This is not even, you don't need it to be a hearsay. These are facts. Either he was detained or he was not detained. If Delhi police detained him the other day, they should share the records. Otherwise, what Swatantra is saying is true.
6: On that note, we have more breaking news coming in. This is from Hyderabad. Speeding car rams into parked bikes. Car goes out of control and crashes into 8 bikes is what we're learning. Liquor bottle found inside the car, driving under influence of alcohol as per the police suspect right now. The car crash damages 8 parked 2-wheelers in the very region. No casualties fortunately reported in the incident, but the incident has taken place under the KPHB police station limits. Accused driver handed over to cops. These are the details we have so far. On that note, we have Abdul Bashir joining us on the broadcast with more details on the same. Abdul, very good morning to you. What else do we know about this entire incident so far? We are given to understand there was a liquor bottle found inside the car. How many people were occupying this very vehicle when it in fact rammed itself into so many of these two-wheelers that were parked here?
13: Well, this incident has taken place late night yesterday, that is early morning today, on Saturday, in under the KBHT police station area, where this speeding car has allegedly went out of control and ran into 8 two-wheelers parked in the roadside here. Well, the police reached the spot and found a liquor bottle, reportedly is what is being said. The driver is suspected to have been under influence of alcohol. So immediately the police cleared the premises and took the driver along with them and details regarding the death analyzer test that has been done by the police, and also the reason for this particular accident is to be known is what the police have to say. Well, now, right now, the matter is under investigation, but what we learn is that no casualties have been reported so far, and the driver's identity is yet to be revealed by the police.
6: Right, Abdul, thank you for bringing us those details. We will still be awaiting for what more the probe does reveal into this very incident. On that note, viewers, we are wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates throughout the day. Thank you for watching.
14: You are watching India Today.

0: The Kokro Janta Party, formed barely months ago, has suffered its first rebel breakaway. CJP volunteer Manish Brahmbhatt has now floated the Kokro Janta Party Democratic. Brahmbhatt has accused the CJP leadership of having links with the Aam Aadmi Party, of selling out and politicizing the movement, of sidelining grassroots protesters, and alleges the CJP's aim is now to engage in political deals. But he has gone a step further, calling the Dipke-led camp Team Kejriwal.
1: आज हम कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये शुरुआत क्यों करनी पड़ी? आंदोलन देश का आंदोलन था, लोगों ने अपना खून पसीना बहाया तो आंदोलन सफल हुआ, पर आंदोलन सफल होने के बाद इसका सौदा हो गया है, इसका राजनीतिकरण हो गया है, अब ये टीम केजरीवाल बन चुकी है।
0: दिपके हाउएवर हैज हिट बैक।
2: अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस की बी टीम हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी की बी टीम हूँ, तो मुझे लगता है ये सारे लोग बैठे आपस में और डिसाइड कर ले हम किसकी बी टीम है और किसकी क्या है। हमारे हिसाब से तो हम स्टूडेंट्स की ए टीम है।
0: Brahmbhatt says CJPD will take on corruption irrespective of which party is in power. The CJP began as Dipke's satirical online movement before evolving into a youth-led platform that spearheaded a campaign culminating in the resignation of Dharmendra Pradhan. And now, barely months into its existence, the movement is facing its first internal rupture. Factions and breakaways are the stuff of politics. But for a group that still describes itself as a pressure movement, this could be a first. Is CJPD the beginning of a new political experiment or the beginning of a new battle for the movement itself? Bureau Report, India Today.

0: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
1: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेतागिरी कर रहे हैं, मिले होंगे उससे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: bench, tiles, flower pots. All this has been made from plastic waste. The brains behind this initiative are Sonal and her husband Vaibhav. Their startup, E-Conscious, recycles plastic waste into products suitable for public spaces.
1: हम लोगों में एक ऐसी हैबिट लेके आना चाहते हैं जो नॉट जस्ट रिसाइकलिंग बस रीड्यूस और रीयूज के कॉन्सेप्ट को भी हम आगे लेके आए. सो हमने ई कॉन्शियस लिया. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इको कॉन्शियस जो हमें बताता है कि हमें हर एक चीज, कोई भी प्रोडक्ट हमें खरीदना हो, फेंकना हो, हम उसको कॉन्शियसली एक थॉट प्रोसेस के साथ में लेके चले.
0: While Sonal has specialized in environmental engineering, Vaibhav is an electronics and communication engineer. The couple launched their business during COVID-19 pandemic when massive amounts of plastic waste were being generated due to PPE kits, masks and other single-use plastic items.
2: इसके पीछे का हमारा थॉट था कि अब जो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है या इस टाइप के कोई और इवेंट है जहाँ पे इस टाइप का प्लास्टिक इकट्ठा होता है, तो अब वो उसको हम मतलब किसी तरीके के वो इकट्ठा करके उनको ही कन्वर्ट करके हम कुछ स्कूल के बेंचेस हम बनाए, वहाँ के लिए पार्कों के लिए बेंचेस बनाए.
0: E-Conscious produces benches for parks and schools. It also makes dustbins, paver blocks and various customized products. With Manisha Ladda, Bureau Report, India Today.

0: The Kokro Janta Party, formed barely months ago, has suffered its first rebel breakaway. CJP volunteer Manish Brahmbhatt has now floated the Kokro Janta Party Democratic. Brahmbhatt has accused the CJP leadership of having links with the Aam Aadmi Party, of selling out and politicizing the movement, of sidelining grassroots protesters, and alleges the CJP's aim is now to engage in political deals. But he has gone a step further, calling the Dipke-led camp Team Kejriwal.
1: आज हम कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये शुरुआत क्यों करनी पड़ी? आंदोलन देश का आंदोलन था, लोगों ने अपना खून पसीना बहाया तो आंदोलन सफल हुआ, पर आंदोलन सफल होने के बाद इसका सौदा हो गया है, इसका राजनीतिकरण हो गया है, अब ये टीम केजरीवाल बन चुकी है।
0: दिपके हाउएवर हैज हिट बैक।
2: अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस की बी टीम हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी की बी टीम हूँ, तो मुझे लगता है ये सारे लोग बैठे आपस में और डिसाइड कर ले हम किसकी बी टीम है और किसकी क्या है। हमारे हिसाब से तो हम स्टूडेंट्स की ए टीम है।
0: Brahmbhatt says CJPD will take on corruption irrespective of which party is in power. The CJP began as Dipke's satirical online movement before evolving into a youth-led platform that spearheaded a campaign culminating in the resignation of Dharmendra Pradhan. And now, barely months into its existence, the movement is facing its first internal rupture. Factions and breakaways are the stuff of politics. But for a group that still describes itself as a pressure movement, this could be a first. Is CJPD the beginning of a new political experiment or the beginning of a new battle for the movement itself? Bureau Report, India Today.

0: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
1: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे उससे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।

0: ये साफ जाहिर हो रहा कि सुबह 5 बजे जाकर उसको पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि वो गलती पर है।
1: But that is time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. To stay tuned to India Today.
2: You are watching India Today.

0: welcome. You're watching Pollution Cast Solution on India Today's campaign, where we are looking for an innovation that has the capability to change the fate of Delhi's air. Because we believe in finding solutions rather than lamenting over and over on the problem. So we say, Delhi aapki, solution bhi aapka. The story so far, we invited Delhi's Environment Minister and Honorable Chief Minister in the presence of our esteemed jury to launch our campaign against Delhi's air pollution crisis. And since then, we haven't looked back. We have been flooded with responses. Hence, we decided to share some of them with our audiences today. To begin with, most of us believe that air pollution is entirely about what comes out of the vehicle's tailpipe. But did you know that tire and brake wear also generates significant particulate matter that is usually ignored? Now, well, not all of us were unaware of this. Anvi Singh, 13-year-old student from Navi Mumbai, who's proposed something called tire particle collector that can be fitted near the wheels of the vehicles. This device would use the airflow around the moving wheel to guide some of these particles into a smaller filter. To keep it low cost, we can use stainless steel mesh as the first layer to catch bigger particles and a reusable fine filter as the second layer so that local residents can clean and reuse it multiple times. While she got us all thinking with her idea, we came across a scientist based in Delhi, Mirza Arif, whose innovation Polred claims to capture even these non-exhaust vehicle pollution. Take a look at this report.
1: मैं एक इनोवेटर हूँ. मेरे 16 आविष्कार हैं. मेरा 16वां है, 16th invention है. और पिछले तकरीबन 14-15 साल से मैं एयर पोल्यूशन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ. दिल्ली की आबादी रोज बढ़ती जा रही है. 18 लीटर को एक आदमी CO2 ही रिलीज कर देता है इतनी आबादी में. इसलिए बहुत सारी चीज ऐसी, और एयर पोल्यूशन कोई बहुत छोटी सी चीज नहीं है कि आपने खूब मारी और वो खत्म हो जाएगा. एक डिवाइस बनाई मैं पॉलरेड के नाम से. टाइटल इसका रखा हमने, प्रोडक्ट नेम पॉलरेड, पॉल्यूशन रिडक्शन डिवाइस. वैसे इसका पूरा नाम है मल्टीपर्पज एयर पॉल्यूशन एंड हीट रिड्यूसर डिवाइस. इसमें बात क्या है कि जो पार्टिकुलेट मैटर वो किसी भी किस्म का हो, चाहे मड हो, सॉइल आई मीन मट्टी है, धूल है, राख है, या सिगरेट के बॉट्स है, या कोई चीज बाहर सड़क पे हमने फेंकी है, मेटल पार्टिकल्स हैं, या जो हमारे व्हीकल्स पे और चलते हैं, कुछ वो नमकीन वगैरह खाते हैं उसके पैकेट फेंक देते हैं, ये नहीं करना चाहिए. वो सारा रब होता है सड़क पर और फिर उसके पार्टिकल बन के हवा में मिल जाते हैं. ये सारे पार्टिकल जो रोड पर है, रोड डस्ट में है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो कहीं कहीं गोबर भी आ जाता है सड़क पर, जिस तरीके से हमारे जानवर भी है. ये सबका जो ये पार्टिकल्स का पूरा एक मजमुआ है, इकट्ठा हो गया, ये बंच बन गया, वो डिवाइस चलते चलते ऑटोमेटिकली बस इसमें सक कर रही है. जब हमारी बसें चलती हैं या कारें या मोटरसाइकिलें तो टायर घिसते हैं. आपको हैरत होगी कि दिल्ली दिल्ली में 1,00,000 किलो रोज टायर घिसकर हवा में मिल जाता है, 1,00,000 kg. इस रिसर्च के बाद ही इसके डिवाइस के मैंने फिल्टर उसी हिसाब से डेवलप किए हम लोगों ने मिलकर. जो पार्टिकल्स डिवाइस ने अरेस्ट किए हैं, अब तक मेरी नॉलेज में जितनी भी डिवाइसेस हैं मैंने देखी और स्टडी किया है, उसमें जो भी फिल्टर है, जब उसका फिल्टर चोक हो जाता है तो आप उसको बाहर फेंक दो या उसको झाड़ कर हम उसको धोकर यूज कर ले. उसको ख्याल में रखा तो जो भी पार्टिकल एनवायरमेंट से डिवाइस ने कैप्चर किया वो वापस कभी एनवायरमेंट में नहीं जा सकता. Not even guesses. तो यहाँ ये ब्लोवर में पाइप है जहां से ये सक करेगा, एयर को कर रहा है. और इस साइड में अगर आप दिखा सके कैमरे से, देखिए बहुत छोटी सी मोटर है यहाँ से दिखाई देगी. इस बस में यहाँ से पानी डाला जाता है ताकि जो पार्टिकल इकट्ठे हो जाएं ऊपर से, वो यहाँ पर सब इकट्ठे हो जाएं यहाँ पर आके. ये वो जो आपको गंध इसमें कीचड़ दिख रही है, ये सारे पार्टिकल्स हैं जिसमें धूल मट्टी राख, जूते जो लोगों के घिसे हैं सड़क पर, जो टायर घिस रहा है, जो ब्रेक शू घिस रहे हैं, वो ये सारी गंदगी निकल कर इसमें आ रही है. आप ये देख रहे हैं जो हवा आ रही है, ये इंस्टेंटली हम अपने पैसेंजर्स को बिल्कुल क्लीन एयर दे रहे हैं. मुझे सांस लेना भी अच्छा लग रहा है इस हवा में. ये बाहर हुक से हवा ले रहा है और क्लीन करके दे रहा है, और पार्टिकल्स ये स्किन में हैं जो आपने अभी देखे. ये सब जो ब्लैक कलर है, ये सारा टायर ये पार्टिकल जो हैं ये पॉलीमर पार्टिकल्स हैं और ये तकरीबन 10 से 12 लीटर पानी कीचड़ अंदर से निकला है। इसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक कई लेयर्स हैं फिल्टर्स की, अलग अलग जगह पर, यहाँ से यहाँ तक 7 जगह फिल्टर होता है। एक आखिरी फिल्टर, ये सारे पार्टिकल्स नीचे पानी में कीचड़ में चले जाते हैं, उसके बाद भी अगर कोई धुआं, जिसका धुआं का तो धब्बा आएगा, पार्टिकल तो नहीं है, अगर वो है भी तो उसको हमने ये कि डिवाइस को खोलना ही ना पड़े। ये बिल्कुल नट बोल्ट फ्री एक सिस्टम बना है और इसमें ये आप फिल्टर देख रहे हैं। अब ये 2 जून को डिवाइस लगी थी, आज 27 अगस्त है, तो पूरा जून जुलाई अगस्त 3 महीने बाद भी ये फिल्टर की पोजीशन है कि इस पर कोई डस्ट पार्टिकल ज़्यादा दिखना। ये देखिए, मैं से भी कर रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं, ये सिर्फ जो सड़क का धुआं था उसका हल्का सा काला धब्बा है। तो अभी अगर कभी हमें करना भी पड़ता है 2 महीने या 3 महीने में या मंथली, तो हम सिर्फ हमें ये इसका फिल्टर चेंज करना होगा, वो भी अंदर वाला ये फिल्टर, ये बॉडी ऐसी रहेगी। हम अपने पैसेंजर्स को अप्रोक्सीमेटली 3,000 to 4,000, 3,000 से 4,000 लीटर पर मिनट क्लीन एयर दे रहे हैं। अगर एक बस दिल में 12 घंटे चलती है सिर्फ एक बस, तो मोर देन 2 मिलियन लीटर एयर जो है वो साफ कर रहे हैं दिल्ली की और फिर पब्लिक को दे रहे हैं और पार्टिकल और गैसेस को डिवाइस से कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ 10,000 या 12,000 या 8,000 या 10,000 मान लीजिए 10,000 बसें हैं, तो 2 मिलियन to 3 मिलियन लीटर अगर एक बस हवा को साफ कर रही है, तो आप सोचिए कितनी बड़ा एरिया हवा का से साफ हो सकता है। क्योंकि ये दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म करना बहुत जरूरी है, कि ये है हमारा दिल्ली के लिए सॉल्यूशन फॉर पॉल्यूशन।
0: Many of you have highlighted another important factor, that is vehicle idling at signals. Anvesha Singh from Tonk calls it Project Zero Idle Delhi, and Delhi's Chirag Raghuvanshi says Zero Idle aims to turn traffic lights into a system that manages emissions. It uses items already in place like CCTV feeds, signal timings, and even other sensors. Countdown timers also help. The system uses AI to forecast how long a driver may wait. It then estimates how much time a vehicle will stay idle along with fuel use and emissions. The signal plan can be adjusted with this data. One such innovation is Atmos Pole, currently on a testing stage at Delhi's Rajghat. Sanjay claims his innovation not only cleans Delhi's air, acts as a surveillance device, but also adds to the modernization of India's capital, Delhi. Take a look at this report.
2: My name is Sanjay Komera. I'm Axle One, American company ka CEO. And Axle One is primarily a climate engineering company, focused on solving pollution problems like what we are seeing at Delhi. I come from IT, almost 22 years digital transformation kiya hu US mein, and uske baad started Axle One because I was always passionate about solving bigger problems, and right now around the world the biggest problem is sustainability, primarily on pollution and the water. So founded this company 4 years back. I came to know about India Today's solution or initiative on pollution ka solution, and very happy to kind of talk to you, talk to India Today, and more importantly, aap logon ko solution jo Rajghat mein deploy kar rahe hain, wo solution dikhane ke liye hum log jayenge. We'll go there. Hopefully, whatever India Today is pursuing on pollution ka solution becomes a reality very soon. Delhi has got a lot of greenery, and in spite of that, you know, it is one of the highest polluted cities around the world. So when I've been spending almost 3 months in Delhi, and primarily what I've seen is we need a lot at ground level analytics, ground level information. हम लोगों को चाहिए कि क्या क्या pollutants है, क्यों इतना pollution हो रहा है, कौन से streets है जिसमें ज़्यादा pollution है. अभी हम लोग राजघाट में हैं, ये नया टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन राजघाट में पहली बार हो रहा है, आई मीन दिल्ली में पहली बार, इंडिया में पहली बार, दुनिया में पहली बार, एंड ग्लैड टू ब्रिंग इट टू दिल्ली। सो अभी टेस्टिंग राजघाट में चालू है, इट्स ऑलमोस्ट लास्ट 4 वीक्स वी आर डिप्लॉयड अबाउट 23 पोल्स। आई वुड कॉल इट एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेट एनवायरमेंटल नोड। Basically, the idea behind that was, you know, we have all these street lights that don't do anything, right, except giving you the light. So what we thought was, primarily cities like Delhi requires pollution control at street level. So what we thought was, why don't we convert the traditional street lights into the urban street lights? So, आप जो देख रहे हो, इसमें it has got almost 4-in-1 function in built into it. The primary biggest function is environmental cleaning. So it actually tells you kitna pollution levels hai, and also it tells you how much of pollution reduction the individual street light has done every day. So you see the metrics every 5 minutes. It's real time data. हम लोग इसको डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। डायरेक्ट एयर लेमैन टर्म्स में आपको जो हवा ऊपर से खींच के, इट गोज थ्रू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड द मल्टी लेवल फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जाके आपको साफ हवा बाहर से निकलता है नीचे। एंड मिस्ट ऑपरेशन वी जस्ट एडेड, लुकिंग एट दिल्ली में जितने भी डस्ट लेवल्स ज्यादा है ना, सो मिस्ट इज डेफिनेटली हेल्पफुल to reduce your dust levels, which is PM10 and PM2.5. We have security surveillance built into the pole, and we have solar. This entire pole is solar powered, and you know, in future all the poles will be renewable powered. So technically a net zero pole ho jayega in future. And also this has Wi-Fi. Every pole has got Wi-Fi built into it. In future our goal is to kind of connect people with the infrastructure that we're laying on the ground. So hamara jo initial calculations abhi hai, looking at jitne bhi air flow ho raha hai fan ke sath, so every pole can support clean air to 2000 people per day. So that's a mathematical calculation, and we would be happy to share that with you guys on how we have done the calculation. So that's assume that every pole gives clean air to 2,000 people per day. I will show you right now how beautiful it looks in the night.

0: Some of you have also written to us on how pollution hotspots in Delhi should be identified and the work should begin from that point. But others have also said that every nook and corner of Delhi's roads is a pollution hotspot. In our next story, Kolhapur-based Brothers aim to solve the problem by deploying stronger air filters on footpaths, traffic signals and roadsides. Their innovation, Pavan 3, they say is a tried and tested technology straight from Kolhapur, which will strengthen Delhi's fight against its poisonous air.
1: My name is Prithviraj Kumar. और मेरा भाई सुमित पवार, हम दोनों फाउंडर्स हैं इकोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। हमने ये सोच के साथ ये डिवाइस बनाया है कि कोई डिवाइस सिर्फ लेबोरेटरी स्केल के ऊपर या फिर सिर्फ एक रूम के स्केल के ऊपर या क्लोज एनवायरनमेंट में ना रह के वो ऑन ग्राउंड दिखे, ऑन राउंड वो पोल्यूशन को कम करे, एयर पोल्यूशन को, और वो अच्छे रिजल्ट दे। मतलब पोल्यूशन हॉटस्पॉट जो है, एयर पोल्यूशन के हॉटस्पॉट वहाँ पर वो लगे और रोड साइड डिवाइडर के ऊपर लगे, रोड के ऊपर लगे। तो इस तरह से हमने ये डिवाइस बनाया है पवन 3 करके। ये जो इनोवेशन है ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में ऑलरेडी लग चुका है और जो कोल्हापुर में लगा था वो उसे ये पता चला है कि रिजल्ट जो है वो 29% से ऊपर आए हैं। जो AQI में रिडक्शन कह सकते हो या फिर PM 2.5, PM 10 में रिडक्शन कह सकते हो, वो 29% से ज़्यादा आए हैं। पर वो पवन 1 डिवाइस है, ये अभी पवन 3 सीरीज चल रहा है। तो हमें लगता है कि इसके रिजल्ट जो है वो मे बी 40% पार कर जाए एयर को AQI रिडक्शन के मामले में और PM 2.5 के मामले में। ये जो पवन 3 नामक डिवाइस है ये हाई सक्शन डिवाइस है। इसमें एयर आगे की तरफ से सक होती है। इसके अंदर मल्टीपल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन है। इसमें हेपा फिल्टर्स लगे हैं। जब अंदर हवा इसके जाती है तो हेपा फिल्टर से पास होके ये हवा मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन में प्यूरीफाई होके ये लास्ट में कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम जो हमने बनाया है उसमें से पास होके पीछे से निकलती है मशीन के, जिससे AQI में और PM 2.5, PM 10 में रिडक्शन आता है। इसका मेंटेनेंस जो है वो हम बाई वीकली करते हैं। 14 दिन में कोल्हापुर में करते थे तो दिल्ली की एयर पोल्यूशन मतलब ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमें इसका मेंटेनेंस हमारे हिसाब से हफ्ते में 2 बार करना पड़ेगा। ये जो पवन सीरीज चल रही है इसका कॉस्ट जो है वो 5.5 लाख से चालू होता है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा बहुत रहता है। पर क्या है कि कॉस्ट का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये डिवाइस कौन सा है, उसमें फिल्टर्स कौन कौन से लगेंगे, एक जगह के ऊपर कितने डिवाइसेस लगेंगे, एयर का फ्लो कितना है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है। इस तरह से हम उसमें पार्ट्स वगैरह चेंज करते हैं कि कौन सा पार्ट अच्छा रहेगा, कौन सा फिल्टर अच्छा रहेगा। इस तरह से उसका कॉस्ट जो है वो चालू होता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को मतलब बहुत अच्छा चांस दे रही है, तो मेरे हिसाब से जो बाकी के कंट्रीज़ के सॉल्यूशंस हैं वो शायद उनके कंट्री में अच्छे होंगे। ये इंडिया का जो सिस्टम है इसके तहत इसके लिए मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया ऐसा हमारा सॉल्यूशन है। अभी आप ये पवन 3 डिवाइस देख सकते हो, ये दिल्ली में कीर्तिनगर में लगा है। ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है कीर्तिनगर में, फिर भी ये चल रहा है। ऐसे ये 3 महीनों से चल रहा है। तो हमने इस डिवाइस को इसी तरीके से बनाया कि जो इंडियन क्लाइमेट को सूट करे और जो रफ एंड टफ हो और जो एंटी थीफ हो, हमने इसको फिट किया है ताकि ये चोरी ना हो सके। दिल्ली के बारे में मेरा यही कहना है कि दिल्ली का पोल्यूशन आपको जल्द ही कम होते हुए दिखाई देगा अगर ग्राउंड इनोवेशंस को वगैरह मतलब चांस अच्छा दिया जाए तो। इंडिया टुडे नेटवर्क को और दिल्ली गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया और हम इस कैंपेन को सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं देखते या फिर सिर्फ एक मतलब क्लोज आइडिया नहीं देखते, हम इस कॉम्पिटिशन को ऐसा देखते हैं कि हम इस कॉम्पिटिशन के जरिए, इस कैंपेन के जरिए जो इंडिया टुडे ने लॉन्च किया है पोल्यूशन का सोल्यूशन, इसके जरिए हम भारत के कोने कोने में पहुँचे और इनोवेशन जो है, जो हमने किया है, वो भारत में पता लगे कि एयर पोल्यूशन कम हो सकता है, ऑन फील्ड ऑन रोड पोल्यूशन के हॉटस्पॉट को टारगेट किया जाए तो कम हो सकता है, ऐसा हम सोचते हैं।
0: And well, everything said and done, we are overwhelmed by how so many youngsters have come up with the solution they thought would prove to be useful. Two such innovators in their early 20s who met at a coffee shop decided to join hands and use science at its best. They claim to build one of India's first indigenous microalgae-based air purification systems. Take a look at this report.

0: हाय नमस्ते, माय सेल्फ सिद्धांत कुमार निषाद और मैं लखनऊ यूपी कैपिटल से बिलोंग करता हूँ। मैं जो स्टार्टअप है मटियारी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली मटियारी जो है वो गांव से है मेरे, तो मेरा बैकग्राउंड आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और मैंने अपनी पढ़ाई जो है अपनी कम्प्लीट यूपी में की।
1: आई एम तेजस, आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम बीड महाराष्ट्र एंड आई एम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रॉम माई प्रोफेशन एंड आई हैव डन बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम पुणे and then I also completed masters from IIT Dhanbad. When I met with Siddhant at a coffee shop, it was a very random meetup, but when he explained his startup idea, like he is working from 5 years in this field of algae bacterium for like for sustainability and ecosystem and all, then I got some feeling that okay, this is something about my background or my field, so why can't I join this.
0: We comes from a tier 3, tier 4 colleges area, so जहाँ से इतना ecosystem ही develop नहीं हुआ कि startup चल जा पाए, startup इतना आगे जा पाए। Delhi constantly we look as a young entrepreneurship or young startup, we look as a opportunity.
1: Delhi हमारी राजधानी है, लेकिन उसका मतलब इससे कहते मतलब कि pollution सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, world में भी, इसमें भी। So like हम क्या सोचते हैं अगर हम दिल्ली को crack कर पाए pollution control में by our product, by support of all the government and all the initiatives, agar hum Delhi ko crack karte, it will be a milestone for everyone. We are here in Delhi as in ISBT of Anand Vihar Terminal, and here is our demo prototype where we are keeping this for like at least 1 month and all, like where we got tested positive for like minimizing the PM2.5 of carbon particle.
0: Not only हम एक हवा को साफ करें बट हम एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। बेसिकली मेरा जो फंडामेंटल है, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो ब्रेन फटीग होती है, जो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन होता है, बेसिकली वो उसकी वजह से नहीं होता है कि वो बहुत देर तक पढ़ रहा है, बहुत देर तक वो बैठा है एक जगह। द प्रॉब्लम इज कि ब्रेन हमारा काम मतलब स्लो डाउन हो जाता है जस्ट बिकॉज उसके पास ऑक्सीजन इतनी मात्रा नहीं होती है। इंडोर के लिए कॉन्सेप्ट बनाया था ये, बट उसके बाद ये आउटडोर के लिए भी हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इंडोर के लिए जब हुआ था तो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करें, ना कि एक केवल एक ऑक्सीजन, एक एयर फिल्टरेशन हो। आपके घर में एसी है, वेल एंड गुड, उसको एयर तो साफ हो रहा है, बट वॉट इफ अगर हम एक एड ऑन करें, दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ही इस चीज़ को लाने के लिए ये काई टेक्नोलॉजी आई, और काई बहुत ही हिंदी नेम है, हमारे इंग्लिश हिंदी दोनों में सुटेबल होती है।
1: हमारा जो एनवायरमेंट का पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन फिल्टर करता है? पेड़, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी जो है वो भी उसी इस पर वर्क करता है। अगर आप अभी हमारे घर पे एयर प्यूरीफायर रखते हैं, इट विल ओनली फिल्टर द एयर, एज सिद्धांत ने मेंशन किया, उसी एयर प्यूरीफायर करेगा, नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन लेवल बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस आउटपुट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसका सोल्यूशन कहाँ पे है? सो हमने ऐसा डिजाइन किया है कि अगर हमको प्यूरीफाई करना है, सो वाई नॉट वी अडेप्ट द क्लाइमेट टेक, मतलब जो भी नेचुरल जो उसमें एनवायरमेंट में है उसी को अडेप्ट क्यों ना करें। तो उसमें हमने जो रिसर्च किया, देन वी गॉट टू नो डैट मतलब कि एल्गी जो है, एल्गी नेचुरली फिल्टर करता है और नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है एंड ऑक्सीजन लाइक एक्सहेल करता है। जो वाटर है इसमें, हमने उसमें एक स्पेसिफिक एल्गी मिक्स किया है एक प्रॉपर मतलब फॉर्मेशन में।
0: एयर प्रॉपरली नॉर्मली तरीके से आ रही है, हमने पंप लगाया, सो इसको फीड कर रहा है इस रिएक्टर में। सो बेसिकली जो रिएक्टर फीड हो रहा है वो गैसेस हैं, जो पार्टिकल हैं वो पहले ही सेपरेट हो जा रहे हैं, तो जब सेपरेट हो गए वो गैसेस अब जा रहे हैं, तो गैसेस फिर उसमें अंदर जाके रिएक्ट हो रहा है। अभी जो एक इन्फॉर्मेशन आपको जो जनरलिटी मिलेगा कि 10-15 पेड़ को बराबर है, दैट कैन नॉट बी क्लेम, अभी ऐसे क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी क्या ऑक्सीजन जनरेशन, वो पूरी टेक्नोलॉजी टेक अलग है। हार्डली इसका कॉस्ट 50,000 से 1 लाख के नीचे रहता है, इसकी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एंड इसको जो सेलिंग कॉस्ट आएगी वो चली जाएगी 1.5-3 लाख तक चली जाएगी, एज पर द लॉजिस्टिक। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हमें मैन पावर देखना होता है। बेसिकली अभी तो हम 8-9 पीपल रन कर रहे हैं जो कोर मेंबर है। आई वुड लाइक टू थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल्यूशन का सोल्यूशन फॉर इंडिया टूडे इनिशिएटिव, एंड अगेन दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, वंडरफुल जॉब रेखा मैम एंड मजिंदर सिंसा सर, और DPCC POC अहम डोले सर डायरेक्टर, एंड नरेश सर, एंड लसा कोऑर्डिनेट, संदीप सर, दे ऑल आर कोऑर्डिनेट वेरी वेल. हमने इतने बड़े स्केल पे कभी वर्क नहीं किया, ना कि मैंने कभी ऐसा सोचा, बिकॉज एज अ एकदम यूपी ईस्ट एज अ ऐसे जगह से आना जहाँ पे ऐसे इको सिस्टम नहीं है, और यहाँ तक अचीव करना इट्स वेरी वंडरफुल.
2: Well, it takes a village to solve a problem, and that is what we at Aaj Tak in India today intend to do. It's a community that can bring a change we desire, and with what we saw today, I'm sure we can all be a little hopeful. Before we go, please do not stop flooding us with your innovative ideas. Be assured our jury is on it, and Delhi government is also waiting to implement them in Delhi. To send us your ideas, do scan the QR code on your screens, and let's bring back the air we all deserve, kyunki Delhi aapki, solution aapka.

0: And breaking news coming in ahead of Prime Minister Modi's SRCC visit, Congress Chief Mallikarjun Kharge lashes out at the government. Kharge says that the Modi government has paralyzed and systematically gutted education over the last 12 years. He's added, the future of an entire generation of India's youth has been recklessly destroyed and sacrificed. This is the message that has come in from Mallikarjun Kharge in the form of a post. This is ahead of Prime Minister Modi's SRCC visit that the Congress is now targeting. The ruling party and, of course, Prime Minister Modi lashing out at the government, saying that Kharge is making the statement that Modi government has paralyzed and systematically gutted education over the last 12 years. He added that the future of an entire generation of India's youth has been recklessly destroyed and sacrificed. That's the latest attack from the Congress against the government ahead of Prime Minister Modi's outreach to the youth. Let me take this to my colleague Mosmi Singh, joining us on the broadcast. Mosmi, this latest attack by the Congress clearly timed ahead of Prime Minister's visit to SRCC.
1: That's right. You know, we are seeing a very coordinated attack by the top brass of the Congress party, Rahul Gandhi and Mr. Kharge. They're hitting on slamming the Modi government over unemployment, over the education system of the country. Rahul Gandhi had gone to Maharashtra recently and he met several people who were talking about the primary school state of education of government schools. And thereby, you know, Ms. Kharge is merely trying to underline the core strategic attack of the Congress party over the state of governance in the Modi government, considering that paper leak has been a very big trigger as far as the entire Gen Z agitation is concerned. And now, you know, focusing on schools, the Congress is upping its attack.
0: Yes, absolutely. I want to thank you for getting us those details. Well, connecting directly with India's Gen Z is BJP's new focus ahead of his highly anticipated address at Delhi's Shriram College of Commerce. Modi hosted National Teachers Award winners at his residence in Delhi and discussed innovative teaching methods, classroom technology and ways to build confidence among students. Prime Minister Modi stressed that teachers must protect teachers' childhood and expressed concern over excessive screen time among children. Later today, Prime Minister Modi will address students at the SRCC College during its centenary celebrations, with his interaction with Young India expected to put the spotlight on education, aspirations and the priorities of the next generation. Prime Minister Modi returns to Delhi's Shriram College of Commerce decades after his 2013 visit as Gujarat Chief Minister, this time as Prime Minister. SRCC outreach comes as the BJP steps up a broader Gen Z connect. From the One Day, One University program announced on the 19th of August to a dedicated team for nationwide youth outreach, the party is planning more direct engagements with students. And there is a clear digital shift as well, with the BJP pushing reels, interactive sessions and youth-oriented content to engage a generation that is increasingly living its life online.
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम. अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है. मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा. फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है. और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों की रचना को आदत बनानी चाहिए. अब जैसे ड्रग्स का मामला, अब ये कुछ बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, क्योंकि पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है. क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय हैं, क्या माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में कोई किसी बच्चे में बदलाव तो नहीं आ रहा है? मैं बात तो आप लोगों से कर रहा हूं, लेकिन एक प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूं कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा. बचपन मरने नहीं देना चाहिए. और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकता है। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
3: देखिए, बहुत साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जा रहे हैं। पहले भी 13 में वो गए थे, लोकसभा के 14 के लोकसभा के चुनाव से पहले, और बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिला था। आज जो नया जनरेशन है वो अपना आइडियल आदर्श किसी को मानता है तो वो नरेंद्र मोदी जी को मानता है। अभी एक सर्वे भी आया था सी वोटर का, जिसमें युवाओं में सबसे ज्यादा, जेन ज़ी में सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर है तो वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं।
4: प्राइम मिनिस्टर महोदय, नरेंद्र मोदी विल रिटर्न टू दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स।
5: दिल्ली यूनिवर्सिटी और राम कॉलेज?
4: दिल्ली यूनिवर्सिटी
5: फॉर व्हाट? फॉर हिज कॉन्वोकेशन?
4: यस सर,
5: फॉर हिज कॉन्वोकेशन
4: टू पार्टिसिपेट इन द सेंचुरियन सेलिब्रेशन।
5: नो नो, ही इज आल्सो अपेरेंटली फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ना, एंटायर पॉलिटिकल साइंस उधर से ही किया है ना उन्होंने, तो वो भी डिग्री दिखा दे उधर। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उनका भी डिग्री उधर ही दिखा दे।
6: मैंने देखा कि मोदी जेन ज़ी के लोगों से मिला श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जो धक्का पहुंचा सीजेपी का आंदोलन के बाद, जहां उनको शिक्षा मंत्री का पद तक लेने पड़ा। मेरा लगता है कि जेन ज़ी सारा देश में बीजेपी के सरकार का खिलाफ है। दो बार मिलने से ये मेकअप नहीं होगा।
0: Well, earlier also, Prime Minister interacted with Gen Z through his Instagram profile. In a viral reel, he was seen thanking Gen Z and young people for an overwhelming response and constructive suggestions regarding exam reforms and government decisions.
7: Thank you, friends. कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: The right-wing influencer Swatantra Bharadwaj, who went viral after allegedly claiming responsibility for the assault on a CJP protester's father, has now been arrested by the Delhi police and will be presented in Patiala House Court shortly. In a viral video, Swatantra allegedly boasted about his easy access to senior authorities, claiming that despite the allegations against him, he was still a free man. After CJP members filed a complaint against him, Swatantra now faces multiple charges, including provisions under the POXO Act and the SCST Act. He also faces allegations of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint. In the viral video, Swatantra also claimed to have access to senior BJP leaders and police officials. One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan. Chirag Paswan has now distanced himself from Swatantra, saying his name was being misused. LJP has also filed a complaint against Swatantra. Chirag made it clear that he has no connection with Swatantra and accused him of making a mockery of the law. Right-wing groups staged protests outside Parliament Street Police Station, calling the arrest of Swatantra Bharadwaj due to political pressure, and demanded action against those raising anti-national slogans and abusing Prime Minister Modi. Meanwhile, CJP members are celebrating Swatantra's detention. They say everyone must stand united against injustice and ensure that those accused of crimes do not walk free.
8: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street Police Station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCST Act that has been imposed against Swatantra Bharadwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed. And the third one, if I could show you, the दीज आर द काइंड ऑफ पोस्टर्स दैट हैव बीन पुट अप ओवर हियर. आज समय है अपने सारे सनातनी के साथ को साथ देने का, नहीं तो कोई नहीं आएगा. सो ऑल दीज पोस्टर्स हैव बीन पुट अप. यू कैन सी दैट इन दिस पोस्टर एज वेल. स्वतंत्र हैज बीन शोन एज अ सेंट ओवर हियर. डेफिनेटली द डिमांड्स ऑफ द पीपल आर इंक्रीजिंग. दे आर कॉन्टिन्यूसली डिमांडिंग दैट सीरियस द मैनर इन विच द एक्शन दैट हैज बीन टेकन अगेंस्ट स्वतंत्र भारद्वाज दैट इज अनडेमोक्रेटिक एंड हेंस इट शुड be taken away. But if I could just show you individuals over here, the crowd is gathering over here, and now they have stepped out, the representatives of the people who were protesting over here. They had gone inside, and now they have stepped out after submitting their letter of demands that now they have given to the Delhi police.
9: हजारों संप्रभु प्रभुता की कसम खाने वाले उसका समक्ष संविधान की वो कसम खाने वाले नेता लोग क्या वो संप्रभुता निभाते हैं, हिंसा करवाते हैं जातिवाद धर्म का नाम लेके, क्या उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? सर
10: मैं अपने भाई के समर्थन में आया हूँ. मेरा भाई कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि उसको उसके ऊपर पोस्को जैसा एक्ट और SC ST लगा दिया जाए. जब दिल्ली पुलिस को मारा जा रहा था तो उस टाइम दिल्ली पुलिस कहाँ गई थी? उनको गिरफ्तार करें ना. जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के तिरहमी का समोसा खिला रहे हैं उनको गिरफ्तार करिए.
0: And well, a political storm that has erupted over Hindutva influencer Swatantra Bharadwaj, Chirag Paswan has now filed a complaint accusing Bharadwaj of misusing his name and said neither he nor his party has any link with the influencer. Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action evidence of political protection, turning the case into a full-blown political row. Listen in to the war of words.
6: मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हम आखिर इन्फ्लुएंसर की संज्ञा किसे दे देते हैं. थोड़ी सावधानी हमें भी बरतनी होगी. उनके जो भी वीडियोस मैंने देखे थे वो इस रिपब्लिक को परेशान करने वाले. दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता. लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए और ये कहे कि ट्रंप नेतन्याहू राहुल जी क्या चीज हैं, सब आ जाए. ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है.
11: स्वतंत्र भारद्वाज देश का एक भटका हुआ युवा साथी है. स्वतंत्र भारद्वाज को मानसिक चिकित्सा की जरूरत है. स्वतंत्र भारद्वाज जैसे कई साथी प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर आके गुमराह हो गए थे और ऐसे लोगों पर एक मेरे को लगता है एक साइकोलॉजिकल हेल्प की भी इनको ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है. किस तरीके से वो बयान दे रहे थे, कड़े से लोगों को मार रहे थे, उनके अंदर की नफरत को ख़त्म करना है.
12: इस बात को खुले आम पॉडकास्ट पे कबूल करना और उसके बाद भी अगर उस पे कार्रवाई नहीं होगी तो मैं मानता हूं कि ये बहुत गलत उदाहरण देश और जनता के सामने जाएगा. इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है.
13: यू नो अ सेक्शन ऑफ द राइट विंग इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस वाज सम काइंड ऑफ ब्रैगिंग बाय स्वतंत्र भारद्वाज एंड दैट देयर इज नो ट्रूथ इन इट. स्वतंत्र भारद्वाज हिमसेल्फ लेटर हैज सेड that this that he does you know that there is no political patronage whatsoever. How do you look at this entire controversy playing out there?
14: Again, Maria, this is the first time in my life where the goon is accepting ki maine ye kiya hai and then their patrons are saying nahi isne itna nahi kiya. What kind of mockery of democracy is this? Like, we have this guy has on record admitted multiple times he's a known convict, he's a known criminal, he's a history cheater. There are so many of his videos and images of him beating people up in the past as well. And then if you're trying to defend that he was just bragging, who are you kidding? This is like what we are seeing right now in Delhi. It's extremely worrisome. And if Kapil Mishra was not involved, he should come out in the open and say that no, he was not involved in this at all. He should give a clarification. And then Swatantra should be made to submit all the evidence which suggested that Kapil Mishra was the one who called him up and who called the police up. Delhi police, we went to Delhi police because Swatantra bragged ki mereko to us din hi bhi chhod diya tha, main raat ko bahar ghoom raha tha. And the account Delhi police had given us that day itself, when me and Saurabh went immediately after the incident, they said they had detained him. We asked for the details of detainment. कि आपने अगर डिटेन किया था तो डिटेल शेयर कीजिए. दिस इज नॉट इवन, यू डोंट नीड इट टू बी अ हियरसे. दीज आर फैक्ट्स. इधर ही वाज डिटेन्ड और ही वाज नॉट डिटेन्ड. दिल्ली पुलिस डिटेन्ड हिम द अदर डे. दे शुड शेयर द रिकॉर्ड्स. अदरवाइज व्हाट स्वतंत्र इज सेइंग इज ट्रू.
0: And well, a free trade agreement between India and the United States is closer than ever. In an exclusive conversation with India Today, U.S. envoy to India, Sergio Gore, has said that the India-U.S. trade deal is very close but is being reworked after the U.S. Supreme Court decisions on tariffs. Gore said that the relationship between New Delhi matters a lot to Washington and that India is trusted as a defense partner. U.S. envoy added that President Donald Trump is looking forward to meeting Prime Minister Modi. Commerce Minister Piyush Goyal has also confirmed that talks on the India-US free trade agreement have been closed and an initial set of proposals have been agreed upon. India, however, remains firm on its terms. Piyush Goyal has asserted that US must provide preferential tariffs to India, lower than those offered to other countries, insisting that India remains

0: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
1: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे उससे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करता। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।

0: CJP protest. Take a look at this report.
1: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj posted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he's behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after, CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station, demanding his arrest.
2: Delhi Police,
3: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं बट बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा उतने में ही पुलिस ने देखा उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा तो स्वतंत्र ने उसी का फायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेदार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया.
1: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
4: ये बहुत strange और surprising hearing था. हम लोग court में इंतजार कर रहे थे. हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा. बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो कि उसके तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई.
1: डिस्पाइट बीइंग बिहाइंड बार्स, स्वतंत्र भारद्वाज कंटिन्यूज टू गेट सपोर्ट ऑफ राइट विंग ग्रुप्स. A massive protest was organized outside Parliament Street police station where Swatantra Bhardwaj has been lodged.
5: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street police station where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCST Act that has been imposed against Swatantra Bhardwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
6: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabaav banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne ki jis tarah se sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra racha ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ पोस्ट को क्यों लगाया गया, एससीएसटी एक्ट क्यों लगाया गया. लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. वो लोग आए जरूर थे लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें.
1: इन द वायरल वीडियो स्वतंत्र ब्रैग्ड अबाउट हिज पॉलिटिकल लिंक्स एंड कनेक्शंस विद सीनियर कॉप्स. दिस हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ मैसिव पॉलिटिकल स्टॉर्म. One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
7: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है.
1: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
8: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता. लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए. ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है.
1: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. with Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
0: Time now for a short break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
2: You are watching India Today.

आप सुबह 5 बजे जाकर उस मस्जिद को जो 1911 से आबाद है और एक मुसलमान साहब की जाती दीवी जमीन पर मस्जिद बनाई गई, कलेक्टर ऑफिस बाद में बना, ये जो योगी एडमिनिस्ट्रेशन है, बीजेपी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो तो हायर कोर्ट में भरोसा ही नहीं करती कि भाई आखिर इतनी जल्दी क्या थी। हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते, बताते। ये साफ जाहिर हो रहा है कि सुबह 5 बजे जाकर उसको पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाना देना चाहती थी, क्योंकि वो गलती पर है।

0: are watching India Today.
1: Thank you for staying with India Today. I'm Suesha Samth. And yes, all our focus on Prime Minister Narendra Modi, who is at the SRCC College, where shortly from now he would be delivering that address, as is being seen as the huge outreach of the BJP to Gen Z. Campus charcha with students, that is next on the cards, as Prime Minister chose to commute via metro to SRCC College. On the way, he also interacted with students. This coinciding with the Teachers' Day and also his interaction with teachers at 7 LKM, that continues to be in focus. Prime Minister Narendra Modi, who's visiting SRCC after 13 years. Last, he had visited this college in the capacity of Gujarat Chief Minister. And his 2013 address, that still continues to grab all the attention. Prime Minister Narendra Modi, shortly from now, will be addressing all those students. There you see those various sets of pictures where he was felicitated a short while ago. Prime Minister interacted with students as part of that metro ride. And now, as he is on the dais shortly from now, we will hear from Prime Minister Narendra Modi. His 2013 address that has gained a lot of
2: dignitaries on the dais and off the dais, because डायस पे भी डिग्निटरी है, सामने भी मैं देख रहा हूँ बहुत डिग्निटरीज बैठे हुए हैं. आई थिंक दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द एसआरसीसी. ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर, इट इज अ ग्रेट ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस टू वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी today at Sri Rama College of Commerce. I think, as I have understood, Ajay ji, when Prime Minister came in 13, he was Chief Minister at that time. Today, as the Prime Minister of India, he has first time visited Sri Rama College of Commerce. Friends, aaj Shikshak Divas bhi hai. Is avsar par मैं सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ. आज एसआरसीसी का 100 साल पूरा हो रहा है इस बरस. किसी भी इंस्टीट्यूट को 100 साल तक चलाना और उसी रेपुटेशन के साथ चलाना, ये बहुत बड़ी बात है. इसके लिए बहुत लोग जो अलुमिनास बैठे हैं और बाकी सब लोग इसके लिए त्याग और तपस्या किया है, उन सभी लोगों को इस लेवल पर लाने के लिए मैं सभी को शिक्षा मंत्री के नाते बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं. जैसे रजत जी उल्लेख कर रहे थे, जस्टिस नारिमन, जस्टिस सिकरी, अरुण जेटली और स्वयं रजत शर्मा जी के सहित बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं. फ्रेंड्स, इन 1926 एसआरसी एस्टैब्लिश हुआ. आफ्टर दैट मींस आफ्टर 1926, आफ्टर 21 इयर्स वी गॉट फ्रीडम. टुडे प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन अस कॉल दैट इन coming 21 years, Bharat should become Viksit Bharat and Atmanirbhar Bharat. Usme aapke zimmedari bhi bahut hai. Usi ke saath, aap jo students baithe hai, you are the beneficiary of Viksit Bharat. Ye bhi main aapko nambrata se yaad dilana chahta hoon. Isi vision ke saath, maanye Pradhan Mantri ji ne direction diya कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए. मुझे इसलिए भी आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ, एसआरसीसी ने इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ठाक किया है, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ. मैं हायर एजुकेशन में जो हुआ है वो भी मैं एक ही सेंटेंस में आपको बताना चाहता हूँ. हायर एजुकेशन में टोटल इस बार 4.5 crore students admission hua hai. In last 10 years, it has increased by 1 crore. That is the speciality of the 10, almost 12 years of Shri Modi government. And also, because of this ecosystem and Prime Minister's direction and inspirational leadership, aaj Bharat third largest startup ecosystem hai. And I would like to only tell you, before 2016, when Startup India was launched, that mission was launched, less than 400 startups were there. Today, more than 2,30,000 startups are there in India. They are from Delhi to Bengaluru to Tier 2 cities. Hamare jo bacche hai, aur usme startup mein hai, aur SRCC ka bhi bahut hi student ye startup mein hai. Aane wale samay mein, Bharat ko, duniya ko, reliable manufacturing partners ki zarurat hai. Our high quality services ka bhi zarurat hai. Uske liye skilled human resources jo hai, uska bhi zarurat hai. Aur uska requirement bhi tezi se badh raha hai. Global market mein, there is already a significant gap as far as skilled human resources concerned. India ke paas is samay, jaise maanye Pradhan Mantri ji ne bola hai, yahi samay hai, sahi samay hai, Bharat ka anmol samay hai. To ye opportunity kyun hai? Because India is the youngest country of the world. Highest young population is in India. Aur usi ke saath Pradhan Mantri ji ne ye young India ko skill banane mein aur skilling ecosystem mein aur education system mein nayapan lane ke liye new education policy laya aur skill expansion ke liye bahut karyakram kiya hai. India ke economy bhi aap dekh sakte hain. Last quarter means first quarter of the 2026, 7.8% hua hai. And jab duniya mein itna problem chal raha hai, crisis chal raha hai, aur Bharat the fastest growing economy of the entire world today, that is the advantage of India, that is the leadership of Prime Minister. Aaj Bharat mein jo upyog hota hai, 99% mobile aaj Bharat mein manufacturing ho raha hai, usi ke saath export bhi ho raha hai. Isiliye education, skilling aur economic growth ko saath dekhna zaruri hai. Usi vision ke saath Pradhan Mantri ji hum sabko margdarshan kar rahe hai. India ko global manufacturing hub banana hai to global skilling hub bhi humko banna hai aur is disha mein humko kaam karna hai. For that we need energy. Main aapko aur ek aankda bata ke mera vaani ko viram deta hu. When Prime Minister Shri Modi ji took over in 2014, the total generation of the electricity was 249 gigawatt. Aaj, today, 552 gigawatt of energy is generated, and that is also one of the reason for the manufacturing. Jo manufacturing desh mein badh raha hai, uska wo bhi ek karan hai. Usme, within that 552, 302 is through non-fossil sources and 165 gigawatt is through solar. Main is solar ke bare mein ek sentence batata hoon sirf aur baad mein mera vaani ko viram karta hoon. 2014 ke baad hamara solar production aur wind production jo hua hai isse hamara electricity cost bhi kam hua hai aur paryavaran ke bhi positive parinam hua hai paryavaran ke upar. But main itna hi aapko kehna chahta hoon, 2014 से पहले भी सूर्य था, सूरज था, सूरज में तेजी भी था, लेकिन उस SUN सन में, SUN सन में प्रधानमंत्री जी ने शक्ति को देखा. He has recognized the energy in the sun, SUN सन. And इससे पहले भी जो थे at that time it was only 2.6 gigawatt solar energy and we reached to 165 gigawatt. मैं आपको यही कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, SUN सन का शक्ति का रिकॉग्नाइज किया और वो शक्ति को फॉलो किया और देश को जनता को दिया. पहले वाले थे जो थे वो SUN सन के पीछे पड़ा और सन स्ट्रोक हो गया, इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है. आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, प्रधानमंत्री जी आए हैं, हम सबको एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिलने वाला है. फिर एक बार मैं आपको और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.
3: नमस्कार. थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेटिंग एंड एनर्जाइजिंग वर्ड्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी अराइव एट द हिस्टोरिक मोमेंट एवरीवन हैज बीन वेटिंग फॉर. 13 years back, I was the anchor. It was my privilege. And today again, an honor for me to request our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, a leader par excellence and inspiration for billion dreams, to please deliver the SRCC Centenary Address. Adarniya Pradhan Mantri ji, आपके आशीर्वचन के लिए हमारा विनम्र निवेदन. थैंक यू.
4: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, डीयू के VC योगेश सिंह जी, SRCC के प्रिंसिपल सिमरित कौर जी, अजय जी, मल्लिका जी, रजत जी, SRCC के जुड़े हुए सभी साथी, फैकल्टी, स्टाफ, SRCC अलमनाई और मेरे युवा साथियों, मैं छठा खिलाड़ी हूँ.

आज का ये अवसर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत ऐतिहासिक है। ये देश के शिक्षा जगत के लिए भी उतना ही अहम है। यहाँ एसआरसीसी का हिस्सा रही अनेक पीढ़ियां एक साथ जुटी हैं। मैं आप सभी को एसआरसीसी के इस शताब्दी समारोह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके संस्थापक सर श्री राम जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनके विजन को नमन करता हूं। साथियों, जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपने 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले। इस कॉलेज की यात्रा दरियागंज की वहां एक छोटे से स्थान से शुरू हुई थी और आज वही छोटा सा कॉलेज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। एक ऐसा विशाल वृक्ष जिसने कई पीढ़ियों को छांव भी दी है और अपनी शीतलता से समृद्ध भी किया है। आज भी डीयू में जब कोई पूछता है कि कौन सा कॉलेज, तो एसआरसीसी कहना ही

एसआरसीसी कहना ही अपने आप में ही एक फैक्ट होता है। साथियों, एसआरसीसी के एल्यूमनाई भी बहुत स्पेशल रहे। अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो यहां के एल्यूमनाई ओजी है।

जिन्होंने एसआरसीसी का नाम दुनिया भर में पहुंचाया, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई और रजत जी ने बड़ी लंबी सूची बताई थी और इनमें से कुछ के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला है। हमारे अरुण जेटली जी यहीं पढ़े थे, और मैं कह सकता हूं कि शायद हमारी कोई मुलाकात ऐसी नहीं होती थी कोई एसआरसीसी की कोई घटना न सुनाते हो। और कभी कभी मैं तंग आ जाता था कि एक ही घटना बार बार सुनाते थे। अभी मेरी टीम में भाई संजीव सन्याल भी यहीं से पड़े हुए हैं, बाकी भी काफी साथी हैं यहां मेरे। और ऐसा नहीं है कि यहां से सिर्फ अर्थ जगत के ही लोग निकले, कितने ही आर्टिस्ट से लेकर नेता, वकील, जस्टिस सब यहां से निकले हैं। यानी एसआरसीसी के लोगों ने हर क्षेत्र में अपनी धूम मचाई है। धुरंधर ना हो लेकिन धूम तो मचाई है। साथियों, बीते कुछ दिनों से इस कार्यक्रम की बहुत चर्चा चल रही है, खासतौर पर लोग 2013 के मेरे संबोधन को याद कर रहे हैं। लोगों ने उसको फिर से सुना है, फिर से पढ़ा है। संभव है इस नई पीढ़ी के लोगों ने भी उसको रिविजिट किया होगा। उस स्पीच के एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि वेव बन गई थी, एक लहर सी चल पड़ी थी और आज भी 13-14 साल बाद भी उस सभा का और उस संबोधन का प्रभाव बरकरार है। साथियों, तब आपकी जगह आपके सीनियर बैठे थे और मैं तब सीएम तो था लेकिन मैं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का एक सदस्य भी था और संभवतः तब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं तब की केंद्र सरकार पर लंबे चौड़े अटैक करूंगा, आरोपों की झड़ी लगा दूंगा। लेकिन साथियों, विपक्ष में होने के बाद भी तत्कालीन सरकार का आलोचक होने के बावजूद मैंने इस मंच का वो उपयोग नहीं किया था। मैंने एक विजन रखा, सकारात्मक बातें कही। मैंने तब जो कुछ भी कहा वो मेरा कन्विक्शन था। मैं उन बातों को, उन सपनों को हमेशा से जीता आया, उस रास्ते पर ही चलता रहा। देश के लिए जी जान से जुटना
देश के लिए जीने का जज्बा, जो मेरे भीतर का भाव विश्व है, वो उस दिन 2013 में इसी मंच से मेरा वो भाव विश्व शब्दों की माला में एक एक करके प्रकट होता चला गया था। और मैं देर तक बोला था, फिर मैंने स्टूडेंट से पूछा कि मैं कंटिन्यू करूं, तो उन्होंने जोर से कहा हाँ कंटिन्यू कीजिए। साथियों, मैंने उस दिन पानी के ग्लास का एक उदाहरण दिया था और देश में उसकी खूब चर्चा भी हुई थी। मैंने बताया था कि पानी से आधे भरे ग्लास को देखने के तीन नजरिए क्या होते हैं। एक, जिनको ग्लास पानी से आधा भरा दिखता है। दूसरा, जिनको ग्लास आधा खाली दिखता है। और तीसरा, जिनको ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। आधा पानी और आधा हवा से भरा। साथियों, ये वो समय था जब देश निराशा के दल दल में धंसा हुआ था। मैंने तब भी कहा था कि मैं ग्लास को आधा नहीं देखता, अधूरा नहीं देखता, मैं ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता हूं। आधा पानी से, आधा हवा से। और उस समय आप सब तो स्कूल में रहे होंगे, लेकिन आज इंटरनेट पर जाकर के 2023 और 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी, अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था। जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या, अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं,
उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था। साथियों, एक वो दिन था जब हर मोर्चे पर देश में स्ट्रगल ही स्ट्रगल था, और एक आज का दिन है। आज आतंकवाद फैलाने वाले पस्त पड़े हैं, पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो भारत की सेनाएं घर में घुसकर मारती है। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक शांति बड़ी है, माओवादी आतंक नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है। जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने ते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है, और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं। उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना, ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है
और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है, यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। बावजूद इसके, जिन लोगों के लिए साल 2013 में ग्लास आधा खाली था, उनकी सोच आज भी वैसी ही है। उनके लिए ग्लास हमेशा आधा खाली रहेगा। मैं ग्लास की बात करता हूं और कुछ खाली रहने की बात नहीं कर रहा हूं। साथियों, 2013 में यहां एसआरसीसी में बात करते हुए मैंने P2G2 यानी प्रो पीपल गुड गवर्नेंस की भी चर्चा की थी, जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई हैं। उनका एक स्टाइल था, जब आग लगे तभी नींद से जागो, जब सूखा पड़े तब जाकर कुआं खोदो। मैंने इसी अप्रोच को बदलने की बात कही थी और 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ये करके दिखाया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं साथियों। हाल में ही जनधन योजना को 12 साल पूरे हुए हैं। आज आप फिनटेक के अलग ही दौर में जी रहे हैं, लेकिन 2013 के वो दिन भी थे जब गांव या छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी कई पापड़ बेलने पड़ते थे। उस समय हमारी आबादी 125 करोड़ के पार थी, लेकिन मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे, और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे, महिलाएं थी, माइग्रेंट लेबलर थे, स्टूडेंट्स थे। इसलिए हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है। साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे। दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है, माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैं उस दिन कही बातों को याद करा रहा हूं।
अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। साथियों, 2013 के उसी कार्यक्रम में जब मैंने कहा कि हमें मेड इन इंडिया पर काम करना है, तो पुराने उस समय के इकोसिस्टम के लोगों को ये समझ नहीं आया था। उनको लगता था कि निराशा के उस दौर में मेड इन इंडिया संभव ही नहीं होगा, और उस सोच में पले बड़े लोग आज भी मेड इन इंडिया का मजाक करते हैं। लेकिन साथियों, आज आप मेक इन इंडिया की ब्रांड वैल्यू देख रहे हैं। आपसे मैं एक उदाहरण के साथ बात बताना चाहता हूं। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है। दुनिया के बड़े से बड़े फोन ब्रांड आज भारत को अपना बेस बना रहे हैं। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। 2014 में भारत अपने ज्यादातर मोबाइल फोन इंपोर्ट करता था। आज भारत 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल एक्सपोर्ट करता है। साथियों, मैं छोटे और आसान लक्ष्य लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं देश के लिए बड़े लक्ष्य रखता हूं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूं।

सेनाओं के लिए ज्यादातर चीजें बाहर से खरीदी जाती थी। मैंने आते ही डिफेंस वालों को कहा नेगेटिव लिस्ट बनाइए। पहले उन्होंने 500 नेगेटिव लिस्ट बनाई, बोले ये हम बाहर से नहीं लाएंगे। फिर 1000 बताई, फिर 3000 बनाई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कई बार छोटे से किसी इक्विपमेंट के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता था। हमने देश की सेनाओं के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, चीजों की लिस्ट बनाई, फिर भारतीय कंपनियों को कहा कि ये सब बनाओ। और आज आप देखिए, देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और ये अचीवमेंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन रहा है। साथियों, मुझे देश पर भरोसा है, देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, आप सब युवाओं पर मेरा भरोसा है। और इसी भरोसे के आधार पर मैं विकसित भारत की बात भी कहता हूं। मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा। मेरे नौजवान दोस्तों, भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और वो दिन भी आप देखेंगे जब भारत एक दिन ऐसे ओलंपिक्स का आयोजन करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ये केवल बातें नहीं है, ये हमारे संकल्प है। और इन संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए देश में लगातार काम हो रहा है। साथियों, अभी तो आपकी जिंदगी एसआरसीसी मोड में चल रही है। को-ऑप में चाय हो, या कोल्ड कॉफी पर होने वाली डिस्कशन हो, एग्जाम में लास्ट मिनट नोट्स और प्रिंटआउट के लिए भागदौड़ करना, या फिर क्रॉसरोड्स और बिजनेस क्राउन के ऊपर भी कई मेहनत। आप सब ने यहां के हर मोमेंट को अपने जीवन की एक मेमोरी बनाया है। लेकिन इस कैंपस के बाहर एक नई दुनिया आपको मिलेगी। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं। दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं।

0: उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा का परमानेंट डायलॉग होता है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है। हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हम यूपीआई लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाह यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है। हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया कि जरूरत ही क्या है। हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा फिर मैदान में आ गए, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया, जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज भारत एक अलग मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। जो काम पहले दशकों में होता था अब वो कुछ वर्षों में ही हो रहा है। मैं पूरे फैक्ट के साथ एक और उदाहरण दूंगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी, आपकी कॉलेज 1926 में शुरू हुई, इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी। 1925 में चली थी ये ट्रेन। इसके बाद 2014 तक यानी 90 साल में सिर्फ 30% से भी कम काम हुआ। 30% से भी कम रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया था। हमने सिर्फ 12 साल में रेलवे लाइनों का करीब करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करके दिखा दिया। साथियों, भारत की नीति निर्णयों में आई ये गति दुनिया के बाकी देश भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। बीते दशक में करीब 40 देशों के साथ व्यापार समझौते हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। इसे लेदर हो, टेक्सटाइल हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, हमारा प्रोसेस्ड फूड हो, श्रिम्प हो, ऐसी हर चीज के लिए नए नए बाजार खुल रहे हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब नए बाजार खुलते हैं भारत के गुड्स और सर्विसेज के लिए टैरिफ कम होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ये भारत के नौजवानों के लिए अवसरों का नया आसमान बन रहा है। साथियों, आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित है। लेकिन ये देखकर कुछ लोगों की छटपटाहट बढ़ रही है, बौखलाहट बढ़ रही है। अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा। ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था, होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी, दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे। और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? मैं आपको फिर एक बार पुराने दिनों में ले जाना चाहता हूं। याद कीजिए, आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे, 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी तो पूरी सरकार हिल गई थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। 2008 में बैंकों का संकट आया था तो तब की सरकार ने 2000 तक उस संकट के पीछे छुपने की कोशिश की थी, हाथ तक लगाने की हिम्मत नहीं की। भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम तबाह होने की कगार पर पहुंचा दिया गया था। 2008 में ही मुंबई में भयंकर आतंकी हमला हुआ था तो तब की सरकार पर बाहर से दबाव पड़ा और उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। साथियों, पिछले 12 वर्षों में तो देश में कई सारी आपदाएं आई, कितने बड़े बड़े साइक्लोन हमने झेले हैं, लेकिन देश ने बहुत मजबूती से उनका सामना किया। पिछले 6 वर्षों में तो बहुत बड़े संकट आए, पहले कोरोना जैसी महामारी आई जिसने पूरी दुनिया को ठप कर दिया, फिर रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, उसके बाद ट्रेड को, सप्लाई चेन को ही वेपनाइज करने का दौर शुरू हो गया, फिर वेस्ट एशिया का ये संकट आया। हर बार ये कहा गया कि अब तो भारत नहीं बचेगा। और जो मेरे ज्यादा ही प्रशंसक है वो ये सोचकर खुश थे कि अब तो मोदी फंसा, अब तो मोदी गिरा, अब तो उसे कुचल ही देंगे। लेकिन मेरे देश के लोगों के आशीर्वाद में इतना दम है, इतना दम है कि भारत का बुरा चाहने वालों की हर हसरत धरी की धरी रह जा रही है। दोस्तों, अब 21वीं सदी में नए अवसरों की दुनिया हमारे सामने है। मुझे खुशी है कि आप एम्बिशियस हैं, क्योंकि एम्बिशन किसी टेक्स्ट बुक से नहीं सिखाई जा सकती। एम्बिशंस उस माहौल से आती हैं जो आपके बड़े सपने देखने के लिए आपको प्रेरित करती है। आज हमारा नौजवान साथी कहता है कि अपना कुछ काम करूंगा तो स्टार्टअप करूंगा, कंपनी बनाऊंगा तो यूनिकॉर्न बनाऊंगा, स्पेस और ड्रोन जैसे सेक्टर से जुड़ूंगा कुछ बड़ा करूंगा, कटिंग एज एआई सॉल्यूशन बनाऊंगा, खेती में इनोवेशन करूंगा। 13 साल पहले आपके सीनियर्स ऐसे सपने नहीं देख पाते थे, लेकिन आज आप ये सपने भी देख रहे हैं, क्योंकि आज के भारत में उन सपनों को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम भी बन गया है। साथियों, अब समय बड़े लक्ष्य बनाने और उन्हें प्राप्त करने का है। अभी मैंने लाल किले से कुछ बातें कही थी, मैं आपके बीच भी उन्हें दोहराना चाहूंगा। आप संकल्प लीजिए, भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती, हमारी अकाउंटिंग फर्म्स, हमारी लीगल फर्म्स, हमारी फाइनेंशियल फर्म्स, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें। साथियों, ये सब संभव है। इसके लिए आपके पास नेटवर्क भी है और नॉलेज भी है। साथियों, हमारी आपकी प्रेरणा एसआरसीसी का ये कॉलेज क्रेस्ट भी है। इसमें दो सुंदर प्रतीक है, एक है उगता हुआ सूरज और दूसरा है समंदर में आगे बढ़ता हुआ जहाज। सूरज जो दिशा दिखाता है और जहाज जो दिशा में आगे बढ़ता है। हमें ऐसे नए रास्ते पर चलना है जिसमें सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो, उड़ान हमारी हो, आसमान हमारा हो, तेज हवाओं से टकराए वो जज्बा हमारा हो, सपना हमारा हो, संकल्प हमारा हो, आत्मनिर्भर भारत का परचम हमारा हो, विकसित भारत की राह में, विकसित भारत की राह में तेजी से उठता हर कदम हमारा हो। एक बार फिर इस विशेष अवसर पर एसआरसी से जुड़े सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम।
1: Modi concluding that address at SRCC. That one much applause, Prime Minister, in a direct dig against his adversaries, also harping upon the importance of the youth of the country and how these opportunities will lead us into a Viksit Bharat. Prime Minister took on critics in charcha with students as he again waves out to all the students in SRCC, saying ecosystems lies cannot defeat the truth. Prime Minister making multiple references to his 2013 address at SRCC, saying the glass always half empty for naysayers. Prime Minister once again harping upon the 7.8% growth despite West Asia war, talking about how resilient India has been through the global challenges, but the naysayers remain to criticize the growth of the country. Prime Minister taking on his adversaries in charcha with students at SRCC as he's just concluded that address, where he not just hailed India's growth story during his charcha at SRCC, but he also went on to say that India needs a positive mindset, especially when it comes to the naysayers who have a deliberate plan when it comes to criticizing India. Prime Minister spoke about how defense manufacturing is at an all-time high, and Sach Ki Goonj certainly defeats Jhoot Ki Goonj was a straight-up statement and a full frontal attack made by Prime Minister Narendra Modi against his adversaries. Once again, harping upon the Make in India growth story, Prime Minister hailed India's growth in every aspect, also saying that the naysayers will be naysayers and it is important that the youth focuses on the development of the country and makes use of every opportunity. Prime Minister taking on the quote-unquote Dimagi Naxals once again on this platform as he addressed the students, saying some people have no job but to criticize the country. Prime Minister harping on the growth, the economic growth of the country, also speaking about the many, many milestones that have been achieved by the Modi government during his tenure as Prime Minister, saying that the critics continue to oppose all the good that is being done in the system. He also made a reference to the new parliament and how much resistance that had to face as they went on to fight for building the new parliament. Prime Minister holding no words there in a no-holds-barred speech where he went on to take on his critics and he said, I won't tolerate my baap culture as this has never been the approach of the BJP. He went on to say that he has always believed in governance that is meritorious, and once again taking on his critics in every possible manner to say that some who are determined on bringing down India, on ensuring that we get a negative name, but the youth should not buy into their stories. And he also went on to launch a full frontal attack, saying Sach Ki Goonj will certainly defeat Jhoot Ki Goonj. Listen in to some of those excerpts.
0: बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे. यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है. साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैं उस दिन कही बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं। उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना, ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। कि मैं जो बातें बता रहा हूं, 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या। अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं, उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी। घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
1: We'll continue to get you more excerpts of Prime Minister's big address. For the moment, a very short commercial break. We'll be back on the other side. Stay tuned to India Today.
2: You are watching India Today.

0: And first up, we cut across to breaking news coming in. Prime Minister, who took on critics in Charcha with SRCC, Prime Minister said that ecosystems' lies cannot defeat the truth. He said, glass always half empty for naysayers. This as he made a reference to his 2013 address. Prime Minister Modi said, I will not tolerate the Mai Baap culture, saying that Sach Ki Goonj will certainly defeat Jhoot Ki Goonj. In an unfiltered speech, no holds barred, Prime Minister Narendra Modi hailing the growth story of India, saying 7.8% growth has been witnessed despite the West Asia war and all the global challenges that the world has witnessed. Prime Minister Modi's Dimagi Naxal attack that he launched in SRCC as part of his address, saying that he gave homeopathy dose to Dimagi Naxals, saying some people have no job but to criticize. Listen in.
1: अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं, होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है. इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. साथियों, आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित है. लेकिन ये देखकर कुछ लोगों की छटपटाहट बढ़ रही है, बौखलाहट बढ़ रही है. अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं, होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है. इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है। साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे। दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है, माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। इस कैंपस के बाहर एक नई दुनिया आपको मिलेगी। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं, दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं। उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा का परमानेंट डायलॉग होता है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे, तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है। हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया, तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हम यूपीआई लेकर आए, तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाह यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है। हमने चिप बनाने की बात की, तो फिर कहा गया कि जरूरत ही क्या है। हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा फिर मैदान में आ गए, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया, जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं। उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना, ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। कि मैं जो बातें बता रहा हूं, 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या। अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं, ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं, उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिसिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था। एक वो दिन था जब हर मोर्चे पर देश में स्ट्रगल ही स्ट्रगल था, और एक आज का दिन है। आज आतंकवाद फैलाने वाले पस्त पड़े हैं। पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो भारत की सेनाएं घर में घुसकर मारती है। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक शांति बड़ी है। माओवादी आतंक नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है।
0: Moving on, after influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father at Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
2: Right-wing influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station demanding his arrest.
3: Delhi Police, haast me ho!
4: Haast me ho! Haast me ho!
3: Niyai tumko dena hoga!
4: Dena hoga! Dena hoga!
5: Papa aage gaye aur unhone video banana start kiya aur papa ne meri taraf angle kiya to unko aisa feel hua ki papa unki video shoot kar rahe hain but balki papa unhe jante bhi nahi the to unhone usi time papa ke camera pe haath mara utne mein hi police ne dekha unhone police ne papa ko pakda to Swatantra ne usi ka fayda uthate hue papa ke sar par apne haath pe jo usne ek dhaaredhar hathiyar pehen rakha tha wo papa ke sar pe maar diya.
2: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
6: ये बहुत स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग हियरिंग था। हम लोग कोर्ट में इंतजार कर रहे थे, हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा। बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो कि उसके तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई।
2: Despite being behind bars, Swatantra Bharadwaj continues to get support of right-wing groups. A massive protest was organized outside Parliament Street police station, where Swatantra Bharadwaj has been lodged.
7: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street Police Station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCSC Act that has been imposed against Swatantra Bharadwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
8: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabav banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne, ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra chala ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ पोस्ट को क्यों लगाया गया, एससीएसटी एक्ट क्यों लगाया गया। लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहे।
2: इन द वायरल वीडियो स्वतंत्र ब्रैग्ड अबाउट हिज पॉलिटिकल लिंक्स एंड कनेक्शंस विद सीनियर कॉप्स। This has snowballed into a massive political storm.

0: was misused and filed a complaint against the goon.
1: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
0: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
2: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता, लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए। ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
0: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
3: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order, declaring it illegal. But the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
4: Bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All five gates sealed. RAF and PAC deployed. And the collectorate turned into a fortress.
5: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुश किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
6: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
7: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
4: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
8: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है, तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
4: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इन्वोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, saying a true Hindu respects every faith.
9: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में, और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
4: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
10: ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
11: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि वो गलती पर है।
4: A mosque demolished, an MP allegedly in house arrest, the opposition up in arms. Saharanpur now finds itself at the center of a political showdown. With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.

0: are watching India Today.
1: आज भी डीयू में जब कोई पूछता है कि कौन सा कॉलेज, तो एसआरसीसी कहना ही

एसआरसीसी कहना ही अपने आप में ही एक फैक्ट होता है। साथियों, एसआरसीसी के एल्यूमनाई भी बहुत स्पेशल रहे। अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो यहां के एल्यूमनाई ओजी है।

0: जिन्होंने एसआरसीसी का नाम दुनिया भर में पहुंचाया, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई। और ऐसा नहीं है कि यहां से सिर्फ अर्थ जगत के ही लोग निकले, कितने ही आर्टिस्ट से लेकर नेता, वकील, जस्टिस सब यहां से निकले हैं। यानी एसआरसीसी के लोगों ने हर क्षेत्र में अपनी धूम मचाई है। धुरंधर ना हो लेकिन धूम तो मचाई है। अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा। ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था। होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है। ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे। और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? इस कैंपस के बाहर एक नई दुनिया आपको मिलेगी। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं। दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं। उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा का परमानेंट डायलॉग होता है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है। हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हम यूपीआई लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाह यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है। हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया कि जरूरत ही क्या है। हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हमने देश के लिए मरने मिटने वाले, सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फुफा फिर मैदान में आ गए, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फुफाओं को जवाब दिया, जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है। साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे। दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है, माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी, अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था। जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या, अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे। अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी। आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं। उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 के उसी कार्यक्रम में जब मैंने कहा कि हमें मेड इन इंडिया पर काम करना है, तो पुराने उस समय के इकोसिस्टम के लोगों को ये समझ नहीं आया था। उनको लगता था कि निराशा के उस दौर में मेड इन इंडिया संभव ही नहीं होगा। और उस सोच में पले बड़े लोग आज भी मेड इन इंडिया का मजाक करते हैं। लेकिन साथियों, आज आप मेक इन इंडिया की ब्रांड वैल्यू देख रहे हैं। आपसे मैं एक उदाहरण के साथ बात बताना चाहता हूं। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, दुनिया के बड़े से बड़े फोन ब्रांड आज भारत को अपना बेस बना रहे हैं। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। 2014 में भारत अपने ज्यादातर मोबाइल फोन इंपोर्ट करता था, आज भारत 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल एक्सपोर्ट करता है। साथियों, मैं छोटे और आसान लक्ष्य लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं देश के लिए बड़े लक्ष्य रखता हूं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूं। आप डिफेंस सेक्टर देखिए, पहले भारत की सेनाओं के लिए ज्यादातर चीजें बाहर से खरीदी जाती थी। मैंने आते ही डिफेंस वालों को कहा नेगेटिव लिस्ट बनाइए, पहले उन्होंने 500 नेगेटिव लिस्ट बनाई, बोले ये हम बाहर से नहीं लाएंगे, फिर 1000 बताई, फिर 3000 बनाई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कई बार छोटे से किसी इक्विपमेंट के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता था। हमने देश की सेनाओं के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, चीजों की लिस्ट बनाई, फिर भारतीय कंपनियों को कहा कि ये सब बनाओ। और आज आप देखिए, देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे, आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और ये अचीवमेंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन रहा है। साथियों, मुझे देश पर भरोसा है, देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, आप सब युवाओं पर मेरा भरोसा है। और इसी भरोसे के आधार पर मैं विकसित भारत की बात भी कहता हूं। मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा। मेरे नौजवान दोस्तों, भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और वो दिन भी आप देख के गए। जब भारत एक दिन ऐसे ओलंपिक्स का आयोजन करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ये केवल बातें नहीं है, ये हमारे संकल्प है। एक वो दिन था जब हर मोर्चे पर देश में स्ट्रगल ही स्ट्रगल था, और एक आज का दिन है। आज आतंकवाद फैलाने वाले पस्त पड़े हैं, पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो भारत की सेनाएं घर में घुसकर मारती है। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक शांति बड़ी है। माओवादी आतंक नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है। जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। साथियों, बीते कुछ दिनों से इस कार्यक्रम की बहुत चर्चा चल रही है। खासतौर पर लोग 2013 के मेरे संबोधन को याद कर रहे हैं। लोगों ने उसको फिर से सुना है, फिर से पढ़ा है। संभव है इस नई पीढ़ी के लोगों ने भी उसको रिविजिट किया होगा। उस स्पीच के एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि वेव बन गई थी, एक लहर सी चल पड़ी थी और आज भी 13-14 साल बाद भी उस सभा का और उस संबोधन का प्रभाव बरकरार है। साथियों, तब आपकी जगह आपके सीनियर बैठे थे और मैं तब सीएम तो था, लेकिन मैं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का एक सदस्य भी था और संभवतः तब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं तब की केंद्र सरकार पर लंबे चौड़े अटैक करूंगा, आरोपों की झड़ी लगा दूंगा। लेकिन साथियों, विपक्ष में होने के बाद भी तत्कालीन सरकार का आलोचक होने के बावजूद मैंने इस मंच का वो उपयोग नहीं किया था। मैंने एक विजन रखा, सकारात्मक बातें कही। मैंने तब जो कुछ भी कहा वो मेरा कन्विक्शन था। मैं उन बातों को, उन सपनों को हमेशा से जीता आया, उस रास्ते पर ही चलता रहा। देश के लिए जी जान से जुटना देश के लिए जीने का जज्बा जो मेरे भीतर का भाव विश्व है, वो उस दिन 2013 में इसी मंच से मेरा वो भाव विश्व शब्दों की माला में एक एक करके प्रकट होता चला गया।
1: And we cut across to more breaking news coming in. Congress has hit out at Prime Minister Modi over his SRCC address, saying that the glass half full means other half is filled with PR, unquote. Congress's Kanhaiya Kumar has said that Prime Minister failed to address students' issues, including assault on

0: are watching India Today.
1: Welcome, you're watching India Today. I'm Suvesha Samant. Let's take a quick check of the top headlines we're tracking for you this hour. Prime Minister Modi invokes the Maghi Naxals in his SRCC address, says some are unable to digest India's growth story, insists truth will defeat jhoot ki goonj, refers to opposition as fufaji, whose only job is to criticize.
2: Dusri prajati un logo ki hai, जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं. उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना. इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है. लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया.
1: Prime Minister Modi's big youth connect at SRCC speaks Gen Z language, saying alumni of SRCC are OGs and being from the college is a flex.
2: SRCC kehna hi apne aap mein hi ek flex hota hai. Agar main aapki bhasha mein kahun to yahan ke alumni OG hai.
1: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj arrested after FIR filed against his viral video, remanded to one-day police custody. Swatantra now faces multiple charges, including provisions under the POXO Act and the SCST Act. Big win for forces. Lashkar commander Yasir eliminated in Jammu and Kashmir encounter. He worked closely with Pahalgam mastermind Suleiman. More people rescued from the jaws of death in Nepal. A 60-year-old woman was brought out alive from under a damaged house in Nuwakot. A Chinese worker trapped inside the tunnel also rescued. PM Modi's SRCC address turned into a political attack on the opposition, with the Prime Minister drawing a sharp contrast with what had happened earlier. Prime Minister Modi's address at the centenary celebrations of the Delhi University Sri Ram College of Commerce came with big attacks on the opposition. He said that the recent Dimaghi Naxal remark was like a homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Fufa. Prime Minister Modi further took an aim at what he called my bap culture and said truth will triumph over jhoot ki goonj. Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 during his previous address at SRCC, where India stands in 2026, is also what he said. He pointed out that today India is not only growing at 7.8% but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister Modi also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were being killed along the LOC. Those who once spread terror have been silenced, and if today Pakistan commits any misdeed, the Indian Army strikes back on their own soil. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister Modi failed to address students' concerns in his address and did not even speak on police action on students during the Jantar Mantar protests.
2: Abhi 15 August ka mera bhashan aapne suna hoga. Aise logon ke liye maine Lal Kile se ek homeopathy ka dose diya tha. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है। ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी, दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे हैं। और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है। साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे। दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे। लेकिन ये मोदी है, माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं, उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा नौजवानों से कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था। जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या, अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे। अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी। आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था.
1: Moving on, after influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father at Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
3: Right-wing influencer Swatantra Bharadwaj posted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after, CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station, demanding his arrest.
4: Delhi Police, hoste ho!
5: Hoste ho!
6: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं बट बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा. उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेदार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया.
3: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
7: ये बहुत strange और surprising hearing था. हम लोग court में इंतजार कर रहे थे. हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा. बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो कि उसके तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई.
3: डिस्पाइट बीइंग बिहाइंड बार्स, स्वतंत्र भारद्वाज कंटिन्यूज टू गेट सपोर्ट ऑफ राइट विंग ग्रुप्स. A massive protest was organized outside Parliament Street police station where Swatantra Bharadwaj has been lodged.
8: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street police station where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCST Act that has been imposed against Swatantra Bharadwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
9: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabaab banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne, ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra chala ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ पोस्ट को क्यों लगाया गया, एससीएसटी एक्ट क्यों लगाया गया. लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. वो लोग आए जरूर थे लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें.
3: इन द वायरल वीडियो स्वतंत्र ब्रैग्ड अबाउट हिज पॉलिटिकल लिंक्स एंड कनेक्शंस विद सीनियर कॉप्स. दिस हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ मैसिव पॉलिटिकल स्टॉर्म. One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
10: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है.
3: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
11: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता. लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया है. कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताओ, ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
3: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
1: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
5: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All five gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
12: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुश किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
13: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
14: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रूपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
5: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
15: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है, तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
5: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इन्वोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, saying a true Hindu respects every faith.
16: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में। और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
5: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
17: ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
18: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि वो गलती पर है।
5: अ मॉस्क डिमोलिश्ड, एन एमपी अलेजेडली इन हाउस अरेस्ट, द ऑपोजिशन अप इन आर्म्स। सहारनपुर नाउ फाइंड्स इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ अ पॉलिटिकल शोडाउन। With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: Time now for a short break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
0: You are watching India Today.

0: Hello and welcome. You're watching In the Club. I am Susan. What happens when two cops see justice through completely different eyes? Starring Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran's Daira explores this clash through a gripping investigative thriller inspired by true events. As a shocking crime sparks nationwide outrage, two contrasting approaches to law and justice collide, raising difficult questions about duty, punishment, and the system itself. Take a look.
1: इधर क्यों लाए सर?
2: बताता हूँ क्यों लाए इधर।
3: ये तीसरी बार है ना आप और डीसीपी रमन कुमार ने इससे पहले भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फेस की है।
2: एक्यूज ने मौका ढूंढा और एस्केप करने की कोशिश की।
3: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
2: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
3: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया।
4: ये एक प्लांट पुलिस एनकाउंटर था।
5: What happens when two officers wear the same uniform but see justice through completely different eyes?
6: Accused दो साल से इसी रूट पर था।
3: दो साल, 600 किलोमीटर और रोकने वाला कोई नहीं।
7: ऐसे केसेस में 100 में से 99 बार लड़की घर वापस आ जाती है सर।
2: और वो एक बार फिर से एक फैमिली ने अपनी बेटी खोई है। फिर से
5: Meghna Gulzar's Daira explores this question through a gripping investigative crime thriller that brings Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran together as two senior police officers caught on opposite sides of a complex
8: case.
3: It
9: may get slippery, Raman.
5: Inspired by true events, the film unfolds in the aftermath of a shocking crime scene that sparks nationwide outrage.
2: Unki story over hai.
10: Kaha over? Court kachehri ke chakkar, hamara vakil, unka vakil, abhi to shuruaat hai.
5: What follows is a chain of events and two investigations that force the officers to confront difficult questions about law, duty, justice and punishment.
2: Aur escape karne ki koshish ki.
3: Crime scene recreation ke dauran
2: unhone hamare team par attack kiya
3: aur police ne self defense mein maar diya.
4: Sir, kya ye ek planned police encounter tha?
5: Kareena plays DCP Ajuni Kohli while Prithviraj portrays DCP Raman Kumar.
7: Ghar wapas aa jati hai sir.
2: Aur wo ek baar
5: although both serve the same system, their contrasting approaches to justice soon put them at odds.
3: 17 साल का होने वाला था, 4 महीने बाद.
9: It may get slippery, Raman.
2: बताना अपनी माँ को क्या किया तुमने.
5: Interestingly, Daira also brings the complicated issue of juvenile justice into focus.
2: एक accused तो पतली गली से निकल गया.
3: वो पतली गली नहीं, juvenile protection law है.
2: Juvenile जो rape और murder कर सकता है, उसकी protection.
5: Releasing on September 18, the film features an ensemble cast including Jitendra Joshi, Shitty Jog, Kawaljeet Singh, Sandeep Kulkarni and Trupti Khamkar. Kareena Kapoor Khan was last seen in the action thriller Singham Again, which released on November 1st, 2024.
11: कलयुग है अपनी कलयुग इस बार रावण जीतेगा
3: सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती

0: are watching India Today.
1: PM Modi's SRCC address turned into a political attack on the opposition, with the Prime Minister drawing a sharp contrast with what had happened earlier. Prime Minister Modi's address at the centenary celebrations of the Delhi University Sri Ram College of Commerce came with big attacks on the opposition. He said that the recent Dimaghi Naxal remark was like a homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Fufa. Prime Minister Modi further took an aim at what he called my bap culture and said truth will triumph over jhoot ki goonj. Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 during his previous address at SRCC, where India stands in 2026, is also what he said. He pointed out that today India is not only growing at 7.8% but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister Modi also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were being killed along the LOC. Those who once spread terror have been silenced. And if today Pakistan commits any misdeed, the Indian Army strikes back on their own soil. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister Modi failed to address students' concerns in his address and did not even speak on police action on students during the Jantar Mantar protests.
2: अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है. इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई. कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया. लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे. यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है, और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं, उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है, यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी, अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या। अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी, दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
1: Moving on, after influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father and Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
3: Right-wing influencer Swatantra Bharadwaj posted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after, CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station demanding his arrest.
4: Delhi Police Hospital!
5: Hospital! Hospital!
6: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बट बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा, उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा। तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेदार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया।
3: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
7: ये बहुत strange और surprising hearing था। हम लोग court में इंतजार कर रहे थे। हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा। बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो अक्यूज की तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई।
8: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
3: Despite being behind bars, Swatantra Bhardwaj continues to get support of right-wing groups. A massive protest was organized outside Parliament Street police station, where Swatantra Bhardwaj has been lodged.
5: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street police station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCSC Act that has been imposed against Swatantra Bhardwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
8: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabav banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne, ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra racha ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ पोस्ट को क्यों लगाया गया, एससी एसटी एक्ट क्यों लगाया गया। लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।
3: इन द वायरल वीडियो स्वतंत्र ब्रैग्ड अबाउट हिज पॉलिटिकल लिंक्स एंड कनेक्शंस विद सीनियर कॉप्स। दिस हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ मैसिव पॉलिटिकल स्टॉर्म। One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
9: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
3: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
10: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता, लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए। ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
3: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
1: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
11: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All 5 gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
12: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुश किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
13: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
14: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
11: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
15: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धजिया उड़ाई जा रही है, तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
11: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इन्वोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, सेइंग अ ट्रू हिंदू रिस्पेक्ट्स एवरी फेथ।
16: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में, और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
11: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
2: ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी, दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
17: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाना देना चाहती थी, क्योंकि वो गलती पर है।
11: A mosque demolished, an MP allegedly in house arrest, the opposition up in arms. Saharanpur now finds itself at the center of a political showdown. With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: Amidst all the devastation due to flash floods at the Nepal-China border, there is glimmer of hope for the rescue team. Two more people have been rescued from the jaws of death. Even as more than 5,000 are missing, we are getting you this special report on how Nepal is slowly but steadily trying to get back on its feet.

0: are watching India Today.
1: PM Modi's SRCC address turned into a political attack on the opposition, with the Prime Minister drawing a sharp contrast with what had happened earlier. Prime Minister Modi's address at the centenary celebrations of the Delhi University Sri Ram College of Commerce came with big attacks on the opposition. He said that the recent Dimaghi Naxal remark was like a homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Fufa. Prime Minister Modi further took an aim at what he called my bap culture and said truth will triumph over jhoot ki goonj. Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 during his previous address at SRCC, where India stands in 2026, is also what he said. He pointed out that today India is not only growing at 7.8%, but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister Modi also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were being killed along the LOC. Those who once spread terror have been silenced. And if today Pakistan commits any misdeed, the Indian Army strikes back on their own soil. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister Modi failed to address students' concerns in his address and did not even speak on police action on students during the Jantar Mantar protests.
2: अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है. इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई. कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया. लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे. यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है माय बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है इसलिए मैं उस दिन कही बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं। उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा नौजवानों से कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या। अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी, दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
1: Moving on, after influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father at Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
3: Right-wing influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station demanding his arrest.
4: Delhi Police, haste ho!
5: Haste ho!
6: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बट बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा, उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेदार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया।
3: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
7: ये बहुत स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग हियरिंग था। हम लोग कोर्ट में इंतजार कर रहे थे, हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा। बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो कि उसके तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई।
8: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
3: Despite being behind bars, Swatantra Bhardwaj continues to get support of right-wing groups. A massive protest was organized outside Parliament Street Police Station, where Swatantra Bhardwaj has been lodged.
5: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street Police Station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCSC Act that has been imposed against Swatantra Bhardwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
8: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabaab banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra racha ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ पोस्ट को क्यों लगाया गया, एससीएसटी एक्ट क्यों लगाया गया, लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।
3: इन द वायरल वीडियो स्वतंत्र ब्रैग्ड अबाउट हिज पॉलिटिकल लिंक्स एंड कनेक्शंस विद सीनियर कॉप्स। दिस हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ मैसिव पॉलिटिकल स्टॉर्म। One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
9: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
3: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
10: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता, लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए। ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
3: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
1: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
11: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All 5 gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
12: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
13: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
14: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
11: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
15: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है, तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
11: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इनवोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, सेइंग अ ट्रू हिंदू रिस्पेक्ट्स एवरी फेथ।
16: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में। और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
11: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
2: ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी, दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
17: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाना देना चाहती थी, क्योंकि वो गलती पर है।
11: A mosque demolished, an MP allegedly in house arrest, the opposition up in arms. Saharanpur now finds itself at the center of a political showdown. With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: A major political battle is taking shape in Tamil Nadu over who could emerge as the opposition alliance's prime minister face for 2029. As the rising Vijay for Prime Minister chorus causes growing discomfort within the Congress, the ruling TVK has convened an alliance meeting on 9 September. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will chair the meeting and hold discussions with leaders of the Congress, IUML, VCK and MDMK on formalizing the post-poll alliance with a new name. The alliance partners meeting comes at a time when the Congress has reiterated that Rahul Gandhi is the PM candidate for 2029. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore has once again asserted that Vijay should fulfill his duties in Tamil Nadu, adding that both the Chief Minister as well as Tamil Nadu ministers are clear on Rahul being the prime ministerial face.
18: Rahul Gandhi Tamil Nadu Congress எங்களை பொறுத்த மட்டும் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக திரு விஜய் அவர்கள் இருக்கணும். தமிழகத்தில் அவருக்கு மக்கள் கொடுத்த வாக்குக்கு இணங்க அவர் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அனைத்தும் இப்பொழுதுதான் செய்ய தொடங்கியிருக்கார். முதலமைச்சர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காரு, அமைச்சர்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க, மற்ற எல்லாரும் பத்திரிகையாளர்களும் மற்ற நண்பர்கள் தான் அதுல ரொம்ப ஆர்வமா
19: இருக்கு. ராஜேஷ்குமார் பேசும்போது
18: கேட்டுக்கிற முடிச்சுக்கிறப்பா பத்திரிகையாளர்கள் சிலரை பொறுத்த சில ஒரு குழுமங்கள் வந்து இது இப்படி போன்ற விரிசல்களை மதசார்பற்ற கூட்டணிகளுக்குள்ள உருவாக்கணுங்கிறதுக்காக பல வகையில பாராட்டு பாடுபடுறத நம்மளால பார்க்க முடியும்.
1: TVK ministers have repeatedly said in recent weeks that their leader Vijay will become prime minister in the future, emphasizing that Talapathy will rule India one day. Listen in.
20: Tamil Nadu aalugira sakthi mattumalle edhirgaala indiyave aalakoodiya sakthiyaga vilanga koodiyavar dhaan Tamilaga vetti kalagathude thalaivar nammude Talapathy avargal. Naan idhai kurippiduvadharku kaaranam தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மட்டுமல்ல, ஒரு வார காலத்திற்கு முன்னாலே வட மாநிலத்திலிருந்து சில பேர் என்னை சந்தித்தார். நான்கு சகோதரிகள் அவரோடு நான்கு சகோதரர்களின் இடத்திலே சந்தித்தார். உங்கள் முதலமைச்சரை போல எங்களுக்கு எப்படி முதலமைச்சர் கிடைப்பார் என்று சொன்னார்கள். ஏன் என்று சொன்னால் வட மாநிலங்களை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தளபதியை தவிர எவராலும் இல்லை என்ற வரலாறு படைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
21: இப்ப அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்காங்க. நேஷனல் லெவல்ல ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியரா ஒரு மேண்டேட். அனதர் டூ இயர்ஸ் 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
1: Amidst all the devastation due to flash floods at the Nepal-China border, there is glimmer of hope for the rescue team. Two more people have been rescued from the jaws of death. Even as more than 5,000 are missing, we are getting you this special report on how Nepal is slowly but steadily trying to get back on its feet.

0: are watching India Today.
1: PM Modi's SRCC address turned into a political attack on the opposition, with the Prime Minister drawing a sharp contrast with what had happened earlier. Prime Minister Modi's address at the centenary celebrations of the Delhi University Sri Ram College of Commerce came with big attacks on the opposition. He said that the recent Dimaghi Naxal remark was like a homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Fufa. Prime Minister Modi further took an aim at what he called my bap culture and said truth will triumph over jhoot ki goonj. Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 during his previous address at SRCC, where India stands in 2026, is also what he said. He pointed out that today India is not only growing at 7.8%, but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister Modi also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were being killed along the LOC. Those who once spread terror have been silenced. And if today Pakistan commits any misdeed, the Indian Army strikes back on their own soil. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister Modi failed to address students' concerns in his address and did not even speak on police action on students during the Jantar Mantar protests.
2: अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है. इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई. कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया. लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है. ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे, यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है इसलिए मैं उस दिन कही बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है, और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं, उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है, यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या। अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
1: Moving on, after influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father and Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
3: Right-wing influencer Swatantra Bharadwaj posted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after, CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station demanding his arrest.
4: Delhi Police Hospital!
5: Hospital!
6: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा, उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा। तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेधार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया।
3: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
7: ये बहुत strange और surprising hearing था। हम लोग court में इंतजार कर रहे थे। हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा। बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो अक्यूज की तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई।
8: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
3: Despite being behind bars, Swatantra Bhardwaj continues to get support of right-wing groups. A massive protest was organized outside Parliament Street police station, where Swatantra Bhardwaj has been lodged.
5: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street police station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCSC Act that has been imposed against Swatantra Bhardwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
8: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabav banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne, ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra chaha ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ, पोस्ट को क्यों लगाया गया, एससी एसटी एक्ट क्यों लगाया गया। लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।
3: In the viral video, Swatantra bragged about his political links and connections with senior cops. This has snowballed into a massive political storm. One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
9: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
3: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
10: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता, लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए। ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
3: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
1: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
11: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All 5 gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
12: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुश किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
13: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
14: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
11: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
15: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है, तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
11: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इनवोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, सेइंग अ ट्रू हिंदू रिस्पेक्ट्स एवरी फेथ।
16: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में, और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
11: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
17: कि ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी, दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
18: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाना जाना चाहती थी, क्योंकि वो गलती पर है।
11: अ मॉस्क डिमोलिश्ड, एन एमपी अलेजेडली इन हाउस अरेस्ट, द ऑपोजिशन अप इन आर्म्स। सहारनपुर नाउ फाइंड्स इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ अ पॉलिटिकल शोडाउन। With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: Amidst all the devastation due to flash floods at the Nepal-China border, there is glimmer of hope for the rescue team. Two more people have been rescued from the jaws of death. Even as more than 5,000 are missing, we are getting you this special report on how Nepal is slowly but steadily trying to get back on its feet.

0: big attacks on the opposition. He said that the recent Dimaghi Naxal remark was like a homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Fufa. Prime Minister Modi further took an aim at what he called my bap culture and said truth will triumph over jhoot ki goonj. Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 during his previous address at SRCC, where India stands in 2026, is also what he said. He pointed out that today India is not only growing at 7.8%, but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister Modi also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were being killed along the LOC. Those who once spread terror have been silenced. And if today Pakistan commits any misdeed, the Indian Army strikes back on their own soil. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister Modi failed to address students' concerns in his address and did not even speak on police action on students during the Jantar Mantar protests.
1: अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है. इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई. कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया. लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है. ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे, यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे. लेकिन ये मोदी है, माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है. साथियों, पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं, उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी, अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था। जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या, अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
0: Moving on, after influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father and Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
2: Right-wing influencer Swatantra Bharadwaj posted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station demanding his arrest.
3: Delhi Police, host me now!
4: Host me now! Host me now!
3: न्याय तुमको देना होगा!
4: देना होगा! देना होगा!
5: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बट बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा, उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेधार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया।
2: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
6: ये बहुत स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग हियरिंग था। हम लोग कोर्ट में इंतजार कर रहे थे, हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा। बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो कि उसके तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई।
2: डिस्पाइट बीइंग बिहाइंड बार्स, स्वतंत्र भारद्वाज कंटिन्यूज टू गेट सपोर्ट ऑफ राइट विंग ग्रुप्स। A massive protest was organized outside Parliament Street police station where Swatantra Bharadwaj has been lodged.
7: even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street Police Station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCSC Act that has been imposed against Swatantra Bhardwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
8: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabav banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne, ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra racha ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ पोस्ट को क्यों लगाया गया, SC ST एक्ट क्यों लगाया गया। लेकिन DCP साहब ने खुद हमें बताया है, DCP साहब और SCP साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और FIR दर्ज नहीं हुई है। वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।
2: In the viral video, Swatantra bragged about his political links and connections with senior cops. This has snowballed into a massive political storm. One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
9: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
2: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
10: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता, लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए। ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
2: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
0: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
11: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All 5 gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
12: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुश किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
13: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
14: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
11: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
15: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है, तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
11: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इन्वोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, saying a true Hindu respects every faith.
16: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में, और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
11: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
17: कि ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी, दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
18: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि वो गलती पर है।
11: A mosque demolished, an MP allegedly in house arrest, the opposition up in arms. Saharanpur now finds itself at the center of a political showdown. With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
0: Amidst all the devastation due to flash floods at the Nepal-China border, there is glimmer of hope for the rescue team. Two more people have been rescued from the jaws of death. Even as more than 5,000 are missing, we are getting you this special report on how Nepal is slowly but steadily trying to get back on its feet.

0: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
1: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे उससे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।

0: are watching India Today.
1: PM Modi's SRCC address turned into a political attack on the opposition, with the Prime Minister drawing a sharp contrast with what had happened earlier. Prime Minister Modi's address at the centenary celebrations of the Delhi University Sri Ram College of Commerce came with big attacks on the opposition. He said that the recent Dimaghi Naxal remark was like a homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Fufa. Prime Minister Modi further took an aim at what he called my bap culture and said truth will triumph over jhoot ki goonj. Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 during his previous address at SRCC, where India stands in 2026, is also what he said. He pointed out that today India is not only growing at 7.8%, but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister Modi also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were being killed along the LOC. Those who once spread terror have been silenced. And if today Pakistan commits any misdeed, the Indian Army strikes back on their own soil. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister Modi failed to address students' concerns in his address and did not even speak on police action on students during the Jantar Mantar protests.
2: Abhi 15 August ka mera bhashan aapne suna hoga. Aise logon ke liye maine Lal Kile se ek homeopathy ka dose diya tha. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है. इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे हैं. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई. कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया. लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है. ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे, यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है इसलिए मैं उस दिन कही बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है, और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं, उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है, यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या। अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
1: Moving on, after influencer Swatantr Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father and Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
3: Right-wing influencer Swatantr Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after, CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station, demanding his arrest.
4: Delhi Police,
5: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा, उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेधार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया।
3: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
6: ये बहुत strange और surprising hearing था। हम लोग court में इंतजार कर रहे थे। हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा। बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो अक्यूज की तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई।
7: पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
3: Despite being behind bars, Swatantra Bhardwaj continues to get support of right-wing groups. A massive protest was organized outside Parliament Street police station, where Swatantra Bhardwaj has been lodged.
4: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street police station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCSC Act that has been imposed against Swatantra Bhardwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
7: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabav banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne, ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra chala ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ पोस्ट को क्यों लगाया गया, एससी एसटी एक्ट क्यों लगाया गया। लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।
3: In the viral video, Swatantra bragged about his political links and connections with senior cops. This has snowballed into a massive political storm. One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
8: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
3: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
9: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता, लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए। ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
3: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
1: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
10: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All 5 gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
11: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुश किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
12: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
13: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
10: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
14: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है, तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
10: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इनवोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, सेइंग अ ट्रू हिंदू रिस्पेक्ट्स एवरी फेथ।
15: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में, और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
10: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
16: कि ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी, दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
17: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि वो गलती पर है।
10: अ मॉस्क डिमोलिश्ड, एन एमपी अलेजेडली इन हाउस अरेस्ट, द ऑपोजिशन अप इन आर्म्स। सहारनपुर नाउ फाइंड्स इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ अ पॉलिटिकल शोडाउन। With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: Amidst all the devastation due to flash floods at the Nepal-China border, there is glimmer of hope for the rescue team. Two more people have been rescued from the jaws of death. Even as more than 5,000 are missing, we are getting you this special report on how Nepal is slowly but steadily trying to get back on its feet.

0: है। और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे हैं। और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है। साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे। दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे। लेकिन ये मोदी है, माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैं उस दिन कही बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं, उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा नौजवानों से कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था। जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या, अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा ऐसा भी होता था, होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी, दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
1: Moving on, after influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father at Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
2: Hey! Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj boasted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station, demanding his arrest.
3: Delhi police, haast mein ho!
4: Haast mein ho! Haast mein ho!
5: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा उतने में ही पुलिस ने देखा उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा तो स्वतंत्र ने उसी का फायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेदार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया.
2: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
6: ये बहुत स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग हियरिंग था. हम लोग कोर्ट में इंतजार कर रहे थे. हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा. बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो कि उसके तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई.
2: Despite being behind bars, Swatantra Bhardwaj continues to get support of right-wing groups. A massive protest was organized outside Parliament Street police station, where Swatantra Bhardwaj has been lodged.
7: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street police station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCST Act that has been imposed against Swatantra Bhardwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
8: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabaab banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne, ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra chala ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ पोस्ट को क्यों लगाया गया, एससीएसटी एक्ट क्यों लगाया गया. लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें.
2: इन द वायरल वीडियो स्वतंत्र ब्रैग्ड अबाउट हिज पॉलिटिकल लिंक्स एंड कनेक्शंस विद सीनियर कॉप्स. दिस हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ मैसिव पॉलिटिकल स्टॉर्म. One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
9: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है.
2: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
10: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता. लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए. ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है.
2: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
1: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
11: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All five gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
12: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है. इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां जारी है. हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे. पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है.
13: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
14: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा. सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है.
11: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
15: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की कानून व्यवस्था की इस देश में इस प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है. तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है. अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए.
11: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इन्वोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, saying a true Hindu respects every faith.
16: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है. हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में. और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है.
11: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
17: ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी दोनों के दोनों असंवैधानिक है. पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया.
18: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते. पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि वो गलती पर है.
11: A mosque demolished, an MP allegedly in house arrest, the opposition up in arms. Saharanpur now finds itself at the center of a political showdown. With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: Amidst all the devastation due to flash floods at the Nepal-China border, there is glimmer of hope for the rescue team. Two more people have been rescued from the jaws of death. Even as more than 5,000 are missing, we are getting you this special report on how Nepal is slowly but steadily trying to get back on its feet.

0: are watching India Today.
1: PM Modi's SRCC address turned into a political attack on the opposition, with the Prime Minister drawing a sharp contrast with what had happened earlier. Prime Minister Modi's address at the centenary celebrations of the Delhi University Sri Ram College of Commerce came with big attacks on the opposition. He said that the recent Dimaghi Naxal remark was like a homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Fufa. Prime Minister Modi further took an aim at what he called my bap culture and said truth will triumph over jhoot ki goonj. Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 during his previous address at SRCC, where India stands in 2026, is also what he said. He pointed out that today India is not only growing at 7.8% but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister Modi also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were being killed along the LOC. Those who once spread terror have been silenced. And if today Pakistan commits any misdeed, the Indian Army strikes back on their own soil. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister Modi failed to address students' concerns in his address and did not even speak on police action on students during the Jantar Mantar protests.
2: अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है. इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे हैं. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई. कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया. लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है. ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे, यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है माय बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं, उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी, अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या। अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिसिस की ही चर्चा थी, दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
1: Moving on, after influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father at Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
3: Right-wing influencer Swatantra Bharadwaj posted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after, CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station demanding his arrest.
4: Delhi Police, hasta now!
5: Hasta now! Hasta now!
6: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बट बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा, उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेदार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया।
3: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
7: ये बहुत strange और surprising hearing था। हम लोग court में इंतजार कर रहे थे। हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा। बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो कि उसके तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई।
8: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
3: Despite being behind bars, Swatantra Bhardwaj continues to get support of right-wing groups. A massive protest was organized outside Parliament Street Police Station, where Swatantra Bhardwaj has been lodged.
8: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street Police Station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCSC Act that has been imposed against Swatantra Bhardwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
9: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabaab banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne, ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra racha ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ पोस्ट को क्यों लगाया गया, एस सी एस टी एक्ट क्यों लगाया गया। लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।
3: In the viral video, Swatantra bragged about his political links and connections with senior cops. This has snowballed into a massive political storm. One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
10: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
3: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
11: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता, लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए। ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
3: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
1: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
12: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All 5 gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
13: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुश किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
14: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
15: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रूपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
12: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
16: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धजिया उड़ाई जा रही है, तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
12: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इन्वोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, सेइंग अ ट्रू हिंदू रिस्पेक्ट्स एवरी फेथ।
17: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में, और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
12: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
18: ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी, दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
19: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि वो गलती पर है।
12: अ मॉस्क डिमोलिश्ड, एन एमपी अलेजेडली इन हाउस अरेस्ट, द ऑपोजिशन अप इन आर्म्स। सहारनपुर नाउ फाइंड्स इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ अ पॉलिटिकल शोडाउन। With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: Amidst all the devastation due to flash floods at the Nepal-China border, there is glimmer of hope for the rescue team. Two more people have been rescued from the jaws of death. Even as more than 5,000 are missing, we are getting you this special report on how Nepal is slowly but steadily trying to get back on its feet.

0: of the Delhi University Sri Ram College of Commerce came with big attacks on the opposition. He said that the recent Dimaghi Naxal remark was like a homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Fufa. Prime Minister Modi further took an aim at what he called my baap culture and said truth will triumph over jhoot ki goonj. Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 during his previous address at SRCC, where India stands in 2026, is also what he said. He pointed out that today India is not only growing at 7.8%, but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister Modi also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were being killed along the LOC. Those who once spread terror have been silenced. And if today Pakistan commits any misdeed, the Indian Army strikes back on their own soil. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister Modi failed to address students' concerns in his address and did not even speak on police action on students during the Jantar Mantar protests.
1: अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है. होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल के बाहर आने लगे हैं. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई. कुछ लोगों को लग सकता है, और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था. मोदी ने क्या नया किया? लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है. ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे, यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे. लेकिन ये मोदी है, माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है.

0: साथियों, पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं, उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी, अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या, अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिसिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
1: Moving on, after influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father at Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
2: Right-wing influencer Swatantra Bharadwaj posted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after, CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station demanding his arrest.
3: Delhi Police, hoste ho!
4: Hoste ho!
5: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बट बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा, उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा। तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेदार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया।
2: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
6: ये बहुत strange और surprising hearing था। हम लोग court में इंतजार कर रहे थे। हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा। बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो कि उसके तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई।
2: डिस्पाइट बीइंग बिहाइंड बार्स, स्वतंत्र भारद्वाज कंटिन्यूज टू गेट सपोर्ट ऑफ राइट विंग ग्रुप्स। A massive protest was organized outside Parliament Street police station where Swatantra Bharadwaj has been lodged.
4: even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street Police Station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCSC Act that has been imposed against Swatantra Bharadwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
7: डिमांड ये थी कि जो कल एक राजनीतिक दबाव बनाया गया चंद्रशेखर और उसकी पार्टी ने, कि जिस तरह से सनातन विरोध, सनातन धर्मियों के खिलाफ एक जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, यहाँ पे आए कि भाई उनके खिलाफ जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ, पोस्ट को क्यों लगाया गया, एससीएसटी एक्ट क्यों लगाया गया। लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।
2: In the viral video, Swatantr bragged about his political links and connections with senior cops. This has snowballed into a massive political storm. One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
8: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
2: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
9: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता, लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए। ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
2: The arrest of Swatantr Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
1: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
10: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All 5 gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
11: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
12: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
13: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रूपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
10: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
14: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है, तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
10: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इनवोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, saying a true Hindu respects every faith.
15: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में, और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
10: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
16: ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी, दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
17: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि वो गलती पर है।
10: A mosque demolished, an MP allegedly in house arrest, the opposition up in arms. Saharanpur now finds itself at the center of a political showdown. With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: A major political battle is taking shape in Tamil Nadu over who could emerge as the opposition alliance's prime minister face for 2029. As the rising Vijay for Prime Minister chorus causes growing discomfort within the Congress, the ruling TVK has convened an alliance meeting on 9 September. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will chair the meeting and hold discussions with leaders of the Congress, IUML, VCK and MDMK on formalizing the post-poll alliance with a new name. The alliance partners meeting comes at a time when the Congress has reiterated that Rahul Gandhi is the PM candidate for 2029. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore has once again asserted that Vijay should fulfill his duties in Tamil Nadu, adding that both the Chief Minister as well as Tamil Nadu ministers are clear on Rahul being the prime ministerial face.
18: Rahul Gandhi Tamil Nadu Congress எங்களை பொறுத்த மட்டும் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக திரு விஜய் அவர்கள் இருக்கணும். தமிழகத்து அவருக்கு மக்கள் கொடுத்த வாக்குக்கு இணங்க அவர் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அனைத்தும் இப்பொழுதுதான் செய்ய தொடங்கியிருக்கார். முதலமைச்சர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காரு, அமைச்சர்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க, மற்ற எல்லாரும் பத்திரிகையாளர்களும் மற்ற நண்பர்கள் தான் அதில் ரொம்ப ஆர்வமாக
19: இருக்கு. ராஜஸ்குமார் பேசும்போது
18: கேட்டுக்கிற முடிச்சுக்கிறப்பா பத்திரிகையாளர்கள் சிலரை பொறுத்த சில ஒரு குழுமங்கள் வந்து இது இப்படி போன்ற விரிசல்களை மதசார்பற்ற கூட்டணிகளுக்குள்ள உருவாக்கணுங்கிறதுக்காக பல வகையில பாராடு பாடுபடுறத நம்மளால பார்க்க முடியும்.
1: TVK ministers have repeatedly said in recent weeks that their leader Vijay will become prime minister in the future, emphasizing that Talapathy will rule India one day. Listen in.
20: Tamil Nadu aalugira sakthi mattumillai edhirkaala indiyavai aalakoodiya sakthiyaga vilangakoodiyavar dhaan Tamilaga vetti kalagathudaiya thalaivar nammudaiya Talapathy avargal. Naan idhai kurippiduvadharku kaaranam தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் மட்டுமல்ல, ஒரு வார காலத்திற்கு முன்னாலே வட மாநிலத்திலிருந்து சில பேர் என்னை சந்தித்தார். நான்கு சகோதரிகள் அவரோடு நான்கு சகோதரர்களின் இடத்தை சந்தித்தார். உங்கள் முதலமைச்சரை போல எங்களுக்கு எப்படி முதலமைச்சர் கிடைப்பார் என்று சொன்னார்கள். ஏனென்று சொன்னால் வட மாநிலங்களை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தளபதியை தவிர எவராலும் இல்லை என்ற வரலாறு படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
21: இப்ப அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவல்ல ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியரா ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
1: Amidst all the devastation due to flash floods at the Nepal-China border, there is glimmer of hope for the rescue team. Two more people have been rescued from the jaws of death. Even as more than 5,000 are missing, we are getting you this special report on how Nepal is slowly but steadily trying to get back on its feet.

0: are watching India Today.
1: PM Modi's SRCC address turned into a political attack on the opposition, with the Prime Minister drawing a sharp contrast with what had happened earlier. Prime Minister Modi's address at the centenary celebrations of the Delhi University Sri Ram College of Commerce came with big attacks on the opposition. He said that the recent Dimaghi Naxal remark was like a homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Fufa. Prime Minister Modi further took an aim at what he called my bap culture and said truth will triumph over jhoot ki goonj. Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 during his previous address at SRCC, where India stands in 2026, is also what he said. He pointed out that today India is not only growing at 7.8%, but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister Modi also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were being killed along the LOC. Those who once spread terror have been silenced. And if today Pakistan commits any misdeed, the Indian Army strikes back on their own soil. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister Modi failed to address students' concerns in his address and did not even speak on police action on students during the Jantar Mantar protests.
2: अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है. इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई. कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया. लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे. यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं, उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या। अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी, दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
1: Moving on, after influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father and Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
3: Right-wing influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after, CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station, demanding his arrest.
4: Delhi Police Hospital!
5: Hospital!
6: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बट बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा, उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेदार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया।
3: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
7: ये बहुत strange और surprising hearing था। हम लोग court में इंतजार कर रहे थे। हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा। बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो अक्यूज की तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई।
8: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
3: Despite being behind bars, Swatantra Bhardwaj continues to get support of right-wing groups. A massive protest was organized outside Parliament Street police station, where Swatantra Bhardwaj has been lodged.
5: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street police station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCSC Act that has been imposed against Swatantra Bhardwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
8: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabaab banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne, ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra racha ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ, पोस्ट को क्यों लगाया गया, एससी एसटी एक्ट क्यों लगाया गया, लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।
3: In the viral video, Swatantra bragged about his political links and connections with senior cops. This has snowballed into a massive political storm. One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
9: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
3: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
10: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता, लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए। ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
3: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
1: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
11: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All 5 gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
12: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुश किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
13: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
14: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
11: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
15: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है, तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
11: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इनवोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, सेइंग अ ट्रू हिंदू रिस्पेक्ट्स एवरी फेथ।
16: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में। और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
11: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
17: ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी, दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
18: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाना जाना चाहती थी, क्योंकि वो गलती पर है।
11: अ मॉस्क डिमोलिश्ड, एन एमपी अलेजेडली इन हाउस अरेस्ट, द ऑपोजिशन अप इन आर्म्स। सहारनपुर नाउ फाइंड्स इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ अ पॉलिटिकल शोडाउन। With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: Amidst all the devastation due to flash floods at the Nepal-China border, there is glimmer of hope for the rescue team. Two more people have been rescued from the jaws of death. Even as more than 5,000 are missing, we are getting you this special report on how Nepal is slowly but steadily trying to get back on its feet.

0: only growing at 7.8%, but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister Modi also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were being killed along the LOC. Those who once spread terror have been silenced. And if today Pakistan commits any misdeed, the Indian Army strikes back on their own soil. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister Modi failed to address students' concerns in his address and did not even speak on police action on students during the Jantar Mantar protests.
1: अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है. इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई. कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया. लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है. ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे, यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे. लेकिन ये मोदी है, माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है. साथियों, पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं. अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास. मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी.

0: अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं। उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना, ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी, अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था। जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या, अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
1: Moving on, after influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father at Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
2: Right-wing influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station demanding his arrest.
3: Delhi police hospital!
4: Hospital!
5: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बट बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा, उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेदार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया।
2: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
6: ये बहुत स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग हियरिंग था। हम लोग कोर्ट में इंतजार कर रहे थे, हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा। बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो कि उसके तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई।
2: Despite being behind bars, Swatantra Bharadwaj continues to get support of right-wing groups. A massive protest was organized outside Parliament Street police station, where Swatantra Bharadwaj has been lodged.
7: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street police station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCSC Act that has been imposed against Swatantra Bharadwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
8: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabav banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne, ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra racha ja raha hai, yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ, पोस्ट को क्यों लगाया गया, एससी एसटी एक्ट क्यों लगाया गया। लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।
2: In the viral video, Swatantra bragged about his political links and connections with senior cops. This has snowballed into a massive political storm. One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
4: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
2: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
9: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता, लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए। ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
2: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
1: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
10: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All five gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
11: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
12: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
13: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
10: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
14: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है, तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
10: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इनवोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, saying a true Hindu respects every faith.
15: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में। और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
10: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
16: ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
17: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाना देना चाहती थी क्योंकि वो गलती पर है।
10: A mosque demolished, an MP allegedly in house arrest, the opposition up in arms. Saharanpur now finds itself at the center of a political showdown. With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: Amidst all the devastation due to flash floods at the Nepal-China border, there is glimmer of hope for the rescue team. Two more people have been rescued from the jaws of death. Even as more than 5,000 are missing, we are getting you this special report on how Nepal is slowly but steadily trying to get back on its feet.

0: The Kokro Janta Party, formed barely months ago, has suffered its first rebel breakaway. CJP volunteer Manish Brahmbhatt has now floated the Kokro Janta Party Democratic. Brahmbhatt has accused the CJP leadership of having links with the Aam Aadmi Party, of selling out and politicizing the movement, of sidelining grassroots protesters, and alleges the CJP's aim is now to engage in political deals. But he has gone a step further, calling the Dipke-led camp Team Kejriwal.
1: आज हम कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये शुरुआत क्यों करनी पड़ी? आंदोलन देश का आंदोलन था, लोगों ने अपना खून पसीना बहाया तो आंदोलन सफल हुआ, पर आंदोलन सफल होने के बाद इसका सौदा हो गया है, इसका राजनीतिकरण हो गया है, अब ये टीम केजरीवाल बन चुकी है।
0: दीपके हाउएवर हैज हिट बैक।
2: अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस की बी टीम हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी की बी टीम हूँ, तो मुझे लगता है ये सारे लोग बैठे आपस में और डिसाइड कर ले हम किसकी बी टीम है और किसकी क्या है। हमारे हिसाब से तो हम स्टूडेंट्स की ए टीम है।
0: Brahmbhatt says CJPD will take on corruption irrespective of which party is in power. The CJP began as Dipke's satirical online movement before evolving into a youth-led platform that spearheaded a campaign culminating in the resignation of Dharmendra Pradhan. And now, barely months into its existence, the movement is facing its first internal rupture. Factions and breakaways are the stuff of politics. But for a group that still describes itself as a pressure movement, this could be a first. Is CJPD the beginning of a new political experiment or the beginning of a new battle for the movement itself? Bureau Report, India Today.

0: are watching India Today.
1: PM Modi's SRCC address turned into a political attack on the opposition, with the Prime Minister drawing a sharp contrast with what had happened earlier. Prime Minister Modi's address at the centenary celebrations of the Delhi University Sri Ram College of Commerce came with big attacks on the opposition. He said that the recent Dimaghi Naxal remark was like a homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Fufa. Prime Minister Modi further took an aim at what he called my bap culture and said truth will triumph over jhoot ki goonj. Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 during his previous address at SRCC, where India stands in 2026, is also what he said. He pointed out that today India is not only growing at 7.8% but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister Modi also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were being killed along the LOC. Those who once spread terror have been silenced. And if today Pakistan commits any misdeed, the Indian Army strikes back on their own soil. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister Modi failed to address students' concerns in his address and did not even speak on police action on students during the Jantar Mantar protests.
2: अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है. इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई. कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया. लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे. यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है माय बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं, उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है, यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा नौजवानों से कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या। अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिसिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
1: Moving on, after influencer Swatantra Bharadwaj boasted about assaulting a protester's father and Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
3: Right-wing influencer Swatantra Bharadwaj posted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after, CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station demanding his arrest.
4: Delhi Police, hasta ho!
5: Hasta ho! Hasta ho!
6: पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बट बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा, उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेधार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया।
3: Swatantra now faces multiple charges, including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
7: ये बहुत strange और surprising hearing था। हम लोग court में इंतजार कर रहे थे। हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा। बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो कि उसके तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई।
8: पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
3: Despite being behind bars, Swatantra Bhardwaj continues to get support of right-wing groups. A massive protest was organized outside Parliament Street police station, where Swatantra Bhardwaj has been lodged.
8: Even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street police station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCSC Act that has been imposed against Swatantra Bhardwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
9: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabaab banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne, ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra racha ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ पोस्ट को क्यों लगाया गया, एससीएसटी एक्ट क्यों लगाया गया। लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।
3: इन द वायरल वीडियो स्वतंत्र ब्रैग्ड अबाउट हिज पॉलिटिकल लिंक्स एंड कनेक्शंस विद सीनियर कॉप्स। दिस हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ मैसिव पॉलिटिकल स्टॉर्म। One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
10: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
3: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
11: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता, लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए। ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
3: The arrest of Swatantra Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
1: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
12: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All 5 gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
13: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुश किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
14: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
15: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
12: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
16: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धजिया उड़ाई जा रही है, तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
12: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज इनवोक्ड द हिंदू फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, सेइंग अ ट्रू हिंदू रिस्पेक्ट्स एवरी फेथ।
17: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में, और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
12: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
18: ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी, दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
19: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाना देना चाहती थी, क्योंकि वो गलती पर है।
12: अ मॉस्क डिमोलिश्ड, एन एमपी अलेजेडली इन हाउस अरेस्ट, द ऑपोजिशन अप इन आर्म्स। सहारनपुर नाउ फाइंड्स इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ अ पॉलिटिकल शोडाउन। With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: A major political battle is taking shape in Tamil Nadu over who could emerge as the opposition alliance's prime minister face for 2029. As the rising Vijay for Prime Minister chorus causes growing discomfort within the Congress, the ruling TVK has convened an alliance meeting on 9 September. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will chair the meeting and hold discussions with leaders of the Congress, IUML, VCK and MDMK on formalizing the post-poll alliance with a new name. The alliance partners' meeting comes at a time when the Congress has reiterated that Rahul Gandhi is the PM candidate for 2029. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore has once again asserted that Vijay should fulfill his duties in Tamil Nadu, adding that both the Chief Minister as well as Tamil Nadu ministers are clear on Rahul being the prime ministerial face.
20: Rahul Gandhi Tamil Nadu Congress எங்களை பொறுத்த மட்டும் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக திரு விஜய் அவர்கள் இருக்கணும். தமிழகத்தை அவருக்கு மக்கள் கொடுத்த வாக்குக்கு இணங்க அவர் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அனைத்தும் இப்பொழுதுதான் செய்ய தொடங்கியிருக்காரு. முதலமைச்சர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காரு, அமைச்சர்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க, மற்ற எல்லாரும் பத்திரிகையாளர்களும் மற்ற நண்பர்கள் தான் அதில் ரொம்ப ஆர்வமாக
21: இருக்கிறேன்.
20: முடிச்சுக்கிறப்பா பத்திரிகையாளர்கள் சிலரை பொறுத்த சில ஒரு குழுமங்கள் வந்து இது இப்படி போன்ற விரிசல்களை மதசார்பற்ற கூட்டணிகளுக்குள்ள உருவாக்கணுங்கிறதுக்காக பல வகையில பாடுபடுறதை நம்மளால பார்க்க முடியும்.
1: TVK ministers have repeatedly said in recent weeks that their leader Vijay will become prime minister in the future, emphasizing that Talapathy will rule India one day. Listen in.
22: Tamil Nadu aalugira sakthi mattumillai edhirkaala indiyavai aalakoodiya sakthiyaga vilangakoodiyavar dhaan tamilaga vetti kalagathudaiya thalaivar nammudaiya Talapathy avargal. Naan idhai kurippiduvadharku kaaranam தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் மட்டுமல்ல, ஒரு வார காலத்துக்கு முன்னாலே வட மாநிலத்திலிருந்து சில பேர் என்னை சந்தித்தார். நான்கு சகோதரிகள், அவரோடு நான்கு சகோதரர்கள் இல்லத்திலே சந்தித்தார். உங்கள் முதலமைச்சரை போல எங்களுக்கு எப்படி முதலமைச்சர் கிடைப்பார் என்று சொன்னார்கள். ஏன் என்று சொன்னால் வட மாநிலங்களை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது, நம்முடைய தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடைய தளபதியை தவிர எவராலும் இல்லை என்ற வரலாறு படைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
23: இப்ப அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவல்ல ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு, வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியரா ஒரு மேண்டேட். அனதர் டூ இயர்ஸ் 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
1: Amidst all the devastation due to flash floods at the Nepal-China border, there is glimmer of hope for the rescue team. Two more people have been rescued from the jaws of death. Even as more than 5,000 are missing, we are getting you this special report on how Nepal is slowly but steadily trying to get back on its feet.

0: had happened earlier, Prime Minister Modi's address at the centenary celebrations of the Delhi University Sri Ram College of Commerce came with big attacks on the opposition. He said that the recent Dimaghi Naxal remark was like a homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Fufa. Prime Minister Modi further took an aim at what he called my baap culture and said truth will triumph over jhoot ki goonj. Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 during his previous address at SRCC, where India stands in 2026, is also what he said. He pointed out that today India is not only growing at 7.8%, but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister Modi also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were being killed along the LOC. Those who once spread terror have been silenced. And if today Pakistan commits any misdeed, the Indian Army strikes back on their own soil. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister Modi failed to address students' concerns in his address and did not even speak on police action on students during the Jantar Mantar protests.
1: अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है. ये होम्योपैथी का स्वभाव है. तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल. ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है. इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे. और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है. साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई. कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया. लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले. आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है. साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे. दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे. यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे. लेकिन ये मोदी है, माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है.